शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के आर्गन्स होते हैं वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की, तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है,
जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. सो भाई, आज है मंडे मॉर्निंग और मंडे वाली वाइब के साथ आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान हाजिर हैं. सो जाहिर है कि आप भी इस वक्त तक उठ गए होंगे, क्योंकि आज वैसे भी उठे ना उठे लेकिन आपका काम आपको ऑफिस ज़रूर उठवा देता है. भाई ऐसी बात होती है ना कि आप भले ही जब स्कूलिंग में होते हैं, कर रहे होते हैं, घर वालों के उठाने पे हम नहीं उठते हैं, ये तो हमारी बहुत पुरानी आदत होती है. लेकिन जैसे ही जॉब में आते हैं या जैसे ही कोई बिज़नेस करते हैं, उसके बाद खुद ब खुद आँखें खुल जाती है, हमको कोई जगाता नहीं है, है ना. सो यस, सो फिलहाल चलिए वापस से आ गए हैं और अब बताने वाले कि आज का मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है, क्योंकि आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान हाजिर है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. और आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

बड़ा ही प्यारा थॉट जो कि मुझे तोहफे में मिला और उस थॉट को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल थॉट कहता है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा वक्त तक आप अपने लिए ज़रूरी चीज़ को टालते रहेंगे। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा वक्त आप ज़रूरी चीज़ों को टालते रहेंगे। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। और आज मंडे है, मंडे से बहुत ज़्यादा मैच करता है ये बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है चीज़ें नहीं होनी है, हमारे हाथ में नहीं है या फेवर में नहीं है या चीज़ें नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर हम शायद वहीं होते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों वेस्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हो सकती हैं और जो चीज़ें होने वाली हैं उनको रोक के रखा है उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें नहीं हो सकती उसके बारे में सोच सोच के कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। मतलब काम को लेके मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा टफ है तो आप उसको छोड़ दें, टफ एक अलग चीज़ है, एक आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है उसको लेकर के अगर आप सोच रहे हैं तो आप उतना वक्त जो है वो लगा रहे हैं उसके सोचने में, उसी वक्त में आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं जो हो सकती थीं उस पे ध्यान नहीं है, जिस वजह से आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो भाई आज का ये जो थॉट ऑफ द डे है, इसने जो बात बताई है, मेरे ख्याल से ऐसी जीवन में कई चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के हम उलझे ही रहते हैं, सोचा ही करते हैं, और वो चीज़ें हमको पता होता है कि भाई हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी हम सोचा करते हैं। सो ऐसे सिनारियों में आज का थॉट कहता है कि कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझना चाहिए कि भाई ये जो हम सोच में पड़े हैं इससे ज़रूरी चीज़ें टल रही हैं। सो जितना ज़्यादा सोचेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमको हासिल नहीं होने वाली है उतना ज़्यादा वक्त हमारा इसमें जाएगा, है ना। तो जब इसमें जाने वाला है तो कहीं ना कहीं भाई इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उतने वक्त तक हम टालते ही रहेंगे, वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी उस चक्कर में, क्योंकि हम कहीं और ही ज़्यादा सोच रहे हैं। सो इससे बेहतर है कि जो कुछ भी जैसे आपके हाथ में है, आपके अख्तियार में है, वो आप ज़रूर करें। ऐसा कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। और मुझे लगता है अपनी लाइफ उठा के देखेंगे तो आपको ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी जो आपके हाथ में नहीं है और आप उसको बहुत वक्त तक टालते रहे थे, उसके बाद आखिर आपने उन चीज़ों को किया जो आप कर सकते थे और आगे बढ़े, तो फिर आपको बाद में लगा कि यार ये अगर थोड़ा सा पहले ही कर लिया होता तो इतना टाइम क्यों जाता। फिर ये टाइम जो गया है वो उसी चीज़ के साथ जाता जो चीज़ें हो गई हैं, पहले हो जाती और अलग बात होती। सो यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे उतना ज़्यादा वक्त तक आप अपने लिए ज़रूरी चीज़ों को टालते रहेंगे। सो ये जैसा भी लगा थॉट ऑफ द डे आप आकर के अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ऑफ कोर्स चैट बॉक्स पर हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार, और साथ ही साथ चूँकि आपने ट्यून किया है 89.6 FM को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के एप्लीकेशन से। सो यस, फिलहाल आइए चलते हैं अपने इस म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और आपको देते हैं एक एनर्जी का डोज आपके मंडे मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो जबरदस्त भाई डोज वाला आपको मिल गया मंडे मॉर्निंग का डोज, जिसमें इसकी वाइब भी आ रही है। तो चलिए, फिलहाल वक्त है चैट बॉक्स की तरफ आने का और देखने का क्या क्या मैसेजेस आपने भेजे हैं। टिक टैक करके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग होना में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो चैट बॉक्स पे तो बहुत सारे मैसेजेस है, लेकिन उससे पहले जो फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, कार से सुन रहे हैं, अपनी रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, खेतों में सुन रहे हैं, चाय पीते हुए सुन रहे हैं, और कुछ लोग तो एक्सरसाइज करते हुए भी सुन रहे हैं। सो आप सबका वेलकम करते हैं आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और अब चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, किसका क्या मैसेज आया है इस मॉर्निंग वाले शो में। सबसे पहले जो आया सविता दुबे जी का आया, सुप्रभात, आज दो खास दिवस है, एक दोस्ती दिवस, दूसरा आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं और दोनों ही खास है, शुभकामनाएं। जी हाँ, सो हम बताने भी वाले थे कि भाई आज फ्रेंडशिप डे भी है एंड दूसरा है आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पहले ही इस बात को इन्फॉर्म करने के लिए सविता जी। प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, सर जी सुप्रभातम। सुप्रभातम, आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अनुष्का जी श्रावस्ती से सुनती हैं, लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू। तानिया गोंडा से ही हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं। शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और साथ ही साथ आप लोगों ने आज के थॉट के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं, किसने क्या लिखा है भाई, हमने आपको बताया आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। अनुष्का जी लिखती हैं, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच। ताने ने लिखा है, वेरी वेरी लवली थॉट ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद जो है प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखिए भाई, थॉट तो यही कह रहा है बड़ी ईमानदारी से कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा वक्त आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को टालते रहेंगे। तो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को निकालने की जो हमारे लिए गैर ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे हम बिला वजह वक्त देते जा रहे हैं। उससे हट करके जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो चीज़ें हमारे लक्ष्य में हैं, हमारे लिए सही हैं, उन पर वक्त दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम जी सके, ज़्यादा से ज़्यादा फील कर सके, उन चीज़ों को छोड़ करके जो हमारे लिए हैं ही नहीं। लिसन दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाई अपनी जुल्फे जरा बचा के रखिएगा, ये जुल्फे आपकी नदियां साफ कर सकती हैं।
1: हैं?
0: नदियां? वो भी जुल्फे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपकी ये जुल्फे जो है ये नदियां साफ कर सकती है। आखिर ऐसी बात आरजे अदनान क्यों कर रहे हैं, जिसके सर है ना पैर, नहीं नहीं सर पैर धड़ सब है। चलिए हम बताते हैं कि ऐसी बात हमने आखिर क्यों छेड़ी है।
2: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जहर का इलाज, जहर से तो बहुत सुना था, लेकिन भाई अगर गंदी नदी है तो इसका इलाज इंसानों के बालों से, जुल्फों से, ये थोड़ा सा नया था ना। जी हाँ, सो बता दें आपको कि हम बालों से साफ कर रहे हैं भारत की नदियाँ। अब आप सोचेंगे भारत में ऐसा है, हमने तो कभी नहीं सुना था। तो आपको हम वैसे बता दें कि इंसानों के बाल अपने जो वजन है उससे 7 से 9 गुना तेल ज़्यादा सोख लेते हैं। जी हाँ, यानी इंसानों के जो बाल हैं अपने वजन से 7 से 9 गुना तेल ज़्यादा सोख सकता है। और यही सोच करके केसम्बली फाउंडेशन ने दान किए बालों से बनाए हैं ऑयल सोखने वाले मैट्स। जी हाँ, और इन मैट्स को गंदे नालों में चुकी डाला जाता है ताकि गंदगी यमुना तक पहुंचने से पहले ही रुक जाए। और इसका असर यूं होता है कि तेल हो चाहे ग्रीस हो या केमिकल्स हो, सब ये मैट्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं। नतीजा ये होता है BOD 40% और COD जब ये मैट्स पूरी तरह भर जाते हैं। तो इन्हें फेंका नहीं जाता है बल्कि खेती के लिए मल्च में, यानी मल्चिंग करते वक्त डाल दिया जाता है, यानी ज़ीरो वेस्टेज हो जाता है। सो आपको मिलाते हैं भाई राहुल गुप्ता से, जिन्होंने मैटर ऑफ ट्रस्ट के साथ मिल करके इस आइडिया को भारत में लाए हैं। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी यहाँ पर आसान नहीं थी। जब इन्होंने लोगों से बाल दान करने को कहा सो कई लोगों ने अपना मना कर दिया। भाई किसी ने कहा काला जादू कर दोगे हमारे बाल पे, जैसे कि इंडियंस लोग सोचते हैं अरे भैया बाल दे दिया मतलब काला जादू। फिर भी वो चूँकि रुके नहीं राहुल गुप्ता और लोगों को जागरूक करते रहे और सालों तक इस बात को लेकर डटे रहे। 1000 किलो से ज़्यादा बाल जो है रिसाइकल हो चुके हैं। जी हाँ, 1000 किलो से ज़्यादा। अब ज़रा सोचिए, हर सैलून, हर मंदिर या हर वो जगह जहाँ बाल का संस्कार किया जाता, अगर वहाँ से बाल मिल जाए तो हमारी नदियाँ कितनी साफ़ हो सकती है। तो अगर अब आपको भी नेचर को बचाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा तो आप जुड़ सकते हैं केसम्बली फाउंडेशन के साथ में। जी हाँ, केसम्बली जो है इस फाउंडेशन से अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इंसानों के जो बाल हैं उससे नालों को, उसके नदियों की जो गंदगी है वो साफ कर रहे हैं। और इस फाउंडेशन का काम जब आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में क्लियरली आएगा कि भाई आखिर किस तरह से इंसानों के बाल से ये भारत में फाउंडेशन वर्क कर रही है। न सिर्फ वर्क कर रही है बल्कि नदियों को बहुत ज़्यादा गंदा होने से बचा रही है, ये बताना है आज के इस बात का। सो भाई ये बात मुझे भी काफ़ी अनोखी लगी और इसीलिए मैंने सोचा ये आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए कि आपके बाल, जिसको आप कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं, ये बड़े काम के बाल हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो दान कर दीजिए, और अगर आपको पसंद है तो भी आप नेचर्स के लिए दान कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भाई भारत में ही काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है केसम्बली फाउंडेशन। जी हाँ, केसम्बली फाउंडेशन जो है ये बालों से बने ख़ास मैट्स के ज़रिए ये नालों और यमुना नदी में जाने वाली गंदगी हो गई, तेल हो गया, केमिकल्स, इसको रोकने का अनोखा तरीका इसने खोज दिया। और ये सिंपल सा आइडिया जो है पॉल्यूशन के खिलाफ एक पावरफुल सॉल्यूशन बन रहा है। सो बालों से हो रही हैं अब नदियां भी साफ, इसलिए ये बाल, ये जुल्फे, गाने सुनोगे ना, ये रेशमी जुल्फे ये नदी भी साफ करते हैं अगर आप इन्हें फाउंडेशन को दान देते, है ना। सो आप भी दान दे सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, और या फिर आप भी हेल्प कर सकते हैं इस फाउंडेशन की नदियों को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए। फिलहाल बने रहिए मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग गुना में।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाई साहब, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। वैसे अवधी भाषा, चूंकि हमारी बहुत प्यारी अपनी भाषा है और हमारी लोकल रीजनल लैंग्वेज है, यानी हमारी पहचान है अवधी, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, बाराबंकी हो, आसपास के जो रीजन हैं, यहाँ अवधी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली हम सुनते हैं अवधी भाषा के, उसमें से ऑफ कोर्स एक शब्द है जो है आपन। तो आपन मतलब अपना होता है। ऑफ कोर्स अगर कहते हैं आपन घरे गए रहन, तो यानी अपने घर गए थे, तू हमारा अपन हो, यानी तुम हमारे अपने हो। इस तरह की बातें हम ऑफ कोर्स करते हैं, अवधी भाषा की बातें होती है। इसके अलावा भाषा को भाषा बोलते हैं, तो भाषा बोलना गलत नहीं है। अगर अवधी में हम आएंगे तो भाषा का मतलब यहाँ पर होता है भाषा से मुराद होता है, यानी भाषा आप बोल रहे हैं, राइट। इसी के साथ ही साथ जैसे कहते हैं कि जड़ कहा जाता है, तो यहाँ जड़ का मतलब पेड़ की जड़ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बालों के जड़ की भी बात नहीं की जा रही है। यहाँ जड़ का मतलब होता है पहचान। जी हाँ, यानी कि जो जड़ है वो पहचान है हमारी, राइट। और इसके अलावा भाषा को संस्कृति, यानी संस्कृति से जोड़ के देखते हैं कि हमारी ये भाषा संस्कृति है, यानी हमारा ये कल्चर है, ये संस्कृति है। लेकिन अभी कुछ लोकोक्तियां या कहावतें होती हैं जो कि अवधि की ही है। सो चलिए, अगर आप इस सवाल का जवाब दे दिए तो मुझे लगता है शायद आपको अवधि आती है। वैसे आप, चूंकि ज्यादातर लोग यहाँ जो मौजूद हैं वो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर आसपास के रीजन से ही मौजूद हैं, या गोंडा के रहने वाले हैं जो उस वक्त दूर दूर से सुन रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। और बहुत ही आसान सी ये ऑफ कोर्स लोकोक्तियां हैं जिसको आपको बताना है। सो लोकोक्ति कुछ इस प्रकार है कि जितना गुड़ डाहिरो उतने मीठा होई, जितना गुड़ डारी हो उतने मीठ होई। ये आखिर किस बात को दर्शाता है, ये जो मुहावरा है ये किस लिए बोला जाता है? अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप बता सकते हो, और नहीं होगा तो फिर हम आकर के तो बताने ही वाले हैं कि इसका जवाब क्या है। वैसे बड़ा ही सिंपल सा है, आप सुन ही रहे हैं, जितना गुड़ डरी हो उतने मीठ हुई। सो ये किस विषय में कहा जाता है, ये जो मुहावरा है क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है और कहाँ इसको कहा जाता है, ज़रा इसके बारे में सोचिए और फिर कमेंट करिए, बताइए। और अगर नहीं बताएंगे या नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको बताने के लिए कि भैया इसके क्या मायने हैं और आखिर इसको कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों बोला जाता है। सो सुंदरी अपना मॉर्निंग शो।

0: हाँ जी सुभैया, इस सवाल का जवाब आपने दे दिया है। और देखिए ना, जवाब में जो आया है वो शैलेंद्र जी की तरफ से आया, जो कि फिलहाल अवधि रीजन से नहीं ताल्लुक रखते हैं। ये ताल्लुक रखते हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप गोंडा एफएम से जुड़े हैं और गोंडा एफएम एक ऐसे रीजन में आता है जो अवधि रीजन कहलाता है, उस पर आपका जवाब आ गया है, आपने स्पॉन्ड कर दिया है। क्या बताया, आइए आपको चल के बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो मैंने आपसे बताया था एक मुहावरा जिसको बोला था कि जितना गुड़ डरी हो उतना मीठ होई, और इसका जवाब जो है वो शैलेंद्र जी ने खजुराहो मध्य प्रदेश से दिया है चैट बॉक्स पर आकर के एप्लीकेशन की। और आप लिखते हैं कि इसका जवाब बोले तो मेहनत के लिए कहा गया है, जितनी मेहनत और प्रयास करोगे उतना अच्छा परिणाम पाओगे। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तान्या ने कहा कि अपने संस्कारों को लेकर कहा गया है, लोगों के प्रति आपका कैसा लगाव है, कैसी सोच है, सम्मान करना जानते हैं कि नहीं जानते हुए उसी पर निर्धारित है। ओके, सो ऑफकोर्स इसके कुछ और मायने भी निकाले जा सकते हैं, बट बेसिकली इसको जो बोला जाता है वो यही है कि जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी जितना गुड़ डारी हो उतने मीठ हुई। तो जितना ज़्यादा अच्छा आप मीठा डालोगे, मतलब यहाँ मीठे का मतलब है जितना ज़्यादा मेहनत से है गुड़ जो है, और मीठा मतलब ये है परिणाम से है, यानी क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। सो बहुत सही जवाब दिया है, उसके लिए जोरदार तालियां तो मिलती भाई साहब। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स हमारे शैलेंद्र जी जिन्होंने ऑफ कोर्स इसका जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो यस, अवधि लैंग्वेज बड़ी ही मीठी लैंग्वेज है, और जैसे ब्रज भाषा होती है और रीजनल में हम जाते हैं तो मैथिली है, उसी तरह अवधि है, भोजपुरी है, सबके रीजन के हिसाब से जो स्थानीय भाषा होती है वो चेंज होती रहती है। एक ही जो है भाषा के कई सारे बोलियां होती, बल्कि बोली कहा जाएगा क्योंकि आसपास के रीजन में ये बोली बोली जाती है, और यहाँ की जो है वो अवधि भाषा है। सो इसके और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जैसे एकै लकड़ी से चूल्हा नाही जरत, यानी किसी बड़े काम के लिए मदद की ज़रूरत होती है। एकै लकड़ी से चूल्हा नाही जरत, जाहिर सी बात है एक ही सिंगल लकड़ी से चूल्हा नहीं जलता है, इसके लिए कई लकड़ियों की ज़रूरत होती है। उस तरह अगर हम सिर्फ अपना अपना हमेशा करते रहेंगे, और जहाँ पे हमको सच में सहयोग करना है, जहाँ पे हम चीज़ों को मिल करके कर सकते हैं वहाँ नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। एंड ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, जेकर लाठी ओकर भैंस। सो ऑफ कोर्स शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ऐसा कहा जाता है, इस मुहावरे का मतलब होता है। और इसके अलावा एक और अगर आप बता ले गए तो मुझे लग

लगता है कि काफ़ी अच्छा आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी जितने लोग भी सुन रहे हैं और स्पेशली चैट बॉक्स पर आ सकते हैं यानी एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक सवाल है। जॉन बोई हो तौन काटी हो, सो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसका अगर आपने जवाब दिया तो इसका मतलब आप अवधि को आसानी से समझ पा रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है। सो बहुत ही सिंपल सा है, जॉन बोई हो तौन काटी हो। सो इसका जवाब अब जो भी लगता है आपको, आप सुन चुके हैं, चैट बॉक्स पर आकर के दे सकते हैं। और फिलहाल हम लेके चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ताकि आपको सोचने का, समझने का और टाइप करने का मौका मिल जाए। समझे हमारे क्यूटी पाई।

माय गॉड भाई, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई आया है, वो भी सविता दुबे जी का आया भाई, जो खुद बंगाली हैं और उन्होंने अभी हाल ही में आकर के गोंडा में हिंदी पर अपना काम किया है, साथ ही अवधि रीजन में रहते हुए उन्होंने अवधि चूँकि सीख रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मुहावरे को एक्सप्लेन किया हिंदी में वो काबिले तारीफ है। चूँकि मैंने आपसे पूछा था कि जौन बोइहो तौन काटिहो, और इसका जवाब सविता दुबे जी ने कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बेशक सही फरमाया आपसे कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, इस अवधि मुहावरे का यही मायने है। क्या बात है, अनएक्सपेक्टेडली रिप्लाई आया है सविता दुबे जी, आप बहुत समझदार हैं और जिस तरह का आपने अंदाज़ा लगाया मुझे लगता है ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए काफ़ी, मेरे लिए तो एटलीस्ट शॉकिंग था, मतलब इस तरह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सो मच। सो ये प्यारी सी मीठी सी लैंग्वेज जो है हमारी अवधि, इसको जब बोलते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि हाँ अपनापन है, यानी अगर कहीं बाहर मिले और इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो हमको लगता है कि हाँ ये अपने रीजन की तरफ का बंदा है, बंदी है, और ये अवधि भाषा है हमारी। सो ऑफकोर्स हर किसी की अपनी रीजनल लैंग्वेज बोली सभी को प्यारी होती है, तो हमको भी प्यारी है ना हमारी अवधि

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या।

0: किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: भाई ये गाना जैसे ही चलता है वो बनारस के घाट याद आ जाते हैं, वो लोगों का हुजूम याद आ जाता है, वो गुदौलिया चौराहा याद आ जाता है, वो वहाँ की चाट याद आ जाती है, वो वहाँ की शाम याद आ जाती है, सब कुछ कितना खूबसूरत होता है बनारस में। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉ कार्ज नान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

गर्मी है तो जाहिर सी बात है एक बात का रिस्क रहता है कि भैया जहां ज्यादा खा लिया वहां मसला खराब हो जाएगा। जी हाँ, तो भाई अगर हेल्थ चाहते हैं अपनी तो हेल्थ के लिए बड़े ही लाइट खाने को खाना होता है, और ये लाइट खाना ही आपको हेल्दी रखता है ड्यूरिंग समर। तो ये गर्मियों के सीज़न में जो है ये आपका हल्का खाना ही आपके लिए बेहतर होता है। तो चलिए कुछ ऐसे खाना बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइट बनते हैं और गर्मी में अगर इनको खाया जाए तो कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली है। सो पहला है पोहा उत्तपम। जी हाँ, ये साउथ इंडिया का टेस्ट है, ये आपको पता है, चूँकि उत्तपम जैसे ही आप सुनते हैं आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ। सो पोहा उत्तपम जो है ये साउथ इंडियन टेस्ट है। इसमें होता क्या है, पोहा होता है एक कप, सूजी होता है आधा कप, दही होती है आधी कप, प्याज होता है, टमाटर, शिमला मिर्च बारीक कटे जो है होते हैं इसमें, और नमक होता है, हरी मिर्च, धनिया होता है। सो इस तरह से बनता है ये पोहा उत्तपम, और ये हेल्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो इसलिए अगर आप पोहा उत्तपम का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग समर तो आपको प्रॉब्लम नहीं उस तरह होने वाली है। दूसरा है क्रिस्पी पोहा वड़ा। जी हाँ, बिना डीप फ्राई के भी मज़ेदार लगता है क्रिस्पी पोहा वड़ा। इसमें पड़ता क्या क्या है, पोहा एक कप होता है जो कि भिगोकर निचोड़ा हुआ होता है, इसमें उबला आलू एक पड़ा होता है, अदरक, हरी मिर्च, धनिया होती है, बेसन एक चम्मच होता है बाइंडिंग के लिए, और नमक डाला जाता है थोड़ा सा, और कुछ मसाले पड़ते हैं। सो ये भी क्रिस्पी पोहा वड़ा जो है ये भी बहुत आराम से बनता है, बहुत लाइट होता है, इसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। पोहा चिवड़ा, जी हाँ, ये हेल्दी स्नैक माना जाता है पोहा चिवड़ा। इसमें होता क्या, पतला पोहा होता है दो कप, मूंगफली, काजू, किशमिश, राई, करी पत्ता, हींग, नमक, शक्कर, इतनी चीज़ें होती हैं महज, और इसी से बन जाता है पोहा चिवड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, करारा होता है, कुरकुरा होता है, और इसको चाय के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, ये एक हेल्दी स्नैक्स बन जाता है आपका। इसके अलावा पोहा वेज कटलेट होता है। जी हाँ, इसमें पोहा एक कप होता है, उबली गाजर, मटर, आलू, अदरक, मिर्च, गरम मसाला, ब्रेड क्रम्स, ओट्स होता है, इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बनता है वेज पोहा कटलेट, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ये भी माना जाता है। इसके बाद आता है झटपट पोहा डोसा। बिना फर्मेंटेशन के बनता है ये। सो इस पोहा में भी एक कप भीगा हुआ पोहा होता है, और सूजी होती है आधी कप, दही आधी कप, अदरक, मिर्च, नमक, इससे मिलकर बनता है झटपट पोहा डोसा। और ये झटपट पोहा डोसा भी आपके लिए इतना लाइट होता है कि गर्मियों में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है फेमस तड़केदार तर्री पोहा। जी हाँ, सो इसमें पोहा के लिए पोहा, प्याज, मटर, मूँगफली, हल्दी, तर्री के लिए जो होता है काला यानी काला चना उबला हुआ, प्याज, लहसुन, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और आमचूर होता है। तो ये कहीं ना कहीं फेमस तड़केदार तर्री पोहा भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है गर्मियों में, हेल्दी होता है। सो भाई पोहा तो आपने हो सकता है दो तीन तरह का खाया हो, लेकिन आपको कौन सा पोहा पसंद है ये आपको अगर याद आ रहा है तो आप बता सकते हैं। फिलहाल इसमें जो मुझे बताते वक्त मुझे जो सबसे ज़बरदस्त लगा, मुझे लगता है कि भाई क्रिस्पी पोहा वड़ा भी बहुत टेस्टी होगा, उत्तपम तो भाई ऑल टाइम रहता ही रहता है, कितना बढ़िया रहता है। इसके अलावा जो है मुझे कटलेट का जो है पोहा वो भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आया, पोहा वेज कटलेट, क्योंकि ये बहुत बढ़िया दिखने में भी लगता है, आलू का बना होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। सो ये हेल्दी ऑप्शंस हैं गर्मी में, इनको हम बतौर स्नैक्स ले सकते हैं, और इससे जो है पेट पर कोई इतना ज़्यादा बोझ पड़ता

नहीं है, तो ये हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन के रूप में ही जाना जाता है, माना जाता है। सो फिलहाल चलिए भाई, ये हेल्दी ऑप्शन तो हमने बता दिया, अब एक हेल्दी ऑप्शन आपके गाने का भी है, जिसको आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ मिल करके। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गुंडा रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम पर, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।

0: हाँ जी सुभाई, काफी ज्यादा ही स्लो मोशन में चले गए आप। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। अब कुछ काम की खबर चलिए, काफी ज्यादा जरूरी है जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अक्सर जो है वो टेंशन में इस बात से रहते हैं कि भाई हम जो मार्केट में लेके खा रहे हैं सामान, या जिस रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं, या जिस फूड कंपनी का है, क्या वो साफ़ सफाई रखती है, क्या वो मेजरमेंट पूरी तरह से फॉलो करती है जो एक सेफ्टी मेजरमेंट हम मान के चलते हैं। क्या है आपको बताते हैं आपके आज के स्पेशल शो में। फिलहाल आज चूँकि फ्रेंडशिप डे है, मुझे लगता है कि अगर कोई अपने फ्रेंड को कुछ कहना चाहे, डेडिकेट करना चाहे, तो आप कॉल करके बता भी सकते हैं। 6393164329 ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपने फ्रेंड को डेडिकेट कर सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी बातों को बयां कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के खास मौके पर। खाना हमारा सेफ है कि नहीं मार्केट का, आइए हम आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kona, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो चलिए भाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के नियम क्या है, किसे चाहिए FSSAI के लाइसेंस, पहला सवाल ये आता है। छोटे दुकानदारों को जिनकी सालाना 12 लाख से कम टर्नओवर हो, जिनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको FSSAI लाइसेंस चाहिए। बड़े कारोबारी हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं, उनके लिए राज्य या केंद्रीय लाइसेंस ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। दूसरा होता है शाकाहारी या मांसाहारी। शुद्ध शाकाहारी भोजन की गारंटी देता है कौन सा, जिस पैकेट पे आपको ग्रीन ऑफकोर्स चौखंटे में, जिसको आप स्क्वायर बोलते हैं, उसमें गोल गोल होगा ग्रीन, तो यानी वो शुद्ध शाकाहारी है। और अगर उसी चौखंटे में, उसी स्क्वायर में आपको गोल गोल बीच में मिल जाए रेड कलर का, तो यानी वो मांसाहारी है। इसके अलावा छोटे पैकेट्स के पीछे क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। प्रति 100 ग्राम में कितनी एनर्जी है, प्रोटीन है, शुगर है, फैट है, ये लिखना ज़रूरी बताया जाता है। पैकेट पर FSSAI का लोगो, 14 अंकों का नंबर और निर्माता का पता होता है जो बनाता है, जिस इंडस्ट्री से वो बना रहा होता है। बिना बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट के सामान बेचना जो है वो क्राइम माना जाता है, यानी उसमें बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट लिखा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो FSSAI के नियम के हिसाब से वो अपराध माना जाता है। जहर घोलाने वालों पर FSSAI का डंडा अगर चलता है तो कैसे। भोजन में सीसा यानी लेड और आर्सेनिक सुरक्षित सीमा FSSAI तय करता है। फलों को पकाने के लिए जहरीले कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है, जो कि किया हुआ है FSSAI ने। इसके अलावा दूध और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एंटीबायोटिक की जो मात्रा है वो तय लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये भी कहना है FSSAI का। इसके अलावा जो खाने का रंग है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ FSSAI से ही एक्सेप्टेड प्रिजर्वेटिव्स ही डाले जा सकते हैं, यानी वो प्रिजर्वेटिव्स जिसको FSSAI ही एक्सेप्ट करता है उसी को डाला जा सकता है, जिसको अलाउ करता है। इन केमिकल्स को मिलाने की एक सुरक्षित लिमिट कानूनन तय होती है, लिमिट पार करने या नकली रंग मिलाने पर सीधे लाइसेंस रद्द होता है, ऐसा कहता है FSSAI। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट के लिए जो है वो हाइजीन प्रैक्टिस यानी GHP मानना कानूनी जो है वो ज़रूरी है, और शुद्ध पानी का इस्तेमाल, कचरे का सही निपटारा भी सही बताया गया है कि सही से करना होता है। खाना बनाने वालों को नियमित मेडिकल चेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बताता है FSSAI। इसके अलावा नियम तोड़ने पर क्या सज़ा होती है। मिलावट के नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख या 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है इंडस्ट्री पर या उस कंपनी पर। इसके अलावा अगर मिलावटी खाने से किसी कंज्यूमर को गंभीर नुकसान या मौत हो जाती है तो सीधे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। हमेशा FSSAI मार्क, एक्सपायरी डेट और न्यूट्रिशन टेबल देखकर ही आप सामान खरीदें। ये हमारी इल्तजा है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का देखा जाना और इनके हिसाब से लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप कि आप इस बात को अब समझ रहे हैं, और अगर आप कोई भी ऐसा फूड आइटम खाते हैं तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने वाले हैं, क्योंकि ये ही हमारी हेल्थ को इंश्योर करते हैं। भाई, अगर FSSAI के नियम के हिसाब से है तो ठीक है, और अगर उसके नियम के विरुद्ध है, यानी जाहिर सी बात है कि फिर मिलावट की गई है, फिर धांधली की जा रही है, और वो आपके हेल्थ को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, जानते रहिए, और 89.6 FM सुनते रहिए।

0: सो भाई ये गाना कुछ याद दिला रहा है ना। सो ये गाना जो है आपके बेस्ट फ्रेंड की याद दिला रहा है, क्योंकि आज जो है वो बेस्ट फ्रेंड डे है, यानी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। यस, सो आपका बेस्ट फ्रेंड जो है आज उसका दिन है, और इसी को लेकर के हमने कहा भाई कॉल कर सकते हैं आप 6893-16-429 पर। फिलहाल एक कॉल आ गई है, और आइए देखते हैं कि भाई कौन है और क्या कहना है उनका आज के बेस्ट फ्रेंडशिप डे पर, यानी आपके बेस्टी डे पर। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सविता दुबे। आज का दिन बहुत खास है।
0: हाँ जी, बहुत खास है, और आपने आज याद भी दिलाया था कि भाई आज बेस्टी डे है, आज यानी आपके बेस्ट फ्रेंड का दिन है, और वो सच में बड़ा प्यारा दिन है 8 जून। कैसी हैं आप?
1: एक तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और एक अच्छा दिन है ताकि आकाशवाणी को नाम को ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, उसका भी 90 साल हो गया। रेडियो से भी मेरा खास दोस्ती है।
0: जी जी बिल्कुल। सो ये बताइए, बेस्ट फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं बताया अभी तक।
1: वैसे तो बहुत सारे चीज है मेरा सबसे मन के कहीं, तो उसमें एक रेडियो है, फिर बहुत कुछ है। आज दोस्ती में वो बोला जाता है कि दोस्त कोई इंसान हो तो अच्छा है, तो इसके लिए मैं एक दोस्त से मिलने गई थी कल। उनका नाम है पूर्णिमा।
0: अरे
1: नाम है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा तो पहले तो बोली आएंगे, पर फिर बोली नहीं आ पाएंगे। इन सब चक्कर में मैं वहीं पे थोड़ा टाइम इंतजार की, तो फिर मैं अपने घर के लिए निकल आई थी। उसके बाद उनका फोन आया, तो नाम जब पूर्णिमा है तो फिर 15 किलोमीटर दूर, 15 मिनट, 15 सेकेंड, 15 पैदल चल के आने के बाद उनके साथ मेरा मुलाकात हो गई।
0: माय गॉड, 15 15 15 इतना हो गया है?
1: जी, पूर्णिमा है तो पीछे पीछे तो 15 15 तो लगा ही रहता है।
0: बात तो सही है। वैसे कल पूर्णिमा मिलते ही बेस्ट फ्रेंड हो गई, या बेस्ट फ्रेंड कोई और है?
1: नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो पहले

0: वो चलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अपने फ्रेंड को कुछ कहना चाहेंगी रेडियो को, कुछ उसके लिए गा के या कुछ लाइंस कह के सुनाना चाहेंगे?
1: रेडियो के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं मम्मी के गर्भ में थी तब एक गाना आता था, वो गाना जब भी बजता था मेरी मम्मी बोलती थी कि तू जब मेरा पेट में थी तब ये गाना मैं हर टाइम रेडियो पे सुनती थी। वो गाने का बोले जो आशा भोसले जी का गाना है, जाने जा ओ मेरी जाने जा, जिन चिना किंग बोल के गाना है, वो गाना मैं सुर ताला भी भूल गई हूँ, पर वो गाना जब भी आता था रेडियो पे हमेशा मेरा मम्मी बोलती थी कि जब मेरा बहुत तबीयत खराब था तो मेरे पेट में थी तब ये गाना हर टाइम रेडियो पे बजता था, ताकि उस टाइम वो फिल्म रिलीज हो रहा था और हर टाइम रेडियो पे नया गाना ज्यादा उसका चलन था। तो तब से ही मैं बचपन से ही रेडियो का शौकीन हूँ, और थोड़ा थोड़ा होश संभाली, थोड़ा बोलने चली तो वही रेडियो रेडियो पकड़ के, जब मैं रोती थी तो मेरा मम्मी रेडियो चला देती थी।
0: अरे वाह, क्या
1: रोना बन हो जाता था, वो बातें सुनती थी उसको देखती थी बस।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और बेस्ट फ्रेंड के दिन को आपने जिस तरह से बताया है अपने बेस्टी के बारे में यानी रेडियो के बारे में, बड़ा अच्छा लगा है जान करके। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ऐसी बेस्ट फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी चलती रहे, ऐसी हमारी दुआ है, आशीर्वाद है आपके लिए।
1: शुक्रिया, आशीर्वाद दीजिए।
0: बेशक आशीर्वाद है। एंड थैंक यू।
1: छोटी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी हैं आप, क्यूटी क्यूटी। थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया। सो भाई, ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं बताया बेस्ट फ्रेंडशिप डे तो है आज, यानी आज आपका बेस्ट फ्रेंड का डे है। सो आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है उनको डेडिकेट आज कुछ आप गाना ज़रूर डेडिकेट करिए, खुद से गाइए, आज मीटिंग करिए, मुलाकात कीजिए, शाम की चाय आज साथ में पीजिए। भाई आज दिन है, और ऐसा नहीं कि आज ही करना होता है, लेकिन ये दिन जो है इसलिए मौका देता है, ये सिर्फ मौका देता है कि भाई चलो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें, अब कर लें, मिल लें, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आइए इस ख़ास दिन को एंजॉय करते हैं, और डेडिकेटेड है ये सॉन्ग सभी के सभी बेस्टियों को।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या बात है। सो ये दोस्ती सच में बहुत हसीन है, और ये दोस्ती जब खुमार पे चढ़ती है तो न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स वैसी सॉल्व हो जाती है भाई। जब दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है यार, चार लोग खड़े होते हैं तो लगता है अब तो दुनिया हम सच में जीत लेंगे। तो चाहे जितनी बड़ी फौजें पहले के बादशाहों राजाओं की रही हो, लेकिन जब चार दोस्त हमारे अपने साथ में हो जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन बात जब आती है बेस्ट फ्रेंड की, सो कोई हो ना हो जब वो बंदा रहता है तो ऐसा लगता है सब कुछ है अपने पास। तो आज हम बेस्ट फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, यानी आज आपके बेस्टी का डे है। आपका बेस्टी कौन है ये तो आप अच्छे से जानते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

0: नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे 8 जून आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और भाई आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। चैट बॉक्स पर आशु मिश्र जी आ गए लखनऊ से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, इम्तियाज़ मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप जितने लोगों ने यहाँ पर आकर के बातचीत की है, मैसेजेस किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फ्रीक्वेंसी से जुड़े उसके लिए शुक्रिया, रेडियो गार्डन के ज़रिए आप जुड़े रहें उसके लिए शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच जो लोग जुड़े 89.6 FM की एप्लीकेशन से। अब फिलहाल आरजे अदनान के चलने का वक्त हो गया है और आपको आज के ये ख़ास, बहुत ज़्यादा ख़ास डे यानी कि आज के बेस्ट फ्रेंड्स डे की आपके वापस से बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिलहाल ये गाना हम डेडिकेट करके जा रहे हैं जो अक्सर लोग गुनगुनाया करते हैं अपने ख़ास दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया था गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, आज का प्रोग्राम कैसा लगा बता सकते हैं।
1: चला।
0: एंड हाँ भाई, जाने से पहले मुझे ये याद है कि आज मिस्टर आकाश का बर्थडे है। जी हाँ, कौन? मिस्टर आकाश फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल, और ये इन्फॉर्मेशन दी है हमारी गुंजन जौहरी जी ने, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुनती हैं। सो कोई बात नहीं, और हम सभी लोग मिस्टर आकाश अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके कंटेंट, आपकी बातें, आपकी क्रांतिकारी सोच हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, एंड थैंक यू सो मच। वापस से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारा सुकून और बहुत सारी खुशियां आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसी हम कामना मनोकामना करते हैं। साथ ही साथ आप भी अब सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाइयो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
9: आज का नया प्रोग्राम है गांव की गूंज की टीम का। अप्रैल का महीना चल रहा है, पर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
10: आप सबने बैंगलोर की न्यूज पढ़ी? अरे वही शहर जो IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। अरे मेरा भाई इंफोसिस में काम करता है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने मांग की है कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए।
11: अरे जिम्मी, तुम सुनो, अब की गर्मी में तुम बैंगलोर जाना चाह रही थी? देखो हरिओम क्या बता रहा है कि बैंगलोर के लोग छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहे हैं, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
12: हरिओम सही कह रहा है, स्विमिंग पूल पर तो रोक लगा दी गई है, कार वॉशिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लोग 2-3 दिन में एक बार नहा रहे हैं, और कपड़े धोना तो जैसे भूल ही गए हैं।
13: हाँ यार, कल रात मैं और साक्षी भी न्यूज देख रहे थे, बता रहे थे कि बैंगलोर में पहले पॉपुलेशन करीब 80 लाख की थी, अब 1.5 करोड़ पहुंच गई है। जिस फ्रेंड के पास हम सभी जा रहे थे, वो वापस आ रही है, अब अपने गांव से ही काम करेगी।
10: बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था एक टाइम पर आज कंक्रीट का पूरा जंगल बन गया है। किरण दीदी, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने गानों को तैयार कर लीजिए और मैं गांव के सभी लोगों से मिलकर पानी की समस्या पर काम करता हूँ।
12: ठीक है हरिओम, बीच में मैं गाने सुना सुना कर तुम लोगों की स्ट्रेस दूर करती रहूंगी।

0: गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य था कि हमारे गांव वीरान न हो, लोग उसकी मिट्टी से जुड़े रहें। और देखो, जब कोरोना हुआ तब हम सब ने देखा कितने गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उनको कम नुकसान हुआ। गांव के दौर में जब हम लोग सब मुसीबत में थे आदि, तब भी सबको आने वाली गांव की मिट्टी ही याद आई।
1: इसलिए तो हमारी टीम कहती है कि अपनी मिट्टी की खुशबू कम ना होने दीजिए, उसे आबाद रखिए, उसे ना भूलिए। मुसीबत के समय, परेशानी के समय सिर छुपाने आप वहीं जाते हैं।
2: जब से आप लोगों के गांव की गूंज की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से बराबर देख रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो लाखों लोग अपने घर वापस लौट आए थे। अब बेंगलोर में पानी की समस्या, सुकून तो अपने गांव की मिट्टी में ही मिलता है।
3: हमारी जिम्मी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। चलो, हमारे दूसरे गाने की धुन भी तैयार हो गई है, सुन लो तुम लोग।

0: पता है जब हमारे बड़े भैया बैंगलोर जा रहे थे तो बहुत दुखी मन से जा रहे थे, पर भाभी को गांव में रहना पसंद ही नहीं है। जब कभी बेचारी गांव में रही ही नहीं तो गांव की वैल्यू क्या ही जाने।
1: हाँ हरिओम भैया, कल भाभी ने हमको भी फोन किया था और कह रही थी कि जब हम लोग बैंगलोर जा रहे थे तब बहुत खुश थे कि चलो गांव से पीछा छूटा, पर दादी साथ समझा रही थी कि गांव की मिट्टी को बंजर मत होने देना, घर की चौखट को हमेशा बनाए रखना, जब भी छुट्टी हो घर आती रहना। पर बहू, समय के चक्र को तुम जानती नहीं, और ये याद रखना कि जितनी भी परेशानी आए गांव की मिट्टी कभी भूखा नहीं रहने देगी।
2: सच कह रही हैं आप। सोचिए, आज बेंगलोर में लाखों कमाने वाले लोग भी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, एक से बढ़कर एक बाथरूम है, पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
3: पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे शहर और हमारे गांव में यह समस्या ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। अबकी मौसम विभाग की चेतावनी है कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ेगी। हम सब क्या करें? चलो मिलकर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस पर हमें काम करना है।
4: पानी की समस्या से निपटने के बारे में अगर आज से नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास तो पीने को साफ पानी रहेगा ही नहीं। पूरी जानकारी हम लोग इस समस्या पर काम करते हैं। शंकर चाचा, चाची गोरखपुर से आए हुए हैं और पूरे गांव की गूंज की टीम के लिए टेरी कोटा से सामान लाए हैं। तुम सब ले जाना और गोरखपुर पर एक गाना है, वह भी सुनते जाओ।
5: गोरखपुर के, हाँ गोरखपुर के।
4: अरे क्या,

0: सबसे पहला काम हम सबको करना है कि पानी को बचाना है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी पृथ्वी का 97% पानी समुद्री है यानी खारा, 2% ग्लेशियर और पर्वत है। बचा जो 1% है वो हम पीने के काम में लेते हैं और घर के बाकी काम में लेते हैं।
1: इतना कम पानी है हम लोगों के पास, हम अब गिलास में उतना ही पानी देंगे जितना पीना है, नहीं तो 2 घूंट पीते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं।
2: ठीक कह रही हैं समता दीदी, अभी कल ही मैं एक शादी में गई थी और वहाँ जैसे ही बारात वाले पहुँचे सबको एक एक बोतल पकड़ा दी। अब सभी ने बस 1 या 2 ही घूंट पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया। अब किसी को दोबारा प्यास लगे तो वो दूसरी बोतल ले लिया करता था। अब इसमें देखिए पानी कितना ज्यादा वेस्ट हुआ।
3: अरे हाँ, आज तक तो हम भी यही करते थे, पर अब से नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी नहीं लेंगे, और दूसरों से भी यही कहेंगे कि जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लीजिए।
4: गांव की गूंज की टीम का सेव वाटर की मुहिम का ये पहला कदम, और दूसरा कदम ब्रश करते समय नल चलाकर छोड़ नहीं देंगे, नहाते समय बेकार में पानी बहने नहीं देंगे, समय समय पर लोगों को भी समझाते रहेंगे ज्ञानस्त्री रेडियो के माध्यम से। जल ही जीवन है, लो यह गाना सुनो और लहसुन की चटनी के साथ घुघरी खाओ।

0: 30% शुद्ध जल हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, पर अंडरग्राउंड वाटर का मुख्य सोर्स जो है वो वर्षा है। और आप सभी न्यूज में सुनते ही रहते होंगे कि वर्षा प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। करोड़ों का घर बनवाएंगे पर बरसात में अपने घर में पानी का संचय कैसे होगा, इसका कोई भी उपाय नहीं करेंगे। आजकल गमले का फैशन चलने लगा है, घर में पेड़ पौधे लगाने का फैशन चला है। तो अगर घर आप बनवा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, जिससे क्या हो, बरसात का पानी सोख कर जमीन के अंदर चला जाए।
1: हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने छत के पानी को पीवीसी पाइप लगाकर बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया था और कई दिन तक उसी पानी से कार को धोने का काम, बगीचे में डालने का काम करते हैं। देखो, हमारे पास फोटो भी है। तब हम सोच रहे थे कि ये सब बेवकूफी है, पर आज समझ आ रहा है कि कितना अच्छा काम किया है उन्होंने।
2: आज ही हम घर जाकर पापा से बोलेंगे कि क्या पापा, इस बरसात में हम लोग बारिश के पानी को बचा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है हम लोगों ने। अपना जो लान था ना, उसको हमने भैया से कह के बहुत ही जिद करके बोला कि भैया इंटरलॉकिंग वाला टाइल्स लगवा दीजिए, जबकि भैया भाभी दोनों बहुत मना कर रहे थे इसको लगवाने के लिए।
3: श्वेता मैम, जब जागो तभी सवेरा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रुकवा दीजिए। जब हम सही होंगे तभी तो लोगों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे।
4: अपने घर के पास पानी से भरी बाल्टी या नादा लगवा दीजिए, जिससे सड़क के कुत्ते, आवारा जानवर प्यास से ना मरे। और छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे चिड़ियों को पानी मिले और हम सब की बूंद बूंद की कोशिश और कितने को जीवन दान मिलेगा।

0: ये गाना किरण दीदी बिट्टू की शादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गांव में छोटे छोटे गड्ढों में पानी डालने के लिए सरकार पैसे भी देती है और साथ में ताल भी खुदवाती है सरकार, पर प्रधान पैसे खा जाते हैं और उतना अच्छा काम तो करते नहीं है। और गांव के लोग बेचारे ठहरे सीधे साधे, प्रधान से पूछ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग की टीम का काम है जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना कि उनका अधिकार क्या है।
1: हमारी नदियों और झीलों की गहराई इतनी कम होती जा रही है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। गहराई कम होने के कारण बरसात के पानी इकट्ठा होने की जगह से बहुत जगह भी कम होती जा रही है। बेंगलोर में भी न्यूज में था कि जो लेक थे उस पर बिल्डिंग बन गई। इन्हीं सब कारणों से पानी की कमी हो रही है।
2: अरे हाँ यार, यहाँ पर भी तो पीछे तालाब था जिसमें बरसात का पानी चला जाता था। पिछली बार तो बरसात में करीब एक महीने तक कॉलेज और गली में पानी भरा हुआ था। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था।
3: अपनी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। अब बेंगलोर में ही देखो, हर किसी को वही नौकरी करनी है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पर कल ही हमने देखा कि वहाँ का तापमान लखनऊ से 1 डिग्री ज्यादा था। बर्फ के गोले खाते खाते यह लोकगीत सुनो, हम नहीं खाएंगे, गला तुरंत पकड़ लेता है।

0: पानी की परेशानी को दूर करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पेड़ हमें गर्मी से राहत पहुँचाते हैं, वहीं गांव और शहर के तापमान में कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर होता है। हवा को शुद्ध रखते हैं पेड़। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ एसी कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात में तो आज भी लोग छत पर, आंगन में या बाहर चारपाई लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है उनकी।
1: पता है, पेड़ लगाने से उस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के जंगल में होती है। फिर जब हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करते और रक्षा करें, जिससे हमारे यहाँ कभी पानी की समस्या ही ना हो।
2: समता मैम, आजकल मौसिन राम करके जगह है, वहाँ माना जाता है कि चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। दोनों बहुत पास है, पर अभी इस बात पर विवाद ही चल रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है।
3: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी वर्षा हो और वर्षा के पानी को हम लोग संचित करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर पानी के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम भी और हमारी भी सिचुएशन बैंगलोर वासियों की तरह हो जाएगी। पानी के लिए हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा।
4: और इस महंगाई के युग में पानी को हर काम के लिए खरीद रहे होंगे। हम सबको पानी को बचाना है, उसके मूल्य को समझना है। गांव की गूंज की पूरी टीम संकल्प लेती है कि पानी की हर बूंद बचाएंगे। पानी का हर बूंद बचाते चलो, जीवन का हर जश्न मनाते चलो।
5: अरे महंगाई का जमाना,

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हां जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून, वेलकम करते हैं आपका हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान स्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। तो भाई आरजी उन्नति मौजूद है आप सभी के साथ, और ऑफ कोर्स अगर मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लेकर ही आती हूँ, और अजीबोगरीब चीज़ों में मेरे पास आज इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप सोचेंगे कि अगर मैं उस देश में चला गया तो क्या सच में मेरे साथ ऐसा होने वाला है। सोचिए, आप सुबह उठ रहे हैं, आपने सोचा है वॉक करेंगे, वॉक करते करते आपने मुँह में च्युइंगम चबा लिया और उसके लिए भी आपको जेल हो रही है। आपने रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट में जाके फ्लश कर दिया और बगल वाली आंटी की नींद खराब हो गई और उन्होंने जाके पुलिस को बुला लिया। इस बार आंटी पुलिस पार्टी पर नहीं बुला रही है, बाथरूम में जाके फ्लश करने पर बुला रही है। कैसा लगेगा आपको, बताइए कैसा लगेगा? वेल, आपको कैसा लगेगा इसके बाद, इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है, क्योंकि आज हम किसी और को भी पकड़ के लेकर आए हैं। हेलो।
1: हेलो मैम।
0: हेलो जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम सृष्टि सिंह है।
0: सृष्टि, क्या बात है भाई, मतलब यही सृष्टि जिस पर हम विराजमान हैं? ओके, आप नहीं है वो सृष्टि, मतलब आप इंसानी रूप में सृष्टि हैं, मुझे लगा है, हमारी वाली सृष्टि है।
1: नहीं,
0: आपका नेम काफी मैच खाता है। आपको पता है हमारी एक लिसनर भी है जिनका नाम सृष्टि है?
1: यस मैम, सुना है।
0: सुना है? वो अक्सर आती है और हम उनसे भी पूछते हैं कि बताइए सृष्टि पे क्या कुछ चल रहा है। तो आप ही बता दीजिए सृष्टि पे क्या कुछ चल रहा है।
1: चल तो बहुत कुछ रहा है अभी तो,
0: और पता नहीं क्यों दूर से मुझे एसी की सर्विसिंग की आवाज आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या?
1: यस मैम, हो रहा है।
0: ऑलराइट, तो वेल, आज मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि, और हम आपको बता दें भाई ये भी है डिजिटल मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जो फिलहाल आर्जिंग सीख रही है, और आर्जिंग सीखने वाले सिर्फ मुस्कुराते नहीं है, मुस्कुराने के साथ बोलते भी है, ताकि हमारे लिसनर्स को, लिसनर्स के पास तक आपकी हंसी पहुंच सके। ओके, जब तक ये हमारी शर्मीली बच्ची थोड़ा सा शर्मा के आती है, तब तक के लिए हम आपको बता दें भाई आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अजीब गरीब लॉ उठाकर लेकर आई हूँ दुनिया भर से, कुछ ऐसे कानून जिन्हें सुनकर आप कहेंगे भाई ये चल क्या रहा है दुनिया में, और ऐसा अगर आपने नहीं कहा ना तो भैया शर्त लगा लीजिए, आप अपना नाम बदल लीजिएगा, मेरा नाम तो सेंसो में रहेगा। मैं अपना नाम क्यों बदलूँ भाई, है ना, लोग कहते हैं ना कि ये काम नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, आप अपना नाम बदलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यकीन नहीं हो रहा इस बात पर, और मुझे लगता है सिर्फ मैं अकेली हंसने वाली हूँ जिसकी हंसी की आवाज़ आप तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारी दूसरी भाई तो शर्माने में ही बिजी है। तो जब तक वो शर्माती हैं तब तक के लिए आपको जिस गाने को हमने बीच में ही रोक दिया था और आप सुन रहे थे इतना मधुरम, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना रोमांटिक, थोड़ा सा प्यार हुआ है, उसको सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, फिर बताते हैं वो वियर्डेस्ट लॉ क्या है पूरी दुनिया में जिसको सुनने के बाद पेट पकड़ के आप नहीं हंसोगे तो फिर क्या करोगे, मतलब हंसना पड़ेगा आपको, और बहुत ही ज़बरदस्त लॉ है जिनको सुनने के बाद आपके होश भी ख़राब होंगे और आप ये भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सोच कर ये लॉ डिसाइड किए गए थे। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए 11 सी लाइफ, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सदियां तो काफी नहीं है रूल्स को समझने के लिए भी, सालों निकल जाएंगे, जमाने निकल जाएंगे, वक्त निकल जाएगा और आप कहोगे यार हम बुड्ढे हो गए हैं लेकिन ऐसे रूल हमने कभी सुने नहीं। तो आप जिन रूल्स को नहीं सुनकर आए हो आइए उनको बता देते हैं। फिलहाल के लिए वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजू नदी और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। भाई मेरे साथ मौजूद है आज मेरी को होस्ट सृष्टि। अरे बोलो भी।
1: यस मैम।
0: मैं साउंड इफेक्ट दे रही हूँ यहाँ पे, चार बार बोल के सृष्टि।
1: मुझे लगा आप साउंड इफेक्ट बना रहे हो।
0: वाह, एक लॉ ऐसे भी होना चाहिए कि एक बार में जो ना बोले उसको ₹5 का फाइन।
1: मैम अभी तो 10 कॉइन रूल का आप सुनिए।
0: 10 कॉइन रूल, ये क्या 10 का सिक्के का रूल?
1: यस मैम, आज भी 10 के कॉइन को बिल्कुल 10 का कॉइन बिल्कुल वैलिड है लेकिन कभी कभी दुकानदार उसे ऐसे देखते हैं जैसे आप पेमेंट नहीं मुगल ईरा का सिक्का दे रहे हो।
0: ऐसे दुकानदार नहीं हम भी देखते हैं। पूछो क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि एक अफवाह उड़ी थी, अगर किसी सिक्के के पीछे 10 से ज्यादा लाइनिंग होगी ना तो वो सिक्का वैलिड नहीं है, और ये सिक्का हमने भी गिना है बैठ के। और आई थिंक ये आपने भी किया होगा लिसनर्स, आपने जब ये रूल सुना होगा और दुकानदार ने आपको गलती से बोला सिक्का दे दिया होगा जिसके पीछे 10 नहीं 13 या 14 लाइनिंग है, तो आपने तुरंत वापस किया, भैया इसको पकड़ो वापस, ये वाला हमसे तो कोई लेगा ही नहीं। किया है कि नहीं किया है? हमने तो किया है, भर के किया है।
1: सबने ही किया है।
0: मतलब आप मानती हैं आपने भी किया है?
1: Yes,
0: तो फिर दुकानदारों का नाम क्यों जोड़ा?
1: मैम क्योंकि वो ऐसे देखते हैं ना।
0: हम भी तो देखते हैं। चलिए फिलहाल हम आपको बता दें, हम आपको ले चलते हैं इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर कहीं और जहां जाना लोगों को बड़ा पसंद है। लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, हसीन वादियां देखेंगे। अब हसीन वादियां तो आपको कश्मीर में भी दिख जाती है लेकिन स्विट्जरलैंड ही क्यों सबका इतना पसंदीदा है? सोचो।
1: सोचने वाली बात है।
0: मैं तो वही तो कह रही हूँ, सोचो। चलो रहने दो, इतना भी मत सोचो। भाई हम आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बॉलीवुड को। बॉलीवुड में कितने ही लोग हैं जो स्विट्जरलैंड जाते हैं हनीमून मनाने, घूमने, बेबी शार करने जाने, कितनी ही पार्टीज, कितनी ही अपनी वेकेशंस को सेलिब्रेट करने। लेकिन इसके पीछे का जो असल रीज़न मुझे पता चला है ना, वो बड़ा शॉकिंग था। शॉकिंग ये है कि वहाँ पर रात के 10 बजे के बाद आप टॉयलेट फ्लश का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करते हो और बगल वाली अंकल या आंटी की नींद ख़राब हो जाती है तो आंटी पुलिस बुला लेती हैं, और पुलिस वाले भैया पूछते नहीं हैं तुमने क्या किया। पुलिस वाले भैया कहते हैं कि तुमने फ्लश किया है, आंटी की नींद खराब है, चलो मेरे साथ।
1: ऐसा भी होता है?
0: हाँ ऐसा होता है, और इस हिसाब से तो यार इंडिया वाले तो आई थिंक जेल में ही रहेंगे क्योंकि हम तो रात के 12 बजे भी फ्लश कर रहे होते हैं।
1: इंडिया ही फिर तो ठीक है।
0: इंडिया ठीक है। वेल हम आपको बता दें, इंडिया में भी ऐसा रूल है लेकिन वो रूल आवाज़ को लेकर के है कि आप कितने डेसिबल का म्यूज़िक बजा सकते हैं। हम आपको बता दें, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में आप लाउड स्पीकर, डीजे या सार्वजनिक प्लेसेस पर, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते हो। लेकिन इंडिया वाली आंटी बहुत चिल होती हैं और वो पुलिस नहीं बुलाती है बातों पर। आप शादियों में धूम मचाइए, उनके घर तक आवाज़ आती है, आप रामायण कीजिए उनके बेडरूम तक आवाज़ आती है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं, चिल मोड पर रहती हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते जाकर के। आंटी इंस्पायर्ड मत हो जाइएगा, पता चले मैंने यहाँ पे बोला और आप जाके सच में शिकायत कर दो
1: फिर तो गलत हो जाएगा।
0: जी हाँ, हम आपको बताते भाई इंडिया में भी ऐसा रूल है कि आप 45 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं इस्तेमाल कर सकते हो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। हालांकि हम इंडियंस का हमेशा होता है कूल मोड ऑन, चिल मोड ऑन, इसीलिए हम हमेशा अपने रूल्स को तोड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और स्विट्जरलैंड में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लश भी किया है, आप बाथरूम में जाकर फ्लश कर रहे हो, टैप चला रहे हो, डीजे बजा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी शोर मच रहा है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा और आपको गिरफ्तार किया जाएगा और सीधे आपको जेल के दर्शन करा दिए जाएंगे। आप वेकेशन पर आए थे और आपका वेकेशन जो गुजरेगा वो जेल के अंदर प्लस फाइन में गुजरेगा। सोचिए कैसा लगेगा, सोचो।
1: बहुत ही बुरा है, लेकिन मैम रूल तो ब्रेक करने के लिए ही बनते हैं ना।
0: ये इंडिया वालों की सोच है, स्विट्जरलैंड वालों की नहीं। ये हम सोचते हैं, हम बचपन से यही सोचते हैं, रूल्स तो ब्रेक करने के लिए है, वादे तो तोड़ने के लिए है, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में।
1: अच्छा,
0: वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जैसे आपने केमिस्ट्री लैब बना रखा है हमें वहाँ जाके नहीं करना है, नहीं तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि आर्जुन थी आपने बताया नहीं था पहले। और एक और लॉ है, यूं तो हम कहते हैं ना हमारे पास 7 जन्म होते हैं।
1: यस मैम,
0: एक जन्म खराब गया तो गया, दूसरा जन्म तो अच्छा होगा, ये सोचा है आपने?
1: हाँ बिल्कुल
0: सोचा होगा, लेकिन चाइना में पुनर्जन्म लेना ही मना है। हाँ
1: ये क्या था?
0: चाइना की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपका जन्म होगा पुराना या नहीं होगा।
1: उन्हें पता ही कैसे चलेगा?
0: अब ये बात कैसे पता चलेगी हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस बात, तब तक के लिए आप अपने थॉट्स बताइए कि इस रूल पे आपका क्या कुछ कहना है। तब तक सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए हमदर्द एक विलन की फिल्म से, मतलब एक विलन फिल्म का ही नाम है ऑफ कोर्स, उससे एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, और ऐसा ही चाइना की गवर्नमेंट भी कहती है ऑफकोर्स कि मेरी जान दिलरुबा, कहना मान दिलरुबा, और अब नहीं लेना है तुमको पुनर्जन्म, नहीं तो हम तुम पर भी टैक्स लगा देंगे। सोचो यार, जन्म लेने में भी टैक्स लग रहा है, कैसा लगेगा ये तुम्हें?
1: ये मतलब अलग ही लेवल का बंदा था।
0: अब ऐसा है चाइना में, आपको बता दी कि ऐसा रूल है जनाब, जिसमें कहा जाता है कि आप पुनर्जन्म नहीं ले सकते हैं। चीन की सरकार के अनुसार वहां के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका पुनर्जन्म लेने पर पहले अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या मैं पुनर्जन्म ले सकता हूँ। और सोचिए, मैंने अनुमति ले ली और मेरा जन्म हुआ ही नहीं तो मैं क्या करूंगी?
1: मैम, पहली बात तो हमें पता कैसे चल रहा है कि हमारा जन्म हो रहा है।
0: मैंने वही सवाल किया है कि अगर मैं मान लो अनुमति मैंने ले ली कि सरकार मुझसे अनुमति दो ताकि मैं अगली जन्म में पैदा हो सकूं फिलहाल चाइना में, और मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी?
1: झोल है,
0: आखिरी ही निकला तो मैं क्या करूंगी?
1: ये तो सोचने वाली बात है।
0: और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से इंसान के रूप में आना पसंद करूंगी?
1: फिर वही केजी से पढ़ना।
0: नहीं, ये याद मत दिलाओ यार, ये बहुत बुरा चीज है। मैं मतलब पढ़ ही रही हूँ, पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते बुढ़ी हो गई हूँ, पढ़ा ही जा रहा है। एक तो जिंदगी एग्जाम ले रही है, टीचर्स एग्जाम ले रहे हैं, और कमाल की बात ये होती है कि जब मैं एग्जाम देकर आती हूँ मेरे घर वाले एग्जाम ले रहे होते हैं, तुमने एग्जाम में लिखा क्या है, और मैं दोनों को अलग अलग आंसर बता रही हूँ, तो मैंने उसमें ये लिखा था इसमें ये बता रही हूँ।
1: वो मैम उस टाइम ब्लैंक हो जाता है।
0: तुम ब्लैंक हो जाता है, मैं ब्लैंक नहीं होती हूँ। इतना तो बोलने की आदत पड़ गई कि ब्लैंक नहीं होते हैं, बस ये होता है कि जवाब उल्टा कराते हैं, हम बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, बताते कुछ और है, सुनाते कुछ और है,
1: और होता कुछ और है,
0: और जब नंबर आते हैं तो दिखता कुछ और है। और उसके बाद मेरा मन करता है ना, पुनर्जन्म तो छोड़ो, मैं ये जन्म भी छोड़ के निकल लूं।
1: ये रियल है
0: ना, क्योंकि मम्मियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं उस वक्त। और पहले मम्मी खतरनाक होती हैं, फिर मम्मी अपने हस्बैंड को जाके बताती हैं, फिर वो और खतरनाक होते हैं, फिर दोनों मिलके बैंड बजाते हैं।
1: वो उस टाइम इतने मिले हुए होते हैं कि लगता ही नहीं कि भाई,
0: इतने मिले हुए नहीं होते हैं, वो दोनों आपस में मिले ही रहते हैं, वो बस हमको दिखाने के लिए लड़ाई होती है। तो भाई, चाइना का ये रूल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगली रूल की तरफ अगर हम नज़र घुमाएं तो सृष्टि, तुम्हें च्युइंगम खाना पसंद है?
1: हाँ, सभी
0: फ्लेवर। फ्लेवर विश फ्लेवर?
1: सेंटा फ्रेश
0: मिंट फ्लेवर।
1: मिंट
0: मत खाना।
1: क्यों?
0: सिंगापुर में च्युइंगम खाने पे फाइन लगता है।
1: मतलब अब इंसान खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, करे तो करे क्या?
0: अब यही तो कमाल की बात है कि जापान और सिंगापुर जैसी जगह पर खाने पीने पे भी बैन है। मतलब चलते चलते आप नहीं खा सकते हो, आप एक जगह बैठ के खाओ, खाना है तो खाओ, घर के अंदर खाओ, लेकिन घर के बाहर अगर आपके मुंह में कुछ चबड़ चबड़ आपने दिखाया तो पुलिस वाले अंकल वहां से आएंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, लेके चले जाएंगे, कहेंगे आप निकालो फाइन।
1: हर जगह रूल, घर में भी।
0: यहाँ ट्रैफिक रूल तोड़ने पे फाइन नहीं लग रहा है भाई,
1: फिर तो मैं यहीं पे ठीक हूं।
0: इसीलिए हाँ, इसीलिए सब लोग कहते हैं इंडिया इज द बेस्ट,
1: नहीं तो मैं जेल में ही नजर आऊंगी
0: आए दिन। है ना?
1: यस मैम।
0: चलो सृष्टि, तुम वैसे तुम एक जगह सेफ हो, वहां पे जा सकती हो।
1: कहां पे?
0: जापान। पूछो क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि आप मोटे नहीं हो।
1: ओह, वहां पे मोटे होने पे भी कोई रूल है यार?
0: यस, जापान में कहते हैं भैया मोटा होना मना है।
1: हैं? पर वो तो नेचुरली भी हो सकते हैं ना।
0: अब हम आपको बता दें, जापान के मेटाबो लॉ के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनका जो कमर का आकार है वो पुरुषों के लिए 32 इंच और महिलाओं के लिए 35 इंच, इससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर आप गैर कानूनी माने जाएंगे और आप पे कानून का लॉ लग जाएगा।
1: नहीं भाई, मतलब इंसान जी भी नहीं सकता,
0: जी सकता है बस मोटा नहीं हो सकता।
1: मैम वो हुआ तो वही,
0: मैंने जीने को कहा है, मोटा होने को नहीं कहा है।
1: जो हो गया है वो क्या करे।
0: अब देखो भाई, बाहर की कंट्रीज में तो कुछ ऐसा ही हाल है, अब आपकी कंट्री में ऐसा लॉ अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे जनाब? मुझे लगता है आधे से ज्यादा इंडिया वाले जेल में होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में ये लॉ नहीं है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि अच्छा खासा मोटा इंसान खाते पीते घर का माना जाता है, और सूखा हुआ इंसान वो कुछ खा ही नहीं रहा है, बल्कि होता इसका उल्टा है।
1: ये रियल है,
0: है ना? मैं इसी तुमसे पूछ रही थी।
1: और रिश्तेदार सुना के अलग चले जाते हैं,
0: हाँ कि बेटा कुछ खाया करो, और जो खाता ही नहीं है उसे कहते कम खाया करो।
1: रियल।
0: फिलहाल के लिए ये वियर्डेस्ट लॉ जो मैं आपको बता रही हूँ ये है पूरी दुनिया के। भारत में ऐसा कोई लॉ अगर लागू होगा तो आप क्या करेंगे, बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में। और एंजॉय करते रहिए इस प्यारे से गाने को। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर, तब तक खेला स्टूडियो।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: दर्शन रावल की आवाज के साथ आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ज्ञानसली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM, यह गोला शहर की धड़कन पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी को होस्ट जिनका नाम है सृष्टि और जो अपनी फोटो खींचने में बिजी है। ये लड़कियां और लड़कियों की फोटो, एक्सक्यूज मी, मैं भी लड़की हूं, सॉरी हां मैं भी लड़की हूं, भूल गई थी। चलिए फिलहाल एक बात कर लेते हैं, यानी कि वियर्डेस्ट लॉ में जो अगला कानून है जिसके सुनने के बाद आपको हंसी आएगी, रोना भी आएगा। और कानून ये है कि इटली में कुत्ते को टहलाने का कानून है। इटली के ट्यूरिन शहर में नियम है कि आपको अपने कुत्ते को दिन में कम से कम 3 बार जरूर घुमाना होगा, नहीं घुमाएंगे तो जेल की हवा खाएंगे।
1: मैम वहाँ पे जॉब मिलेगी डॉगी घुमाने की?
0: मे बी, सोचिए मैं यही जॉब करूँ, घर पे जाके लोग कुत्ते टहला के चली आऊँ।
1: कुछ तो काम करेंगे आखिर।
0: वॉक करने का काम, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, अगर उसमें अगर मुझे पैसे मिलने लगे तो क्या ही बात है।
1: तो मैं दिन रात वॉक कर लूँ मैम?
0: आप दिन रात वॉक नहीं कर सकते,
1: इतना सच भी नहीं कहना होता है।
0: सच बोलना मेरी फितरत में है, मुझसे रहा नहीं जाता बिना सच बोले ना,
1: दुख होता है।
0: चलिए भाई, तो हम आपको बता दें एक ऐसा लॉ जिसको सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में एक नियम है कि आप अपने घर का खराब बल्ब खुद नहीं बदल सकते हैं, उसको बदलने के लिए बाहर से मैकेनिक ही आएगा, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ही आएगा। अगर आपने अपनी होशियारी दिखाई और ये कहा कि अरे अपने घर के खुद ही इलेक्ट्रीशियन है,

0: लाओ बल्ब चेंज करे थे, बल्ब चेंज करने में किया ही जाता है, फाइन के साथ आपको जेल हो सकती है।
1: मतलब कुछ भी हमारे
2: ऐसा रूल मेरे घर में होता तो मुझे रोज बल्ब नहीं बदलना पड़ता। हाँ क्या मजे होते, जो मेरी मम्मी मुझे रोज टेबल पे चेयर पे उसके बाद बेड पे खड़ा करके बोलते चढ़ जाओ मेरे शेर और चढ़ा दो बल्ब को, ये मुझे नहीं करना पड़ता ना।
1: वो हम घर के छोटू हैं, छोटू
2: छोटू से लंबू वाला काम क्यों कराए जाते हैं मुझे आज तक ही पता नहीं चला। ऐसे लॉ इंडिया में होना, नहीं इंडिया में नहीं मेरे घर में होना चाहिए ताकि इस छोटू को कोई ना चढ़ाए और मेरी हाइट का फायदा कोई ना उठाए।
1: पर अब कुछ नहीं कर सकते मैम, वो यहाँ नहीं है।
2: मैं सरकार से गुहार तो लगा सकती हूँ ना कि ऐसा लॉ बनाया जाए मेरे घर के लिए स्पेशली, मेरी मम्मी का।
1: वो क्या पता खुद ऐसे करते हो।
2: रहने दीजिए, आपसे बात करना बेकार है। फिलहाल तो आपने जाना स्विट्जरलैंड में कि रात में फ्लश करना मना है, पाबंदी है। चीन में पुनर्जन्म का कानून है, इटली में कुत्ते टहलाने का कानून है, जापान में मोटा होना मना है, सिंगापुर में च्युइंगम खाना मना है, ऑस्ट्रेलिया में बल्ब बदलना मना है। और तो और हम आपको बता दें, ग्रीस में हाई हील्स पहनना मना है।
1: नहीं मतलब मैम अब मैं जा रही हूँ, मुझे रहना ही नहीं है इस देश में।
2: आप इस देश में रह सकती हैं, पड़ोसी देश में नहीं रह सकती, आपको बोलना थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। मतलब वहाँ की लड़कियाँ लंबी हील्स नहीं पहन सकती हैं।
1: क्या मतलब वो सब?
2: मतलब एक तो मैं वैसे ही छोटू हूँ, सोच रही हूँ अच्छी खासी ड्रेस पहन के अगर मैं वॉक करूँ तो हील्स नहीं पहन सकती, उस ड्रेस में मैं और छोटी लगूंगी। 2 फुट का डोरेमोन जो मुझे निकनेम मिला है ना, वो गलत नहीं लगेगा वहाँ पर?
1: लड़कियों के साथ ये सब क्यों हो रहा है?
2: आई थिंक वो सबके साथ हो रहा है, रूल सबके लिए सेम होते हैं, ये गलत बात है। अगर आपने ये कहा है लड़कियों के साथ हो रहा है, रूल सबके लिए सेम होते हैं, वो अलग बात है कि आपने सिर्फ एक ही फिल्टर से एक ही नजरिए पे देखा है।
1: पर लड़के हील्स थोड़ी पहनते हैं।
2: क्या पता पहनते भी हो। फिलहाल हम आपको बता दें, हील्स की शुरुआत लड़कों के लिए ही हुई थी, लड़कियों के लिए नहीं हुई थी, लड़कियों ने तो अपना लिया है उसे।
1: अब तो वो प्रायोरिटी में आ चुका है।
2: अब आ चुका है, अच्छी बात है ना। वहाँ पर फिर वो महंगी महंगी हील्स लेने का वो भी नहीं होगा चलन।
1: ऐसे रूल्स बना के क्या ही मिलता है
2: मजे,
1: पर वहाँ के लोगों को तो सजा ही मिल रहे हैं बस।
2: बिल्कुल नहीं, हो सकता उनकी हाइट अच्छी हो, हम ही बुटके हो।
1: क्या मतलब है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है फिर?
2: फिर वही सवाल भाई, तुम इसी सवाल को थोड़ा बैठ के रो। तब तक के लिए हम आप लिसनर्स को बता दें कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एंड के गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं चैट बॉक्स में, जो लिख रहे हैं डियर अनुति जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप, भारत में क्या बना है? वैसे भारत में बहुत कुछ बना है, लेकिन अलग बात है हम मानते कुछ भी नहीं है। भारत में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बहुत ज़्यादा शोर मचाना मना है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना मना है, हॉर्न बजाना मना है, एम्बुलेंस को जगह देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से हम कुछ भी नहीं करते हैं, एम्बुलेंस खड़ी रह जाती है और हम निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो आपका भी अगर यही ख्याल है तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का शो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा, आपका फीडबैक लगता है काफी ज्यादा मायने मेरे लिए। और घड़ी ने भी इशारा कर दिया कि वक्त अब आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत, कल मुलाकात होगी आपसे लेकर की एक बढ़िया सी स्टोरी बढ़िया सी कहानी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM आपके अपने गोना शहर की धड़कन रेडियो, ज्ञान असली अपनी आर चुनौती और मेरी को होस्ट सृष्टि के साथ। आपका अगला कार्यक्रम सेहत या सिंह, जिसमें बात होगी सेहत की, सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहें तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
1: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है, जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, किशोरियों में ज़्यादा होती है, कारण बच्चों में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की ज़रूरत उनके शरीर को ज़्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
1: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
1: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
1: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि ज़रूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
1: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
1: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग वो खाने में लेने चाहिए, आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
0: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
1: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीज़ें आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
1: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
0: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करें?
1: देखिए ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है तो आप इसे घबराएं नहीं, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफ़ी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं, ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत

0: तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं। और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती हैं ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSCPSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमरनिधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है, और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूं जिससे वो लाभ उठा सकें।
2: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
3: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, वाइटमिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना, या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
2: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
3: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना, और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
2: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
3: जी हाँ बिल्कुल, अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
2: जी, तो मैम अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
3: ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
2: तो मैम मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
3: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है, और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
1: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
3: ये आसान है, परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं, और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
2: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है, तो इसके बारे में।
3: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है, तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
2: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
3: जी हाँ बिल्कुल होता है, ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
1: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
3: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
2: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज के युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
3: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
2: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
3: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता एंड साथ में है आज अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? आज है मंडे, यानी कि लजीज मंडे, और मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं खाना खजाना, और इसी खाना खजाना को लेकर के अंशिका आ गई हैं आज। और अंशिका की जो तबीयत खराब हुई थी, वो खाना खजाना नहीं, खाना दवा के खाना,
10: दवा खाना मतलब
9: नहीं, दवा खाना या दवा के खाना, दोनों सेम जैसे कहते हैं ना कि सेम वर्ड्स हैं, तो इसमें हम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है कि खाना खजाना है, खाना दवा खाना है, कि खाना दवा के खाना है। तो ये सारी बातों को क्लियर आउट करूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा शो शुरू हो चुका है, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है, जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड आज लेकर के आए खाना खजाना में बहुत सारी लजीज डिशेस को, एंड मैं कुछ मौसमी चीज़ों को लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी गर्मियों में फलों का राजा होता है आम, क्यों अंशिका?
10: जी मैम।
9: पसंद है ना आम?
10: बहुत।
9: अच्छा, मुझे लिसनर्स बताएंगे कि कितनों को आम पसंद है, फटाफट चैट बॉक्स में आएंगे और बताएंगे कि आम किसको पसंद है और कौन सा आम पसंद है, क्योंकि आम की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। पता नहीं कौन कौन से, एक मैंने अभी भी, मैं गई थी कहीं बाहर, तो मैंने वहां से सुना मार्केट में बादाम आम है, रानी आम है, सफेदा आम है, मतलब बहुत सारे आमों की वैरायटीज भी थी। बट मुझे तो जो बात है ना, जो एक सफेदा आम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा येलो होता है और बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो खैर वो पसंद है। पर मैं आपको बताऊंगी दशहरी आम, उससे एक रेसिपी बताऊंगी, और अंशिका भी बताएंगी। अंशिका आप क्या बताने वाली?
10: आज मैं आपको लीची की आइसक्रीम बताऊंगी।
9: वाओ, ये भी हमारी गर्मियों की एक फेवरेट फ्रूट्स में से कहा माना जाता है कि फेवरेट फ्रूट्स हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा गोंडा में भी मिल रही हैं, जहाँ कहाँ देखो लीची के पहाड़ से पहाड़ ठेलों पे मिल रहे हैं। तो भाई खाइए और इन्जॉय करिए गर्मियों में, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा, क्योंकि खाना खजाना, खाना दवा खाना, और खाना दवा के खाने वाले में जो कन्फ्यूजन हो रही है ना,
10: वो क्लियर करना है,
9: वो क्लियर होगी, इसीलिए थोड़ा सा आराम से खाएं। एंड आम भी तुरंत मार्केट्स लेकर के आएं और ना खाएं, क्योंकि आम की तासीर कहा जाता है कि थोड़ी गर्म होती है, तो उसे लेकर के आएं, प्रॉपर तरीके से उसको वॉश आउट करें, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, अगर फ्रिज में नहीं रख पा रहे हैं तो आप घड़े के पानी में 1 से 2 घंटे पहले रख दें, उसके बाद ही आप आम को खाएं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बतानी हैं, जैसा कि हमारा सेगमेंट होता है आज की पोयम का, बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, अंशिका को भी नीड हो रही थी पानी की और मुझे भी। तो आइए, एक औपचारिकता है, हम दोनों एक ही साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
10: शुभ दोपहरिया,
9: बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: 100% discount.
1: Wow!
0: Geeta International School for a better tomorrow. Admissions open from playgroup to class 12. Geeta International School, जहां आपको मिलता है science and commerce stream, activity based learning, taekwondo classes और वाहन की सुविधा उपलब्ध है. पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546.
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन.
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका.
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली और आ गई है आपकी आर जे समता और आर जे अंशिका. बिल्कुल भाई, हमारा लजीज मंडे तैयार है आपको परोसे जाने के लिए.
5: जी हाँ, और अभी मैंने कहा था ना कि मैं 3 बातों में फर्क बताऊंगी, यानी कि आज है लजीज मंडे, है ना, नहीं खाना खजाना,
4: खाना खजाना
5: एंड खाना दबा के खाना एंड खाना दवा खाना. तो भाई अंशिका ने ऐसे ही कुछ किया, जब आप पूछ रहे थे हमसे कि अंशिका नहीं आई है, तो जो 3 दिन मैंने अकेले बिताए यहाँ पे, तो अंशिका ने खाना खजाना किया था, फिर खाना दबा के खाया था एंड खाना दवा खाना. यानी कि इन तीनों से इन लोगों ने इन्होंने अपने आप को एक प्रिकॉशन में रखा और उसी के कारण से ये नहीं आई थी मैडम. इनकी तबीयत खराब थी इस वजह से, और धूप के कारण भी इनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी बात को जब कोई नहीं मानता है तो उसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता जरूर है. अब आप इस चीज को एग्री कर रही हैं?
4: यस मैम.
5: हाँ, तो चलिए आज जो मैं पोयम आपको बताने जा रही हूँ वो है जिंदगी और जायका.
4: वाह, टाइटल तो बहुत ही अच्छा है.
5: आई थिंक इसके अंदर का मसाला भी बहुत अच्छा है. आइए हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें चाय है, ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, सारी चीजें हैं. तो फटाफट देर न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज की पोयम. सुबह की चाय से लेकर रात की डिनर थाली तक, सुबह की चाय से लेकर रात की डिनर थाली तक, खाने पीने का शौक है हमको बहुत निराला. जैसी हैं अंशिका क्या बोले अब हम, वैसी इनके लिए आज पोयम भी, ये पोयम भी निकल के आई है. चाहे हो गर्मा गर्म कचौड़ी या जलेबी, या फिर हो मसालों से सजी बिरयानी मतवाली, महक अगर आए कहीं से तो खींचे चले जाते हैं. स्वाद के दीवाने हैं हम, हर जायका अपनाते हैं. खट्टा मीठा तीखा नमकीन सब कुछ है भाता, लजीज पकवानों को देखकर ही मन हर्षा जाता. कोई पूछता है कितना खाओगे, जरा तो रुको. अरे क्या अंशिका, वाह बिल्कुल तुम्हारे पर फिट बैठ रही है. कोई पूछता है कितना खाओगे, जरा तो रुको, हम मुस्कुराकर कह देते हैं भैया दिल है छोटा नहीं भरता. दिल है मेरा, दिल है छोटा नहीं हमारा, पकवानों के आगे नहीं चलती कोई भी दीवानगी, खाओ और खिलाओ यही तो है असली जिंदगी. जवान पर पिघलता मक्खन और कबाब की नली, कबाब की नमी, यही तो है जिंदगी जिसमें किसी चीज की नहीं होती है कमी. खाने के बहाने खुशियों के पल यूं ही सवर जाते हैं, शौकीन लोग तो बस हर निवाला प्यार से खाते हैं.
4: वाओ, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी,
5: एंड टोटल ऑन डेडिकेट टू अंशिका.
4: थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम. और बहुत प्यारी पोयम थी, और आज आप मतलब लेके आई थी, मुझे सुन के ही ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि कोई काफी टाइम से जो है बीमार चल रहा होता है, जब तो कचौड़ी और जलेबी और ये
5: देख
4: सब
5: रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं.
4: नहीं सुन के, मतलब मैं फील कर रही थी, क्योंकि मैं फिलहाल खा तो सकती नहीं हूँ अभी कुछ दिन तक.
5: अभी कुछ दिन तक नहीं खाना, मतलब
4: कुछ महीनों तक.
5: एक ऑन एयर रियल एक एडवाइस है कि कुछ दिन तक ना हल्का खाओ.
4: नहीं मैम,
5: लाइक जैसे खिचड़ी हो गया, दाल चावल हो गया, बहुत दाल चावल बहुत ज्यादा मतलब उसको जैसे बहुत लोगों के दाल घर जो दाल बनती है बहुत गाढ़ी दाल बनती है, लेकिन बहुत पतली वाली और चावल में मतलब जैसे दाल ज्यादा हो और चावल कम हो
4: जी,
5: वैसा वाला खा सकती हो. और आम को तो बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि आम गर्म होता है, और अभी भी आप ठीक हुई हैं तो आम को थोड़ा अवॉइड करो, लीची अवॉइड करो. खाना है तो आप इसमें आप खा सकते हैं बनाना, एप्पल, ये सब आप खा सकते हैं.
4: जी बिल्कुल,
5: ठीक है
4: जी मैम बिल्कुल.
5: तो अब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ पे की ओर आते हैं.
4: आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो बताती हूँ आपको, और वो ये है कि हमेशा जब भी हम हमारी यादें जो होती हैं ना वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होती हैं मैम, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत खराब होती हैं, बहुत खराब नहीं कहेंगे बस कुछ कड़वी होती हैं।
5: हाँ।
4: लेकिन आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातों को ज़्यादा गहराई से महसूस करता है और जल्दी याद रखता है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में कि अपनी जितनी भी पुरानी यादें हैं उनके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। बुरी यादें हैं तो उनके बारे में कभी सोचिए मत, क्योंकि जिन यादों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारी वही यादें हमारे दिमाग में एक जैसे कहते हैं ना कि बर्फ जमती है, ठीक उसी तरीके से हमारे दिमाग में जम जाती हैं और फिर हमें बुरे ख्याल आते हैं। और ये सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को ही नहीं फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए अपनी बुरी यादों से दूर रहें, और अगर आप अपनी बुरी यादों से दूर नहीं रह पाते मतलब वो रह रहकर आपके माइंड में रिसाइकल होती रहती है, क्योंकि बहुत लोगों की ये हैबिट होती है कि उनकी जो बातें वो याद नहीं करना चाहते हैं वो उनके माइंड में रिसाइकल होती रहती हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो कोशिश करें उन बातों से हटने की। हटने का मतलब ये नहीं है कि भूलने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है उसे स्वीकार करने की। कई बार हमारे मन में बातें सिर्फ तब चलती हैं जब हम कहते हैं हटो छोड़ो मुझे इस बारे में नहीं सोचना, तो आप ज़रूर उस बारे में सोचेंगे, लेकिन इस बार आपको उन्हें स्वीकार करना है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है और मुझे बस इससे आगे निकलना है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा माइंड उन बातों को सेफ फील करने लगता है।
5: हाँ।
4: और फिर धीरे धीरे वो हमें याद नहीं रहती, एक पॉइंट आएगा जब आप पूरी तरह भूल जाएंगे। तो इसलिए आज का दिन आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही कहता है इसलिए आज का दिन आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही कहता है कि अपने दिमाग में चल रही बुरी यादों को हटाना है और उसकी जगह अच्छी यादों को देनी है और खुश रहना है।
5: बहुत बढ़िया। तो भाई अगर ऐसा है तो इस चीज़ को तो हम सभी लोग अपना सकते हैं कि पुरानी और बुरी यादों को बिल्कुल भी अपने जहन में नहीं आने देना है। बाहर से ही बोर्ड लगा देना है नो एंट्री,
4: नो एंट्री और नो रिवर्स भी।
5: नो रिवर्स भी
4: यानी कि आप मुझे याद भी नहीं आ सकते और आप मेरे दिमाग में वापस भी नहीं आ सकते।
5: बिल्कुल,
4: ये दोनों ही पॉइंट्स।
5: बिल्कुल। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली है और हम लोग तो पूरे के पूरे पसीने में भीग चुके हैं इस समय तक। तो चलिए यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधे आएंगे मास्टर शेफ की एक रेसिपी के साथ। क्यों?
4: बिल्कुल मैम।
5: ठीक है, तो मास्टर शेफ की रेसिपी के साथ आएंगे एंड रेसिपी के बाद में अंशिका आपको बताएंगी एक बहुत ही बढ़िया सी लीची की, क्या बताने वाली?
4: आइसक्रीम।
5: आइसक्रीम, देखा लीची की आइसक्रीम, वाओ।
4: मतलब मैं खा नहीं सकती हूँ बट बता सकती हूँ ना।
5: हाँ बिल्कुल बता सकती हैं। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे मस्त शेफ की एक रेसिपी को लेके। स्टे ट्यून्ड।

0: जोकर।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, और अब बारी है हमारी मास्टर शेफ की रेसिपी की। तो भाई, आज हमारी मास्टर शेफ ने भेजी है बहुत ही टेस्टी टेस्टी और चटपटी रेसिपीज। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी रेसिपी हमारी मास्टर शेफ की जबानी कि आज हमारे लिए क्या है।
6: चलिए श्रोताओ, आपको मीठा तो हमने खिला दिया, बिना नमकीन चीज खाए हुए तो मजा ही नहीं आता है। चाहे हम चाय पिए या कुछ भी हो, अगर नमकीन होता है तो बहुत मन लगता है खाने में, क्योंकि मीठे से तो बहुत जल्दी मन भर जाता है। तो चलिए, आजकल तो आलू कितना ज्यादा आ रहा है, आलू आ रहा है, शिमला मिर्च आ रही है, गाजर है, सब कुछ है। पूरी आपकी सब्जी मंडी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सजी हुई है। तो सबसे पहले हम 4 आलू लेंगे, लाल वाले, ज्यादा ना बड़े लीजिए ना छोटे लीजिए, 4 से 5। ये 4 या 5 लोगों के लिए ही नाश्ता बनेगा। अब आप क्या करिए, इन आलूओं को 2 टुकड़ों में करिए, और अगर हम तौल करके बताते हैं, लगभग आधा किलो आलू ले लीजिए आप लोग, क्योंकि लगेगा कि कितना है, कि बड़े होते हैं कभी आलू बहुत छोटे होते हैं, तो आधा किलो करीब आप आलू ले लीजिए। इसको आप उबाल लीजिए। उबाल के आप, ये जो होता है थोड़ा ठंडा होके कड़ा हो जाता है, इसलिए गर्म ही गर्म जब भी कुकर खुल जाए, अपने आप कुकर को खुलने दीजिए। फिर आप इसको छील लीजिए, छील करके खूब चिकना चिकना मैश कर लीजिए। मैशर है तो ठीक है, नहीं कोई कटोरी से आप इसको चिकना चिकना, जैसे हम भरता खूब अच्छा बनाते हैं, बिना गांठ वाला भरता बना लीजिए। और इसमें अब आप क्या करेंगी, 1 टेबल स्पून अरारोट भी मिला देंगी, और थोड़ा सा नमक मिला देंगी, और कुछ मत मिलाइएगा। इसके छोटे छोटे से गोले बना लीजिएगा, हथेली पे आप तेल लगाइए और छोटे छोटे से गोले बना लीजिए। अब इन गोलों को आप अलग रख लेंगी, आप तेल लगाई हुआ है इसलिए ये खराब भी नहीं होंगे। एक कढ़ाई में पानी दीजिए, इतना कि आपके जो बाउल तैयार हुए हैं वो उसमें डूब जाए। अब आप इसको उबलने रख दीजिए, जब पानी खौलने लग जाए सभी बॉल्स को आप उसमें डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो बॉल्स ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर आते जाएं, आप निकाल निकाल के अलग थाली में इनको रखते जाइए। ये तो आपने इतना काम कर लिया है, लेकिन अब ऐसे ही उबला हुआ खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए अब हम आगे छौंकने की तैयारी करते हैं, वो भी हम बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 प्याज लेंगे, अगर बड़े हैं तो 2 ले रहे हैं, छोटे हैं तो 3 ले रहे हैं। उसको खूब महीन सा चॉप करके अलग रख लेंगे। ऐसे शिमला मिर्च 1/2 ले लीजिए, बीज अलग कर दीजिए, उसको खूब छोटा छोटा काट लीजिए। 1 गाजर किनारे किनारे से निकाल लीजिए, बीज की गांठ मत डालिएगा, उसको खूब अच्छे से चॉप कर लीजिए। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लीजिए, जिसको कद्दूकस कर लीजिए। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ले लीजिए, जो हम लोग मसाले में यूज करते हैं वो ले लीजिए। टमाटर की सॉस ले लीजिए, इसको आप अलग रख लीजिए। थोड़ा सा सोया सॉस और लाल नारंगी कलर ले लीजिए। अब आप क्या करेंगी कि कढ़ाई में आप तेल डालेंगी। तेल डालने के बाद जो आपने लहसुन, ये हमें 1 आड़ी लहसुन, मतलब 15 से 20 कली लहसुन, जवा जानती है, उसको छील के खूब महीन कटा हुआ, आप तेल गरम होते ही ये डाल देंगी। तेल उसके बाद आप इसमें क्या करेंगी कि थोड़ा सा अदरक डाल दीजिएगा। जब थोड़ा सा एक दो मिनट बस चलाइए, कोई लाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें प्याज डाल देंगी कटा हुआ। प्याज डाल के जब देखिए हल्का गुलाबी मतलब मुलायम हो जा रहा है, लाल ना हो प्याज, उस समय आप इसमें शिमला मिर्च डाल देंगी और गाजर डाल देंगी और इसको आप चलाएंगी। अगर चाहिए तो इस समय मटर इतनी आ रही है, मीठी मटर भी बहुत ज्यादा, आप आधा प्याला मटर भी डाल सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में लाल हरा खाने में, तो आप आधा प्याला, यूं तो हमने मटर लिखाया नहीं है, आपकी इच्छा है, आप चाहिए तो डालिए चाहिए तो ना डालिए, वो कर लीजिए। फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए। और एक चीज आपको हमने और नहीं दिखाई है, दो टमाटर आप उबाल के छील करके मैश करके भी डाल देंगी तो थोड़ा खट्टापन भी रहेगा। सोया सॉस आधा चाय का चम्मच डाल लीजिए और रेड चिली सॉस या टोमेटो सॉस आप भी उसमें डाल दीजिए। और ये सब करते हुए आप थोड़ा थोड़ा पानी भी का छींटा देते रहिए। हमारा कोई भी मसाला जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा नमक डालिए और इसमें काली मिर्च डालिए और थोड़ा पानी डाल दीजिए, थोड़ा लदबदा सा रहे, सूखा नहीं रहे। अब आप क्या करेंगी, इसको एक दो मिनट चलाती रहेंगी, पकाती रहेंगी, ताकि हमारा टमाटर प्याज शिमला मिर्च ये सब एक सार हो जाए, आपस में खूब अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा है ये ही। अब आपने जो अपने पोटैटो बॉल्स तैयार करे हैं वो इसमें आप डाल देंगी और डाल के आंच आप ध्यान रखिए धीमी ही रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। तेज से क्या हो जाता है, सब मेरा मसाला ये सब जलने लगता है, उसमें अलग स्मेल आ जाती है, क्योंकि उसमें सॉस और सब पका हुआ सामान पड़ा हुआ है। इसलिए आप उसमें मध्यम आंच रखते हुए अपने बॉल्स आप डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे चलाइए। और जब सब उसमें मिल जाए तब आप इसमें थोड़ा सा सोया जानती है ना, सोया मेथी के संग थोड़ा सा सोया और थोड़ा सा पुदीना ऊपर से डाल दीजिए और गरम गरम जो भी मेहमान है उसको सर्व करिए। अब आप इसके संग जो है सिरका जो है उसमें हरी मिर्च काट करके डाल सकती हैं, जो कोई जैसा पसंद करे, सेव भी डाल सकती हैं, जो भी लोग खाते हैं दालमोट वाला सेव है वो डाल दे के सर्व कर सकती हैं, नहीं तो उसमें अलग से रखिए, जिसको जो पसंद होगा वो डाल के खा लेगा। लीजिए तो आपका बहुत सरल एक पोटैटो बॉल्स की रेसिपी हमने आपको बता दी। और आप बना के देखिए, हम जो रेसिपी बताते हैं आपको बहुत सरल बताते हैं और घर के सामान से ही बताते हैं। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है मत डालिए सोया सॉस, आप टोमेटो सॉस डालिए। टोमेटो सॉस जिनके घर बच्चे हैं उनके यहाँ तो रहता ही रहता है, नहीं है तो आप सॉस बना लीजिए। टमाटर इस समय बहुत आ रहा है, मैं अगली बार आऊंगी तो आपको टमाटर की सॉस ही बता दूंगी। और एक बार हम एक साल पहले हम बता चुके थे आपको गाजर गोभी का अचार, हम सोचते हैं फिर से बता दें, जो हमारे नए सुनने वाले हैं उन्होंने वो अचार नहीं खाया है चखा है तो मैं बता दूं, बहुत जल्दी बनने वाला और तुरंत खाने वाला अचार है। तो फिर मैं जब अगली बार आऊंगी तो आप लोग को ये भी सिखाऊंगी और मैं जो बताती हूँ वो आप लोग जरूर बनाया करिए, क्योंकि मैं बहुत सरल ढंग से और बहुत अच्छा बताती हूँ कि कोई भी खाएगा, आप जो भी खाएंगी हमेशा इसकी तारीफ करेंगी और सब अपनी सहेलियों को भी बताएंगी कि मैंने ऐसे बनाया। धन्यवाद।
5: बिल्कुल मैम, जरूर बनाएंगे और लिसनर्स आप भी बनाइएगा। चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता एंड साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट चलते हैं मास्टर शेफ की दूसरी रेसिपी। देखिए, ये होता है एक काम के प्रति डेडिकेशन। वो यहाँ पे तो नहीं है, बट उन्होंने घर से ही बैठ करके इतनी सी लजीज रेसिपीज को हमारे लिए, यानी आप सभी के लिए भेजा है। तो आइए उनका सम्मान करते हुए नेक्स्ट हम जानेंगे मसूर दाल के कबाब। मसूर दाल के कबाब है एंड मसूर के कबाब, आई थिंक मसूर दाल के कबाब होंगे, बट मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट रेसिपी का राज।
5: तो फिर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग शायद मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं दो तरह की रेसिपी बताऊंगी। एक तो बताऊंगी नवरात में व्रत वाली, और एक मैं बताऊंगी रमजान के बाद, रोजा खोलने के बाद कुछ चटपटा मसालेदार या शाम को खाने के लिए। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ मसूर के कबाब। आप लोग सादी मसूर को जानते ही होंगे, पीले मतलब छिलका उतरी भी मिलती है और छिलके वाली साबुत भी मिलती है। जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इसमें कोई मतलब दाल का चुनाव नहीं है। तो मसूर की दाल आप 500 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद उसमें जो है 4 प्याज पड़ेंगे, पिसा धनिया 3 चाय के चम्मच, पिसा मिर्चा 2 चाय का चम्मच, लहसुन की 8-10 कलियां छील के पीस लीजिएगा, बड़ी इलायची 4, छोटी इलायची 4, लौंग 6, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा 1/2 चाय का चम्मच और कबाब चीनी। कबाब चीनी जानती थे, दालचीनी में जिसमें डंडी लगी रहती, काली मिर्च में जो डंडी लगी रहती है उसको हम कबाब चीनी कहते हैं। जावित्री, थोड़े से धागे 4-5 धागे, और इन सबको जो है एक ही संग पीसा जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, मसूर की दाल, मसूर जो वो दाल आप 500 ग्राम ले लीजिएगा, प्याज 4 ले लीजिएगा, पिसा धनिया 3 टेबल स्पून, पिसा मिर्चा 2 चाय का चम्मच। अब बड़ी इलायची है 4, कहीं आप 2 भी ले सकते हैं, स्वाद कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और लहसुन 8-10 कली, छोटी इलायची 4, लौंग 6, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा 1/2 चाय का चम्मच, कबाब चीनी जो है वो भी 1/2 चाय का चम्मच, जावित्री 4-6 धागे। अब आप क्या करेंगी, दाल को पहले भिगो लेंगी। अब चाहे रात में भिगो लीजिए, चाहे सुबह, अब जब शाम को खाना है तब आप 9-10 बजे करीब भिगोइएगा। 4-5 घंटे गर्मी में काफ़ी होते हैं भिगो करके पीसने के लिए। तब आप उसको भिगो लेंगी, भिगो करके शाम को पीस लेंगी। पीसने के बाद जब पीसेंगी, उसी समय अलग से मसाले में 4 प्याज, धनिया, जो भी हमने आपको बताया वो सब पीस लीजिएगा। सब पीसने के लिए उसको पीस के अलग रख दीजिएगा। थोड़ा आपका रमजान चल रहा है, और हमारे भी सब बहुत सारे, सब लोग तो व्रत रहते नहीं हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसको चटपटा खाना पसंद करेंगे, तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए ना। तो इसमें भरने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चाहिए, किशमिश 12-15 ले लीजिए, खोया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 50-100 ग्राम के बीच में ले लीजिए, 2 छोटा छोटा महीन कटा हुआ ले लीजिए, पुदीना चाहिए तो थोड़ा सा ले लीजिए। अब क्या करेंगी, कढ़ाई में 1 टेबल स्पून आप तेल डाल देंगी और उसमें क्या करेंगी, जब गर्म हो जाए तो सभी पिसे हुए मसाले जो पिसे हुए हैं उन सबको डाल देंगी और भूनेंगी थोड़ा। जब मसाला जैसे तेल छोड़ने लगता है, जब पक जाता है, तब उसमें आप क्या करेंगी, उसी तरह से अगर नहीं पकाया थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर भूनिए। एक समय आएगा जब मसाला भून जाएगा तो तेल छोड़ देगा। उस जब तेल छोड़ने लगे तब आप क्या करेंगी, दाल जो आपने पीस के रखी हुई है वो उसमें डाल देंगी। जब डाल देंगी उस समय नमक डाल दीजिएगा, तब अंदाज मिल जाएगा और उसका भी आप गाढ़ा हलवा सा बना लेंगी खूब अच्छे से। ये भूनती जाती है और गाढ़ी होती जाती है। खूब अच्छे से भून लीजिएगा, आंच मध्यम रखिएगा, तेज आंच में मत भूनिएगा। तेज आंच में क्या होगा, दाल जल्दी सूख जाएगी पर भुनेगी नहीं, इसलिए मध्यम आंच पर आप इसको खूब भूनती रहिएगा। जब आप ये खूब अच्छा चटपटा मतलब गाढ़ा गाढ़ा हलवा सा बन जाए तब आप इसको अलग थाली में निकाल करके रख लेंगी। अब क्या करेंगी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगी। आप कबाब तो देखे ही हैं, खाए भी हैं, बनाती भी हैं, तो एक कबाब एक गोले बराबर तोड़ लेंगी हथेली पे भी। अब जो भरना हमने आपको बताया था जिसमें अदरक थी, किशमिश थी, खोया था, प्याज था, पुदीना या हरी धनिया मिला हुआ था, उसमें से थोड़ा सा भरावन लेंगी और किसमें भरेंगी, जो आपने दाल का सामान तैयार किया है, दाल को तैयार करा है, उसमें हथेली पे रख के भर देंगी और चपटी टिकिया बना लेंगी। चपटी टिकिया बना करके अलग रख लेंगी। इसके बाद क्या करेंगी, आप थोड़ा सा मैदे का एक घोल बना लीजिएगा। जो भी आपके पास जितनी टिकिया तैयार है उसके अंदाज से घोल तैयार कर लीजिएगा और ज़रा सा नमक और काली मिर्च डाल दीजिएगा। इस घोल को अलग बना के रख लीजिए। अब आप क्या करेंगी, कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगी। तेल डालेंगी कि हमारे जो कबाब है वो डीप फ्राई हो जाए। बहुत तेल मत भरिएगा लेकिन अंदाज से डाल दीजिएगा। तेल को गर्म करिए और उसके बाद मध्यम आंच पे बीच की, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, उसमें जितने भी कबाब आपने बनाए हैं इसको मैदे के घोल में एक एक डिप करिए और इसको कढ़ाई में जो तेल गर्म है उसमें डालती रहिए। और ये आप देखिए तुरंत हो जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि मैदा लगा, अंदर पूरी दाल पकी हुई है, तो इसको बहुत उसमें टाइम भी नहीं लगता है। अब आप इसको निकाल लीजिए, सजा लीजिए चटनी सॉस जिससे भी आप खाना पसंद करें और गरम गरम सर्व करिएगा। ये ज़रूर मैं कहूँगी, ये मेरी बहुत स्पेशल डिशें हैं जिसको कि आप ज़रूर बनाइएगा। ये मैं आपके रोजे के लिए और नवरात्र के व्रत के लिए, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो भी इसको बना के खाएं। और अब जो है कि आप बना के खाइए और तब ज़रूर हमें बताइएगा कि कितने लोगों ने बनाया है और कितने लोगों ने इसको पसंद किया है। चलिए तो अब जो है मैं अब आ रही हूँ आपको नवरात्र में कुछ स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि व्रत रहता है तो हम लोग को लगता है कि क्या खाएं, वही पकौड़ी टिकिया बना लो, यही सब खा लो, लेकिन नहीं, अब तो बहुत अच्छा तरह से आप कुछ भी बना सकती हैं। क्या करना है आपको, एक कटोरी आप साबूदाना ले लीजिए, एक कटोरी आप मूंगफली का दाना ले लीजिए और चाहिए तो आपके पास वो होगा रामदाना, वो आधी कटोरी या एक कटोरी ले लीजिए। तीनों को अलग अलग करके पीस लीजिए। पीसने के बाद आप छान लीजिए, छान करके उसका एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। उस गाढ़े घोल को अलग रख लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट जरूर करने दीजिए। जब वो गाढ़ा घोल बन जाता है, तैयार हो गया, तब तक आप क्या करेंगी, चाहिए तो आलू उबाल लीजिए, चाहे तो जैसे भी आपकी मर्जी हो, सादा चिल्ला रखना है चिल्ला रख लीजिएगा, नहीं तो जो भी है थोड़ा सा आलू उबाल लीजिए, उसमें को छौंक लीजिए, उसमें जो है हरा मिर्च, हरा धनिया, नमक मिर्च, सब सेंधा नमक मिला करके उसको अलग रख लीजिए। अब क्या करेंगी, जो दाल बनाई जो आपने रखी थी ये तीनों मिला करके, इसमें थोड़ा अंदाज से पानी डाल के रखा हुआ आपने, इसमें थोड़ा सा आधा प्याला दही डाल दीजिए। दही डाल करके खूब फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें नमक थोड़ा मिलाइएगा और इसको तवे पे फैला दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, जैसे हम चीला फैलाते हैं या डोसा फैलाते हैं। उसके बाद इसमें जो आपने आलू की सामग्री भरी है, भरने के लिए बनाई है, वो इसके ऊपर पतला पतला करके फैला दीजिएगा, रोल बना दीजिएगा और गरम गरम खाइएगा। चाहे रायते के संग खाइए, चाहे टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, या जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे खाइए। तो ये जो है चिल्ला बहुत ही अच्छा बनता है। अगर नहीं है आपको चिल्ला बनाना है तो आप दही में ले करके घोल करके इसको इडली स्टाइल में डाल करके आप इडली की तरह भी पतले पतली बना सकती हैं और इसको खा सकती हैं। ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही हल्का, बहुत ही अच्छा नाश्ता रहता है और इस टेंशन से आप बची रहती हैं कि व्रत में हम क्या बनाएं और क्या बनाएं। तो ठीक है, आज फिर मेरी ये डिश आपकी ख़त्म हुई। अब आप बनाइएगा और बताइएगा। तो ठीक है, फिर से कल मिलेंगे नए डिश, नए उसके, और ख़ास तौर पे आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर आपको मेरी डिश पसंद आ रही है, एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत सरल सरल डिश मैं बता रही हूँ, ज़रूर बनाइए और तब आप उसमें कमेंट लिख के ज़रूर भेजिए, ताकि थोड़ा सा मैं भी और तरह अच्छे से आपको अच्छी अच्छी डिश बताने लगूँ। धन्यवाद।
6: बिल्कुल, हम कमेंट्स भी करेंगे और मैम को बताएंगे भी कि उनकी डिशेस कितनी अच्छी होती हैं, और मतलब मज़ा आ गया, इतनी आसानी से इतनी चीज़ें उन्होंने बनाने के लिए बता दी। तो भाई लिसनर्स, मुझे तो बहुत पसंद आई ये रेसिपी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी।

0: जेंश का आपको
1: अच्छी सी एंड लजीज सी रेसिपीज की ओर लेके चलना है। तो अभी तक आप लोगों ने मास्टर शेफ की रेसिपीज को सुना, आइए अब हम सीधे चलते हैं। अंशिका जो कि अभी स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि आज हम लीची से कुछ बनाने वाले हैं, यानी आइसक्रीम, आई थिंक सो।
0: यस,
1: तो फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो भागा जा रहा है। एंड मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मैंगो बताऊंगी, यानी मैंगो शेक बताऊंगी, अगर 2 से 3 मिनट अंशिका बचा देती है मेरे लिए। तो
0: चलिए कोशिश करते हैं कि 2 से 3 मिनट हमारे पास बच जाए और इसके लिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम लीची ले लेनी है, उसे अच्छे से छील लीजिए और बीज निकाल लेने हैं आपको, ठीक है? ये हो गया। अब आपको लेना है फुल क्रीम दूध, 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लीजिए और उसे धीमी आंच पर आपको उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक कि वो आपका 1 लीटर आधा लीटर नहीं हो जाता। जब वो आधा लीटर हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें डालना है कस्टर्ड मिल्क पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच आप डाल दीजिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो टेक्सचर आता है क्रीमी वाला वो बहुत अच्छा सा आता है। अब अगर आपके पास घर की मलाई है तो 2 कटोरी भर करके इसमें डाल देंगे, लेकिन अगर आपके पास घर की मलाई मान लीजिए नहीं है, इन केस तो जो मलाई का डिब्बा आता है, मतलब हाँ, जो मिलता है
1: मिल्क मेड मलाई, हाँ, आती है, मिल्क मतलब मार्केट में आती है मलाई,
0: वो ले लीजिए। 1 डिब्बा पूरा डाल देना है, 250 ग्राम का आएगा या 200 ग्राम तक।
1: कितने लोगों के लिए आइसक्रीम बन रही है
0: ये? 250 ग्राम से 300 ग्राम में आप बनाना है तो 3 से 4 लोगों 5 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है कि चीनी आपको डालनी है, लेकिन चीनी हमें डालनी है बहुत स्वाद अनुसार, क्योंकि लीची में भी अपनी
1: ऑलरेडी मीठा होती है और क्रीम में भी हल्की
0: मिठास होती है, इसलिए आप अपने हिसाब से चीनी डालें। अगर आपके घर में शुगर पेशेंट हैं तो चीनी ना डालें, क्योंकि लीची की अपनी मिठास होगी, क्रीम की होगी तो वो प्रॉपर टेक्स्चर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब बारी आती है वेनिला एसेंस, आपको डालना है कुछ बूंद। अब हम आते हैं कि इसको क्या करना है आगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने लीची को छीला, उसके बीज निकाले, उसके बाद आपने दूध लिया। अब आपको क्या करना है कि लीची के जितने भी गूदे आपके पास थे वो आपको मिक्सी के जार में डालने हैं और उसको पीस लेना है और उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है कि अब आपको इसी में, मतलब जो पेस्ट आपके पास है उसमें कस्टर्ड मिल्क, वेनिला एसेंस, चीनी, मलाई सब कुछ डाल करके और दूध डाल करके आपको इसे चढ़ा देना है होने के लिए। अच्छी तरह से पहले फेंट लीजिएगा चीनी डाल करके। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको चढ़ा देना है होने के लिए। थोड़ी देर आपको इसे गैस पे चढ़ाना है, मुश्किल से मैं बता दूँ बस 10 मिनट। 10 मिनट में आपका ये बैटर जो है वो पूरा एक खीर की तरह, जैसे गाढ़ी वाली खीर नहीं होती रबड़ी टाइप की, वैसा बन के तैयार हो जाएगा। जब ये पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एयर टाइट कंटेनर लेना है, उसमें आपको इसे जमा देना है। अब हम आपको बताते हैं कि मोड्स में क्यों नहीं जमाना है। मोड्स में इसलिए नहीं जमाना है कि इसको आप जब एयर टाइट कंटेनर में जमाएंगे ना, तो जैसे हम पीस पीस काट के नहीं खाते हैं वो वाली आइसक्रीम
1: फालूदे वाली,
0: हाँ उस तरह का एक बहुत ही अच्छा आएगा आपके पास टेक्सचर। लेकिन एयर टाइट होना चाहिए, हाँ। जिसमें पानी बिल्कुल ना जाए, क्योंकि जब आप
1: इसमें एक टेक्निक हम बता रहे हैं कि जब भी आप जमाया करें ना, तो आप फॉइल पेपर होता है, सबसे पहले आप फॉइल पेपर से कवर करें एंड देन ऊपर से आप ढक्कन लगाएं, और उसके बाद जो प्लास्टिक की रबर आती है ना उससे आप उसको टाइट कर दें। हम लोग ऐसे ही करते हैं और उसमें जरा सी भी पानी नहीं जाता है और बर्फ नहीं जमती है तब,
0: और आपकी लीची आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब आपको इसे 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। 7 से 8 घंटे सेट होने के लिए रख दीजिए। और एक चीज मिस हो गई जो मैं बता दूं, ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं इसमें तो आप पीस करके डाल दीजिए।
1: अरे मेरी फेवरेट चीज कैसे भूल गई तुम, ड्राई फ्रूट्स,
0: याद आ गया, देर आए बट दुरुस्त आए। तो ड्राई फ्रूट्स आप पीस के डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है, बादाम, काजू, किशमिश, सॉरी किशमिश नहीं, बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह जो भी है। हाँ। अब आता है ये डेकोरेट करने की बारी। तो डेकोरेट करने के लिए आप इसको जमाने से पहले, जब बैटर आप कंटेनर में निकाल रहे हैं उस वक्त आपको जो टूटी फ्रूटी आती है वो इसके ऊपर डाल देनी है और फिर जमाना है टूटी फ्रूटी डाल करके, ठीक है? टूटी फ्रूटी डाल के जब आप जमाएंगे और जब पीस पीस उसको आप काटेंगे जमने के बाद, तो वो हर पीस में जब टूटी फ्रूटी आएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। अच्छा। अब आप जमाएं इसे 7 से 8 घंटे और जब जम जाए तो इसको खाइए, एंजॉय करिए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और तो और एक बात और कि ये आइसक्रीम खिलाएं, और अगर जिसे कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, किसी से कुछ बातें हो जाती हैं, तो मीठी सी आइसक्रीम खिलाइए और मीठी से शुरुआत करिए पुरानी बातों को भुला करके। और मैम के लिए टाइम बचाने की बात हुई थी, तो मैम 2:53 हुए, मैंने आपके लिए टाइम बचा दिया, तो आप मैंगो शेक बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, वो मैंगो शेक नहीं है एक्चुअली, वो कस्टर्ड मैंगो शेक है। okay. और बहुत ज़्यादा लजीज से बनेगा ये। तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स, आपको पता है कि आपको

0: दो बड़े आम चाहिए और आम इसमें आपको दशहरी आम लेना है, इसलिए दशहरी आम लेना है क्योंकि उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, है ना। हाँ, उसका बहुत येलोइश कलर नहीं होता है, बाकी के कलर बहुत हल्के वाले होते हैं, बट ये जो दशहरी आम का कलर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप उसको उसको पील ऑफ कर लें, उसके पूरा गूदा उसका निकाल लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फुल क्रीम दूध लेना है 0.5 लीटर, उसमें आपको आपने एक खुला हुआ कंटेनर ले लेना है, जैसे कढ़ाई वगैरह होगी, और उसको गैस पर रख देना, लेकिन गैस अभी ऑन नहीं करना है, गैस अभी ऑन नहीं करना है। और ठंडाई दूध मतलब रहेगा, उसको अगर आपने पहले बॉईल कर लिया तो बिल्कुल उसको चिल्ड कर लीजिए पहले, ठीक है। चिल्ड करने के बाद मतलब ठंडा कर लीजिए, और आपने 1 कप दूध निकाल लेना है उसमें, और 2 से 3 भरे भर करके चम्मच आपको डाल देना है उसमें कस्टर्ड पाउडर, जो कि वेनिला एसेंस आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप वो ले लेंगे, और उसमें अच्छे से पहले घोल लेंगे ठंडे दूध में।
1: जी,
0: ठंडे दूध में घोलने का मतलब होता है कि उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम।
1: जी मैम।
0: तो अब आपने वो पूरा जो ग्लास में दूध है वो आपने डाल देना है, जो कि आपने कढ़ाई में दूध रखा हुआ है। अब धीरे धीरे डालने के बाद में उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब आपको गैस ऑन करना है, गैस ऑन करके हल्का सा उसको गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे वो गाढ़ा होने लगेगा पूरा, ठीक है। और इधर हमें कुछ तैयारी पहले से कर लेनी है, जैसे सब्जा के बीज आते हैं जो ब्राउनिश शेड में होते हैं, और वो हमेशा से ड्रिंक्स में काम आते हैं, मतलब कोई भी अगर आप शरबत बना रहे हैं, या फिर आप जैसे रुआबजा हो गया, या फिर कोई बेल का शरबत हो गया, तो इस समय वो ठंडा होता है वो सब्जा के बीज, तो आप उसको पहले से भिगो के रख देंगे। मतलब उसकी एक खासियत है कि अगर आप 2 चम्मच भिगोएंगे ना तो वो 4 चम्मच हो जाता है।
1: जी मैम।
0: और इसमें एक चीज मैं स्पेशली नई चीज इसमें ऐड कर आज कर रही हूँ, साबूदाना।
1: साबूदाना,
0: हाँ, साबूदाना को आपने भिगो देना है और उसको फिर हल्का सा बॉईल कर लेना है।
1: वाओ।
0: बॉईल करने का मतलब है कि जब आप उसको ठंडा करेंगे, बॉईल करेंगे, और वो बिल्कुल उसको ठंडे पानी में जब आप उसको फिर से ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल जैसे नहीं ट्रांसपेरेंट मोती होता है,
1: जी जी।
0: उस रूप में आ जाएगा ये। और उसको भी आप ठंडा करने के लिए रख दें, और इधर सब्जा के बीज को भी पानी से उसको अलग कर लें, और इधर कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें। अब जो हमने आम के पल्स को निकाला था उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध डाल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पेस्ट बना लेनी है, एंड देन अब हमको कस्टर्ड में इसको ट्रांसफर कर देना है, सब्जा के बीज डाल देना है, और एक और क्या चीज मैंने भिगोई थी अभी,
1: साबूदाना
0: वो भी डाल देना है, ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, थोड़ी सी पंखुड़ी डाल देनी है, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देनी है, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, थोड़ा सा कोई भी अगर एसेंस आपके पास है तो वो डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और अच्छे से उसको मिक्स मिक्स मिक्स करके शीशे के ग्लास में ही इसको सर्व करिएगा। पहले इसको ठंडा करिए, शीशे के ग्लास में इसको अरेंज करिए, एंड देन ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, एंड गेस्ट को आप इसको सर्व कर सकते हैं।
1: वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब साबूदाने वाला मैंगो शेक तो मैंने पहली बार सुना था, थैंक यू मैम, बहुत टेस्टी लगता है।
0: हाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतनी ज्यादा गर्मी है ना स्टूडियो में कि मैं आपको क्या बताऊं यार, तो हम लोग तो चलते हैं और थोड़ा ठंडा वाना पानी वानी पियेंगे, एंड देन कल हम फिर से मिलेंगे आपको सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टर स्किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टी स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टी स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
13: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
12: और जेंट्स के लिए?
13: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
12: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
13: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

हाँ जी, स्वागत है आप सभी का और वक्त हो चला है आपके अपने फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, जो लेके आ गई है आपके इस पसंदीदा शो को, जिसमें आप अपने सदाबहार नगमों को हम तक पहुंचाते हैं अपनी कॉल्स के माध्यम से। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। और इस स्टूडियो का नंबर वही वाला है, फिर से आपको मैं बताना चाहूंगी, 6393314 यानी कि 6393316429639331 तो इस तरह से आप अपने कॉल्स लगा सकते हैं। डेडिकेशन का सॉन्ग हो, आपके मन का सॉन्ग हो, आपके बेमन का सॉन्ग हो, आपके मूड का सॉन्ग हो, आपके संग का सॉन्ग है, किसी के संग का सॉन्ग हो या फिर किसी के लिए कोई सॉन्ग हो, बेशक ट्यून करवाइए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा के साथ। फिलहाल आज के सफर का पहला नगमा, 3 से 4 के सफर का पहला नगमा आप सभी तक पहुँचाना चाहेगी आपकी अपनी प्यारी आरजे आकांक्षा अपनी प्लेलिस्ट से, अपनी ओर से आप सभी के लिए। वैसे कहते हैं ना कि प्यार में दिल किसी और का हो जाता है, फिलहाल देखते हैं गाना क्या कहना चाहता है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, 90s में से एक नगमा आप सभी के लिए।

जी हेलो, तो हमारी नीना जी ने कहा है, कांक्षा जी बोलती रही है, तो क्या बोले आपको, ओ जानम ओ जानम ओ जानम। फिलहाल ले गाना एंजॉय करिए हमारी प्लेलिस्ट का, आप लोगों को उम्मीद है काफी पसंद आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट नगमे के साथ में, और नेक्स्ट नगमा होगा हमारे अमित कुमार जी का, फिर हमारी नीना जी का गाना होगा। लेकिन नीना जी के गाने को हम लेंगे अपने देव प्रसाद जी के लिए, खास करके स्पेशली आपके लिए होगा देव प्रसाद जी, अपने गाने का इंतजार करिए। फिर होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी, देखते हैं नेक्स्ट नगमा किसके लिए होगा। 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय करें आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में। ये खूबसूरत सा नगमा आप सभी के लिए है।

हाँ जी, तो अभी आपने 90s हिट्स में से छुपा रुस्तम से ये नगमा एंजॉय किया है हमारी पसंद का। और अब बढ़ेंगे हम अमित जी की डिमांड के साथ में। भाई गाना बहुत ही प्यारा है, आइए एंजॉय करते हैं इस एक और रोमांटिक से लव सॉन्ग को।

हाँ जी नीना जी, क्योंकि कहीं ना कहीं माई देवी प्रसाद जी का बहुत बड़ा दुख है और उन्होंने अभी लास्ट शनिवार हमसे साझा भी किया था, तो हमें लगता है ये गाना उन पे सूट करता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अमित जी की इस ट्रैक को और फिर आते हैं आपके डिमांड की ओर, और जो हम डेडिकेट करने वाले हमारे देवी प्रसाद जी को। और देवी प्रसाद जी, आपका गाना सॉरी आज भी हम नहीं प्ले करेंगे, डिसेंट सॉन्ग भेजा करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है।

भाई एक और बात कहनी है। हमारे पंडित जी ने सुझाव दिया है कि कुछ कहना हो या ना कहना हो, सबसे पहले एसी वाला गहना हो। क्या बात है भाई, अपनी मोहतरमाओं के लिए एसी गिफ्ट कर दीजिए, लाइफ टाइम वो आपके साथ बनी रहेंगी। फिलहाल ये हमारी ओर से लाइन थी और चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। दो डिमांड और लेते हैं फिर आएंगे चैटबॉक्स की ओर, आप सभी के मैसेज की ओर। रीना शर्मा जी हमारे साथ में बनी हुई है भाई, रुड़की उत्तराखंड से, उनका भी मैसेज हम तक पहुँच गया है। और चैटबॉक्स वासियों आप भी बने रहिए, आप तक भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये गाना पहुंचाते हैं 3 से 4 के सफर में भाई। नेक्स्ट डिमांड है हमारी नीना जी को और ये गाना स्पेशली भेंट किया है आपकी अपनी हर्ष आकांक्षा ने देवी प्रसाद जी को।

गहना बहुत सही है वैसे नीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित चौधरी जी भी जुड़ गए भाई, महाराष्ट्र से आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। फिलहाल ये गाना आहा। किसी के इश्क में भुलाई या ना भुलाई, लेकिन रबड़ी खाते हुए एक दफा दूध के आनंद में जरूर खो जाएगा। स्वाद बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए भी।

रीना जी आपसे जो हो सकता है वो हमें पता है, आप कुछ भी मत करिएगा, बस एक दफ़ा वाइट रसगुल्ला हमारे लिए ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाले सॉन्ग की डिमांड के लिए।

0: नहीं सकता,
1: बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। जो दिल एक दफा लग गया है कहीं, फिर वो कहीं और नहीं लगता है। लगेगा लेकिन वो मन नहीं होगा और वो जहन नहीं होगा, ऐसा होता है। वैसे फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, और ये नेक्स्ट डिमांड किसी और की नहीं, हमारे प्रबल मिश्राजी पंडित जी की ओर से आई हुई है। वैसे आपने लिंक कुछ और भेजा था और बोल शायद आपने कुछ और भेजे थे, लेकिन मैं लिंक पे ही आ रही हूँ। पता नहीं क्या मजाक करते रहते हैं कभी कभी आप भी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रैक करके हम अपने सुरेंद्र यादव जी की, फिर होंगे हमारे अब्दुल मुजीम साहब जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से।

हाँ जी, तो दिल धक धक धड़कता है जब प्यार में कोई पड़ता है, और बस यही कहना चाहते थे हमारे पंडित जी इस गाने के माध्यम से। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पैगामात की ओर, और पैगामात में क्या क्या मैसेजेस आए हैं जरा देख लेते हैं, झांक लेते हैं एक दफा आप लोगों की चैट बॉक्स की ओर। उससे पहले भाई रीना शर्मा जी हमारे साथ में बनी हुई है रुड़की उत्तराखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी हमारे साथ में बने हुए हैं, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, नीना जी तो भाई हमारे दिल से हैं यानी कि गोंडा से हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे बीच में उपस्थित है बड़े दिनों बाद आज राम भवन जी बबनान गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून टू यू राम भवन जी। और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात की तो रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं हमेशा की तरह बड़े ही डिसेंट वे में, भाई आते ही गुड आफ्टरनून बोला है और ये हमें इलाहाबाद से सुनते हैं, मोस्ट वेलकम टू यू डियर। और नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो बबीता जी हैं हमारी क्यूट सी, और हाँ जी डिसेंट सी ये भी हैं, और गोंडा से भी हमें सुनती हैं। लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं, फिलहाल कॉल की ओर हम बाद में जाएंगे, फिलहाल आप लोग के पैगाम ही ले लेते हैं। और आप लोग को गाना काफ़ी पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मुजीम साहब है, लिखते हैं कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए जनाब, और वो क्यों, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। डेफिनेटली 200% यू आर राइट अब्दुल मुजीम साहब, बिल्कुल सही आपने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित चौधरी जी हैं हमारे साथ में महाराष्ट्र से, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैसेज की तो हमारे बीच में भाई पंजाब से आ गए हैं योगेश शुक्ला जी, बड़े ही दिनों बाद लेकिन हाँ आज ये हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। योगेश शुक्ला जी फ्रॉम पंजाब, अपना हालचाल जरूर बताइएगा योगेश जी अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही हो तो। और ओके जी, इनकी कॉल शायद नहीं उठी है, और हाँ लगातार कॉल्स भी आ रही है, फिलहाल देखते हैं हमारे पास में जो गाना है नेक्स्ट जो हमें प्ले करना है वो हमारे सुरेंद्र यादव जी का, आइए उसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं हमारे साथ में कॉल पे कौन है, वो मैं देख लूंगी, लेकिन आप लोग एंजॉय करिए इस प्यारे से ट्रैक को सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पर।

90s में से ये गाना आपने एंजॉय किया अभी हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे। और हमारे बीच में आ गए हैं हमारे कुमार साहब गौरा चौकी से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और योगेश जी ने बता दिया भाई इनका हालचाल सही है, बढ़िया है, मस्त है और ऐसे ही रहिए। क्या करें मैम, टाइम नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं राम भवन जी, आपने जब भी दस्तक दी उतना ही हमारे लिए बहुत है। नेहा जी हैं बहराइच से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि चंगू मंगू की जोड़ी हुई यहाँ कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ, यानी कि योगेश शुक्ला जी की डिमांड के साथ में।

हाँ जी, तो ये नगमा अभी आपने एंजॉय किया हमारे योगेश शुक्ला जी की डिमांड पे फ्रॉम पंजाब और पंजाबी बीट्स, पंजाबी कहीं ना कहीं अल्फाज आपने इसको एंजॉय किया है। और अतुल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। भाई कॉल कर लीजिए सर, क्योंकि आपका फोन इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम है, नंबर वही है 6393316429। अभी ऑपरेटर साहब आपको मेंशन कर देंगे। आप बढ़ते हैं अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड की ओर, और फिर नेक्स्ट डिमांड हम लेके आने वाले हैं किसकी, आइए आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट डिमांड जो होगी वो होगी हमारे प्यारे लिसनर रितेश जी की। हाँ, उसके बाद होंगे राम भवन जी, और फिर होंगे हमारे राजू सलमानी जी, अजीत साहब और घनश्याम जी और निब्बर जी, रईस साहब, बबीता जी, और इसके बाद में कौन होगा वो हम आपको बताएंगे इन सारी डिमांड्स के बाद। एंजॉय करिए।

हाँ जी, तो अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड पे अभी आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया और लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है। भाई क्या बताएं, एक ही घंटा होता है, कितनी डिमांड्स हम कंप्लीट कर पाएंगे, सोच के भी अफसोस होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, डिमांड हम लेते रहेंगे आप सभी की और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ कौन है। लेकिन आप एंजॉय करिए नेक्स्ट वाली डिमांड को, और ये नेक्स्ट डिमांड जिसकी है उनका नाम है रितेश जी, एंजॉय करते हैं इस प्यारी सी डिमांड को।

हाँ जी दोस्तों, तो ये सॉन्ग अभी आपने नितेश जी की डिमांड पे एंजॉय किया और अभी हम बढ़ेंगे राम भवन जी की डिमांड की ओर। और आज तो लग रहा है हम खाली कॉल उठाते रह जाएंगे, डिमांड बाद में प्ले होंगी। और फिलहाल चलते हैं अपने राम भवन जी की डिमांड को आप तक पहुंचाते हैं। 90s में से वो गाना जो आप सभी के दिमाग पे एक बार बीट बजने पे ही आ जाती है, एंजॉय करिए।

0: हाँ जी, तो अभी आपने बबनान से ये डिमांड को एंजॉय किया और अब हम चलते हैं आवाज विकास की ओर, यानी कि अपने प्यारे रॉबिन हुड जी यानी राजू सलमानी जी की डिमांड के साथ में, और फिर आते हैं अजीत साहब की डिमांड की ओर जो हमें सुनते हैं मुंबई से।
1: लेते जा, जा तो

हाँ भाई, और ये गाने सुनने के बाद हमारे चैट बॉक्स में या तो सभी हंस रहे हैं या तो फिर रो रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि किसकी विदाई हो रही है, तो ये तो हमें भी नहीं पता है। राजू सलमानी जी की जब नेक्स्ट कॉल आएगी उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अजीत साहब के डिमांड के साथ में, और उसके बाद आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम किसकी, या आपको हम बता देते हैं, वो होगी घनश्याम जी की, देन होंगे हमारे निब्बर जी, रईस जी और फिर बबीता जी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डिमांड हम किसकी ले रहे हैं।

क्या बात है भाई अजीत साहब, आपकी डिमांड बड़ी ही प्यारी होती है, चाहे दो लाइन ही सुन लें लेकिन मजा आ जाता है। और इस डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं घनश्याम जी की डिमांड के साथ में, देन होंगे हमारे निब्बर जी और फिर हमारे रईस साहब और बबीता जी। लगातार सुनते रहिए आप 3 से 4 के सफर को, यानी कि अपने कॉलर ट्यून गोंडा के शो को।

हाँ जी, आकाश शर्मा जी भी आ गए हमारे बीच में। आकाश जी, भोजपुरी सॉन्ग नहीं होता है, आप खाली भोजपुरी की डिमांड किया करिए बीना मैम के शो में जब भोजपुरिया नाइट्स हुआ करे। और मोहम्मद चांद जी भी हमारे दिन बीच में बड़े दिनों बाद हाजिर हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार आपको भी मोहम्मद चांद जी।

हाँ जी दोस्तों, और इसी बीच में हमने देखा कि हमारी तानिया गोंडा से आ गई हैं और साथ ही साथ में के गुप्ता जी भी आ चुके हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। और इस डिमांड के बाद जो नेक्स्ट डिमांड होगी उसमें हमारे के जी को हम ऐड करने वाले हैं।

हाँ जी, और हमारे पास में भाई डिमांड की भी रिक्वेस्ट आ रही है लगातार चैट बॉक्स में। तो आकाश शर्मा जी, आप हमारे पुराने वाले लिसनर हैं, आपको अच्छे से पता है आपका फोन इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम में प्लीज कॉल करिएगा। वैसे तो आज मैं कहूंगी मत ही करिएगा, कल कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी डिमांड है जिसमें से बहुत सारी छूटने वाली है। मोहम्मद चांद जी हमें सुने हथियागढ़ से, और इन्होंने कहा कल मैं भी कॉल करूंगा, मुझे इंतजार रहेगा और मैं आपकी डिमांड जरूर कंप्लीट करूंगी कल। फिलहाल आज बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है किसकी? ओहो, ये डिमांड हमारे निबर जी की, जो हमें सुनते हैं रेलवे क्रॉसिंग से। इसमें हमने ऐड किया है हमारे प्यारे के गुप्ता जी को, जो हमें सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। भाई रेलवे क्रॉसिंग से सुनने का फायदा यही है कि आप ट्रेन वाले गाने जरूर बजवा सकते हैं।

0: क्या करें भाई, किसी को अपने ससुराल जाना है, किसी को अपने नानी घर जाना है, कोई अपने सफर की ओर चल पड़ा है और निब्बर जी आपने क्या ही गाने बजवा दिया है। सारे के सारे हमसे कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। फिलहाल आप सभी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो और सकुशल अपने गंतव्य की ओर पहुंचे, बस इतनी सी कामना मेरी। और चलते हैं हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये हमारे रईस साहब की डिमांड आई। रईस साहब की डिमांड को एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं अपनी प्यारी बबीता जी की डिमांड की ओर, और देन होंगे हमारे मनी शर्मा जी। जी हाँ, खुरासान से। फिलहाल ये गाना बड़ा प्यारा है।
1: और जुम्मे की रात है,
0: क्या बात। इस गाने को गाने से ज्यादा चिल्लाने का मन करता है।

भाई। और कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात कहूं तो यही कहूंगे कि भाई इतनी देर बाद अगर किसी गाने में नाचने का मन किया तो यही गाना था भाई। रईस साहब मजा आ गया सुन के। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला डिमांड। और ओके अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड किसी और की नहीं है, ये है हमारी प्यारी लिसनर बबीता जी की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

भाई आकाश जी, आज तक हमने रिकॉर्ड है किसी को ब्लॉक नहीं किया है और बिना किसी हरकत के हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। ये काम खाली अदनान सर और बाकी बड़े बड़े आरजेस मतलब हमारे सीनियर्स करते हैं, हम तो कतई नहीं करेंगे। और अगर आपकी कोई आपको कुछ उन्होंने अभद्र कहा होगा तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन हमसे मत कहिए, ये हम कभी नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। थैंक यू सो मच एंड सॉरी।

आपने ये गाने को हेडफोन लगा के सुन लिया तो आपको गूज बम जरूर आ जाएंगे, और बस यही कहूंगी व्हाट अ फीलिंगफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच मनी शर्मा जी जो हमें खुरासा से सुनते हैं। अभी बढ़ते हैं हम अपने प्यारे लिसनर यानी कि मुमताज अंसारी जी की डिमांड के साथ में, देन हम आएंगे रीना शर्मा जी जो हमें रुड़की उत्तराखंड से सुनते हैं उनके डिमांड के साथ में, और 3 से 4 के सफर में आप शो सुने आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा, और 3:51 भी हो चुके हैं, शेष 9 मिनट मेरे पास और है, देखते हैं किस किस की डिमांड आज हम कंप्लीट कर पाते हैं।

हाँ जी, मुमताज अंसारी साहब की डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं, रीना शर्मा जी, उसके बाद में राकेश वर्मा जी, रीत लाल जी हैं इलाहाबाद से, सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, उसके अलावा बहुत सारे लिसनर हैं, नाम अभी बताते हैं, फिलहाल ये गाना।

अंसारी साहब की डिमांड पे अभी आपने ये गाना एंजॉय किया और चलते रीना शर्मा जी की डिमांड की तरफ। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड होगी, यानी कि हमारे प्यारे लिसनर हैं राकेश वर्मा जी, उन्हीं की डिमांड को हम डेडिकेट करेंगे अपनी प्यारी सी नीना जी को, नेहा जी को। और हमारे मंगू जी इंतजार करिएगा अपने गाने के लिए जो हमने आपको डेडिकेट किया है।

जी रुड़की से ये डिमांड अभी हमारे पास में आई हुई थी और हमने इसको प्ले कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में और ये डिमांड है हमारे राकेश वर्मा जी की, जो हमें जस्ट बगल से सुनते हैं, आने के दुखनारायण मंदिर से सुनते हैं और इस गाने में ऐड करते हैं अपने नेहा जी को और देन आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम रीतलाल जी की। लेकिन रीतलाल जी आप ये गाना काफी दफा बजवा चुके हैं इसलिए हम ये गाना नहीं प्ले करेंगे। आप लोग प्लीज गाने को चेंज किया करिए, अपडेट हुआ करिए कि गाना कितने दफा सुनते हैं आप लोग। सुरेश कुमार जी आपके भी गाने को नहीं प्ले करेंगे, आपने भी ये गाना कई दफा सुना है, प्लीज नए गाने लाने की कोशिश करें। फिर आएंगे हम नेक्स्ट रमेश कुमार जी की डिमांड लेंगे, भाई इनका गाना थोड़ा सा हटके है इसलिए।

हाँ जी दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट डिमांड हम लेंगे रमेश कुमार जी की, और आज की लास्ट डिमांड होगी हमारी मोहिनी तिवारी जी की, उनकी फ्रेंड कविता जी के लिए, जो कि फ्रेंडशिप का सॉन्ग होगा। फ्रेंडशिप का सॉन्ग मेरी पसंद का होगा, लेकिन मैं बता दूँ ये सॉन्ग मैं किसी को देती नहीं मोहिनी जी, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत आला दर्जे की है, इसलिए मैं ये सॉन्ग आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और रीतलाल जी, सुरेश जी, आप लोग एक ही डिमांड प्लीज़ मत किया करिए, थोड़े नए लाया करिए, नयापन आया करिए, ताकि इतने सारे गाने होते हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं।

भाई दिल का हम कुछ नहीं कर सकते और समय कभी नहीं कर सकते, इसलिए इस गाने को यहीं रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और ये डिमांड है हमारे पास में रमेश कुमार जी के, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आज की लास्ट डिमांड लेते हैं और माफीनामा अभी जारी कर देते हैं। भाई रीतलाल जी आपसे माफी चाहेंगे, अगर आपने कोई और गाना डिमांड किया तो जरूर प्ले करती, ये गाना आपने कम से कम नहीं तो मुझे अगर याद है तो 8 दफा इसके आप डिमांड कर चुके हैं। सुरेश जी सेम आपके साथ में भी है, एहसान जी माफ करिएगा, और इसके अलावा अमित जी हैं और फरीद सिलाई वाले, ये हमें अहमदाबाद से सुनते हैं, आज इनकी पहली दफा डिमांड आई थी, आपको भी मैं सॉरी बोलूंगी सर। ममता कौशोधन जी आपसे भी सॉरी है, अंशी जी आपसे भी, लड्डू सिंह जी और युग तिवारी जी, इतनी सारी डिमांड्स हमारी रह जाएंगी आज, उसके लिए माफी चाहूंगी, वक्त कम होता है, डिमांड बहुत सारी होती है, आप सबको अच्छे से पता है। फिलहाल ये ट्रैक

मोहिनी जी आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, कल आप अपनी डिमांड जरूर करिएगा। अभी मैंने घड़ी देखा तो वक्त तो बिल्कुल हाथ से फिसल गया है और 4 बजने को है, इसलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। एंजॉय करते रहिए इस ट्रैक को और सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वैसे अगर कोई अपनी डिमांड को ट्यून करवाना चाहता है या कुछ गाना आज सुनाना चाहता है तो आज जरूर आइएगा शाम आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में। आपकी अपनी आरजे आकांक्षा आपका इंतजार करेगी और देखते हैं आज किस किस को क्या क्या सुनाना है, क्या क्या कहना है। फिलहाल अब यहाँ से इजाजत दीजिए, हंसते खेलते रहिए और खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पानी तो बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राम हो, बहुत गर्म है दादा, जान परत है कि परनवा ही निकल जाई। इतना गर्मी, एक तो हमार जूनी चटपटो ही ना, ये ठंडवा जलाए के और चुप्पे वल्ली रहा थी दोपहरिया में, और हम दोपहरिया में आई थे। वो चाची
3: रिस लाग है हमरे,
2: वो चाची
3: रही रहा है।

0: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान वापस से मौजूद है आपके शाम के स्पेशल शो गोधुली में। शाम होने के साथ ही एक पर्सनालिटी जरूर आते हैं हमारे साथ स्टूडियो में और उनसे जुड़ी हुई कई सारी बातें करते हैं। वो जिस क्षेत्र के महारथी होते हैं उस पे तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन हम उन शख्स के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है और विषय हमारा, शायद आप इन हमारी लाइंस से अंदाजा लगा लेंगे कि एक ख्याल की तरह होते हैं जब पल पल में बिखर जाते हैं, अपने दिल की दुआओं से संभाला करते हैं हमें हमारे बुजुर्ग। जब अंतर मन से होते हैं हम खाली, फिर कोई नहीं हमारी राह नहीं, हमारा जुनू हमारी ख्वाहिश ताकत बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। हम कौन हैं, क्या है, जब कोई खुद की खबर नहीं होती हमें, मरते हुए उस पल आशीर्वाद बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। जी हाँ, सो एक ऐसी आबादी, एक ऐसा एज ग्रुप जिनके बारे में शायद ही हम बहुत कम बात करते हो, शायद इग्नोर पूरी तरह से हो जाते हैं। बहुत कुछ मिलता है हमको हमारी जिंदगी में, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी राहें, रास्ता, सब कुछ तो मिलता है, लेकिन ना जाने क्यों हम शायद उतना उनके लिए समर्पित नहीं हो पाते हैं। बहरहाल, उससे पहले आज हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस दिव्या कौशिक, कानपुर से मौजूद हैं आप भी और आप रिसर्च स्कॉलर हैं। स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सभी को। थैंक यू सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए।
0: Exactly. मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि बुजुर्ग जो हैं, जिनके घर में नहीं है, वो इस चीज की कीमत को जानते हैं।
1: जरूर।
0: Exactly. और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश से, और चूंकि आप कानपुर की ही रहने वाली भी हैं और यहां आज आप गुंडा FM पर हमारे साथ बुजुर्गों को लेकर, चूंकि आपका रिसर्च का एक विषय है जिसपे आप समाज में बुजुर्गों के हालातों पे रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बातों पे, उनकी साइकोलॉजी पे, उनके रहन सहन पे, यानी बहुत सारी चीजों को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे श्रोता आज उन चीजों को सुनेंगे जो कहीं ना कहीं उनके घर में है, उनके मोहल्ले में है, और जिनके यहाँ नहीं है जैसे मेरे पास, तो उस चीज की कमी भी है। लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता आपके बारे में जान जाए, प्लीज हम चाहेंगे कि अपना एक संक्षिप्त सा विवरण दे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, और आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
1: जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम दिव्या कौशिक है, मैं कानपुर की ही पली बड़ी हूँ। मेरे घर में मेरे बाबा, दादी, चाचा, मम्मी, पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा 10th डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर कानपुर से हुआ, मेरा 12th भी वहीं से हुआ, फिर मैंने BSc ऑनर्स होम साइंस में एडमिशन लिया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। उसके बाद मेरा था कि अब थोड़ा बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैंने MSc बाहर से करी, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से, जो कि जुहू मुंबई में है। फिर मैंने PhD में कानपुर में ही एडमिशन लिया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में।
0: ओके, तो ये आपकी एजुकेशन के बारे में हुआ। फैमिली के बारे में, कितने लोग हैं फैमिली में?
1: जैसे कि मैंने बताया, मेरे फैमिली में बाबा हैं, मेरी मदर हैं, मेरे चाचा हैं और मेरा छोटा भाई है।
0: ओके, तो संयुक्त परिवार कह सकते हैं।
1: राइट।
0: वाओ, वेरी नाइस। ओके, तो ये आपने फैमिली के बारे में बताया। बचपन से खेल कूद में बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का मन ही जो होता है वो काफी ज्यादा चंचल होता है कहा जाता है, और ऐसा होता भी है। कोई इंटरेस्ट एरिया रहा हो, आप किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो और अच्छा किया हो उसमें, कुछ ऐसा रहा है?
1: राइट, आपने तो मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। 10th से लेकर, जब से मुझे याद है, 10th में भी, 10th से लेकर BSc में रेस में मेरा 100, 200 एंड 400 ऑलवेज फर्स्ट रहता था। लॉन्ग जंप रहता था मेरा और खो खो रहता था। मतलब मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। मेरे बाबा ने मुझे इतना इनकरेज किया है, मतलब कभी मना नहीं करते थे। सुबह 6 बजे उठ के मुझे ग्राउंड पे जाना होता था, वो उठाते थे 5 बजे, जाना नहीं है 6 बजे के ग्राउंड पे।
0: वाह क्या बात है भाई, दादा अलार्म का काम करते थे।
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो स्पोर्ट्स में सिर्फ आपका रेसिंग में ही रहा है या और भी कोई और स्पोर्ट्स में है?
1: रेसिंग मेरा कह लीजिए एक मेजर है, और बाकी खो खो में भी मैं इन्वॉल्व रहती थी, मेरी टीम फर्स्ट आती थी। और
0: अंपायर तो आप आपका नहीं होता था ना?
1: नहीं सर, हमारा नहीं होता था, यूनिवर्सिटी का होता था।
0: ओके, मजाक कर रहा था। तो मतलब ये है कि खो खो की जिस टीम में आप होते थे तो फर्स्ट आती थी।
1: अभी देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में हुआ था उसमें भी फर्स्ट आए, और स्कूल में हुआ था उसमें भी फर्स्ट आए हैं।
0: वाओ,
1: हमारी टीम।
0: चलिए कांग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छी बात है। और जब कोई फीमेल ऐसा बताती है ना कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है या किसी पर्टिकुलर गेम में, तो रियली बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल को एक बार को फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है गेम में आने के लिए, बट अगर फीमेल में देखा जाए तो इसका रेशियो काफी कम है।
1: राइट,
0: एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि अगर आपको इतनी परमिशन मिली हुई है तो काफी कोऑपरेटिव फैमिली है आपके इस मामले में।
1: जी हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है मेरे, इवन मेरे ग्रैंड फादर एंड मदर
0: आप
1: बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब उन्होंने कभी ऐसे भेदभाव, जैसे सुनते आते हैं कि लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, नेवर, कभी नहीं। मतलब उन्होंने जैसे मेरे भाई को देखा है उतना ही मेरे को, बल्कि इवन मेरे से ज्यादा अटैच है आई थिंक। मतलब जहाँ भी जाएंगे कॉल करेंगे, पूछेंगे, मतलब बहुत ज्यादा।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स एक एग्जांपल हो सकते हैं बाकी लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ, चूंकि ये एक बात होती है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि आज की जनरेशन उस तरह कर भी नहीं रही, आपने काफी किया और अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात आती है लिटरेचर की, साहित्य की, लिखने पढ़ने की अगर हम बात करें
1: जी,
0: तो वैसे तो सब्जेक्ट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कभी जैसे कुछ कहानियों की बुक्स पढ़ना होता है, कुछ अलग से आर्टिकल्स देखने होते हैं, कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी रहा है या कभी पढ़ा है आपने इस तरह से कुछ चीजें?
1: हाँ सर, स्कूल टाइम्स में थोड़ा नॉवेल्स पढ़ने का एक क्रेज कह लीजिए चला था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्टिकल्स, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स होते थे वो पढ़ लेते थे, और रिसर्च पेपर्स स्टडी करने में हमारा ज्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि हमारा वो फील्ड ही है कि हम लोगों को देखने हैं कि 10 साल के रिसर्च पेपर्स में क्या क्या आए हैं, चेंजेस क्या, इनोवेशंस हुए हैं इन सब चीजों में। मतलब बेसिकली कह लीजिए रिसर्च एंड आर्टिकल्स, अब नॉवेल का शौक चला गया है।
0: ओके, कोई नॉवेल अभी तक कोई याद है जो आज भी जहन में तरोताजा हो? क्योंकि कई बार होता है कि कुछ कैरेक्टर्स में हम जीने लग जाते हैं।
1: सर अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक नॉवेल आ रही है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की, और आई थिंक मेरी लास्ट नॉवेल है। लास्ट मीन्स थोड़ा मोटिवेट होना होता है, तो आई थिंक अभी तो नहीं, रिसेंटली मैंने अभी नहीं खोली है उस नॉवेल को, बट हाँ वही मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करी है।
0: ओके, सो अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, मोटिवेशन।
1: जी,
0: से मोटिवेशन आता कहाँ से है?
1: सर मोटिवेशन मुझे फिलहाल तो इस टाइम पे कह लीजिए बुजुर्गों को देख के ही आता है।
0: अरे क्या बात है, वो कैसे?
1: मतलब वो इस एज में भी ऐसे ऐसे काम करके दिखा देते हैं। मतलब जो हम लोग अभी 5 घंटे काम, खड़े होके काम कर लिया भाई, हमारी कमर दर्द करने लगी, उनके मुंह से हमने कभी नहीं सुना नहीं ये हम नहीं कर सकते।
0: वाओ,
1: कभी भी नहीं।
0: क्या बात है, मतलब मोटिवेशन का वो सोर्स आपने बताया जो शायद सुनने वाला हर शख्स इस चीज को फील कर रहा होगा, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे। ऑलराइट, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बचपन से आप किस तरह की स्टूडेंट थी, एवरेज थी या टॉपर रही हैं?
1: नो सर, टॉपर तो नहीं कहेंगे, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। रात रात भर पढ़ के पास होते थे किसी तरह। ये है कि हाँ, अब एक पता है कि हमें अब ये लाइन मेरी है तो उसी से थोड़ा जुड़े रहते हैं, अब भी एवरेज ही कहेंगे, इतना टॉपर नहीं कहेंगे अपने आप को।
0: ओके, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, कुछ कानपुर वाला असर आप पे है या नहीं है?
1: मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसा।
0: ओके, लैंग्वेज में?
1: लैंग्वेज मेरी ऐसी ही है जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, रहती आप कानपुर में है बट बातचीत आप लखनऊ वाली कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ वर्ड्स की बात करें तो लोग अक्सर फन के लिए यूज करते हैं, कोई ऐसा एक दो वर्ड जो आपकी तरफ का हो और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता हो? और अक्सर लोग बोलते हैं टोपा होका।
1: सुना है।
0: मतलब जब कहेंगे बेवकूफ हो क्या, मतलब कुछ ऐसी हरकत हो जाए तो वहां पे ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है।
1: राइट, आप सही है, मैंने भी सुना है। एक काफी इंस्टाग्राम पे फेमस हो रही है, एक मुंबई में रहती है बट वो अपने कानपुर उत्तर प्रदेश को काफी प्रमोट कर रही है, मतलब मुझे याद नहीं है।
0: ओके ओके, हाँ तो ऐसी कई रील्स भी हमने भी देखी है और कई जगह ऐसा देखा है, वीडियो में भी सुना भी है कि हाँ लोग वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के काफी प्रमोट करते हैं। ये बात तो हो गई आपकी वहां की छाप की। अब अगर हम बात करें तो चूंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और रिसर्च स्कॉलर होने का मतलब है पेशेंट, पेशेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा कोर्स होता है जहां पे आपके पेशेंस का लेवल चेक किया जाता है पूरी तरह से। तो बहुत ही ठहराव के साथ ये कम्प्लीट होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को कि वो रिसर्च जब एक शब्द आता है आपके लिए तो आपको क्या लगता है, क्या ख्याल आता है, क्या डेफिनेशन होती है आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, रिसर्च मतलब आपने एक टॉपिक, ऑब्वियसली एक टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। पहले तो आपने जैसे नाम लिया, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, फाइंडिंग्स बहुत जरूरी है, मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने कोई एक टॉपिक ले लिया, बहरहाल फिर उसके लिए आपको 10 साल की स्टडी, रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी। उससे आपको ऑब्जेक्टिव्स निकालने पड़ेंगे, क्या आपको रिसर्च गैप लग रहा है उसमें कि ये इसमें और हो सकता था, उस चीज को आप कवर करेंगे। फिर वो आपकी एक रिसर्च डेवलप होगी कि हाँ, आपने ये रिसर्च पढ़ी है, इतने उनमें से आपको ये थोड़ा गैप लग रहा है कि हाँ ये करके, क्योंकि हर जनरेशन गैप तो होता ही है, सब मानते हैं।
0: Exactly.
1: तो वही जो गैप है उसको एज अ रिसर्च हम उसको फिल करेंगे।
0: ओके, बहुत अच्छे से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अगला सवाल ये आ रहा है कि भाई रिसर्च करने के बाद लग जाता है नाम के आगे डॉक्टर।
1: जी,
0: तो जैसे हमको भी बहुत पहले कंफ्यूजन होती थी, मतलब किसी ने अगर पेरेंट्स से बता दिया किसी ने कि डॉक्टर वो है, तो ऐसा लगता था कि ये तो अभी बस इंजेक्शन निकाल के लगाने वाली डॉक्टर है, जैसा कि बच्चों को होता है। तो ये आपके साथ भी होता था क्या पहले, कि डॉक्टर का मतलब ही है कि ट्रीटमेंट करने वाला, बुखार को सही करने वाला, सर्जरी करने वाला, ऐसा कभी आया है?
1: जी सर, बचपन में मेरे साथ होता था, डॉक्टर मींस, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर मींस भाई प्रोफेसर भी होता है।
0: एग्जैक्टली,
1: यही लगता था हाँ ये डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में काम करते होंगे, या फिर ये नहीं पता था कि एज अ प्रोफेसर भी होता है ये प्रोफेशन।
0: एग्जैक्टली, शहर की बात करें तो कानपुर चूंकि महानगरों की श्रेणी में आता है, लेकिन जब बात आती है मुंबई जैसे महानगरों की तो फिर काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं माहौल में, भाषा में, खान पान में। कैसा रहा वहाँ का आपका वक्त जो आपने मुंबई में गुजारा?
1: सर, वो मेरा बहुत सुनहरा वक्त था जो मैंने वहाँ गुजारा। वहाँ मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने शहर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। वहाँ पर मेरे जो गाइड थे वो, मेरे जो प्रोफेसर्स थे, सारे बहुत सपोर्टिव थे। इवन मेरी क्लासमेट्स भी बहुत सपोर्टिव थी। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मतलब अपने शहर को छोड़ के ही बाहर गई हूँ था, बट हाँ ये कहेंगे थोड़ा क्लाइमेट में थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि कानपुर का क्लाइमेट और वहाँ का, वहाँ ह्यूमिडिटी उस टाइम पे बहुत थी जिस टाइम पे मैं गई। तो बस मेरे लिए वही फैक्टर एक मेन है, बाकी एज सच कुछ चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने पड़े।
0: ओके, एक सवाल है जो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, चूंकि अक्सर ये मुद्दा भी बनता है कि मुंबई जैसे महानगरों में उत्तर भारत के जो लोग होते हैं उनको एक अलग निगाह से देखा जाता है, क्या आपने क्या महसूस किया, क्योंकि आप वहाँ पे होके आए, शायद इसलिए ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं।
1: सर, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल जायज है, बट मेरे साथ ऐसा मतलब मुझे अलग उससे ट्रीट किया गया हो या बिल्कुल भी नहीं, मतलब उस माहौल में मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व करने की सबने पूरी कोशिश करी। जहाँ मैंने इंटर्नशिप करी, मैंने पढ़ाई करी, मतलब उनका ये मानना था कि ये लड़की सोचिए दूसरे शहर से यहाँ आई है पढ़ने के लिए, और वहाँ पर कोई इतनी दूर से नहीं आया हुआ था अगर मैं आपको बताऊँ तो।
0: जी ओके, तो मतलब बस मेरा सवाल करने का यही मकसद था कि अपने श्रोताओं तक ये बात पहुंचाई जाए कि एक कॉमन राय सभी के लिए नहीं हो सकती है।
1: जी,
0: यानी यूनिवर्सल जैसा कुछ नहीं होता है कि एक ने सोचा तो सभी वही सोचते होंगे। बहुत अच्छे से आपने बताया। मुंबई में थी, कभी मन्नत देखने का प्लान नहीं हुआ कि लाओ शाहरुख खान का बंगला देखते हैं या किसी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, मिलते हैं, अक्सर लोग जाते हैं, माया नगरी कहलाती है।
1: हाँ सर, मैं जब अपनी मदर के साथ गई थी फर्स्ट डे, तब अमिताभ बच्चन जी का बंगलो देखा था बस।
0: क्या बात है,
1: और नहीं जा पाए।
0: तो अमिताभ बच्चन दिखे थे? नहीं,
1: वो नहीं दिखे थे, बट बाहर लोग फोटो क्लिक करा रहे थे उनके घर के बाहर खड़े होके।
0: कई ऐसे जबरा फैन होते हैं जो दिनों दिन खड़े रहते हैं जब तक नहीं आएंगे उनके महानायक या नायक नायिका। कभी ऐसा नहीं सोचा है कि ऐसा भी करना है?
1: नो सर, वो वहाँ बाहर खड़े थे कुछ लोग, उनका मैंने बैनर देखा था 365 डेज फ्लैश 12th डे, मतलब उनका 12वां दिन है 365 डेज में। तो मतलब वो जब तक नहीं आ जाएंगे, नहीं मिल लेंगे, तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेंगे।
0: मतलब इस कदर फैन फॉलोइंग की लोग वहाँ बता रहे कितने दिन से।
1: राइट,
0: माय गॉड क्या बात है। तो ये सच में हमारे भारत में देखने को मिलता है, लोगों का जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो अगर स्पेशली हम बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें तो बहुत तगड़ा होता है, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने दिया। वड़ा पाव बहुत फेमस है, कहते हैं सुबह का नाश्ता उसी से होता है। कितना पसंद आया, आपने वड़ा पाव को खुद कितना एक्सेप्ट किया?
1: सर मैंने बहुत एक्सेप्ट किया। अगर मैं रेटिंग दूं तो मैं 10/10 दूंगी, क्योंकि मैंने इवन कानपुर में आने के बाद वड़ा पाव खाया है।
0: क्या बात है। ओके,
1: अर्बन वड़ा पाव करके है कानपुर में
0: जी,
1: मैं वहाँ से बहुत ऑर्डर करती हूँ, मतलब मुझे इस कदर वो पसंद आया है।
0: कानपुर में भी ऐसे बहुत सारे क्विजींस हैं जो बहुत फेमस हैं
1: जी,
0: कुछ का नाम हम जानना चाहेंगे आपसे। कानपुर की कई चीजें फेमस है
1: जी,
0: एक तो झील ही है आपकी यहाँ की है
1: जी, मोती झील, जेट स्क्वायर और परमट मंदिर।
0: एग्जैक्टली, और कानपुरिया लोग भी। सो कानपुर का जब नाम आता है तो इतनी सारी जो रील्स स्क्रॉल करते हैं उसमें जब कानपुर का कोई ऐसा कंटेंट दिखता है तो लोगों को एक अलग ही इमेज होती है कि मतलब काफी फनी लोग होते हैं, काफी मजेदार होते हैं, मतलब काफी फन होता है वहाँ पे। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है
1: जी,
0: और इस साइड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इवन, और ये बहुत अच्छी बात है। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी और शहर में पैदा होना चाहिए था? मतलब कभी ऐसा फील आया कि नहीं आया? एक जस्ट क्वेश्चन है
1: सर, ऐसा कभी सोचा नहीं वैसे। अब आपने क्वेश्चन किया तो सोचेंगे।
0: ओके, सोच लीजिएगा और अपने ही तक रखिएगा।
1: जी जी।
0: ऑलराइट, सो दोस्तों ये तो थी हमारी बातचीत दिव्या कौशिक जी के साथ, और उनके बारे में जाने की कोशिश थी, क्योंकि एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया। आइए इस म्यूजिकल ब्रेक के लिए जाते हैं, वापस से आएंगे, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं ऐसे विषय पे जहां बुजुर्गों की बात आती है। आने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं। सुंदरी गोंडा वाला FM, रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि गोंडा की ना होकर के बल्कि कानपुर की हैं, दिव्या कौशिक जी। एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं इस शो में।
2: जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और चूंकि जाने से पहले हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि आज का जो विषय है यानी कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा मान, हमारे सम्मान, हमारे बुजुर्ग वृद्ध, जब नाम आता है ये आप जब सुनते हो तो आपको क्या ख्याल आता है?
2: अब जैसे हर इंसान से हम बोलेंगे बुजुर्ग क्या होता है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा 60 से ऊपर की उम्र वाले लोग बुजुर्ग की रेंज में आएंगे।
1: एग्जैक्टली।
2: तो वही बुजुर्गों को बोला गया है 60 वर्ष तथा उससे ऊपर की अवस्था बुजुर्ग अवस्था कहलाती है। उन्हें वरिष्ठ नागरिक भी कहते हैं।
1: जी, सीनियर सिटीजन। ओके, चूंकि ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बुजुर्ग की बात आती है तो लोगों को लगता है सफेद पूरे बाल,
2: जी
1: दाढ़ी है तो सफेद, मूंछ है तो सफेद और कमजोर हो गए हैं। बट अगर आपसे मैं जानने की कोशिश करूं, ये सवाल करूं कि आपका क्या नजरिया है कि एक सक्रिय रूप से अगर हम वृद्ध की बात करते हैं तो अगर कोई वृद्ध सक्रिय रूप से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एंड दूसरी बात ये कि ये जो अवधारणा है समाज में वो बुजुर्गों के लिए हमारा जो नजरिया है उसको किस तरह से बदल रही है?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। सक्रिय बुढ़ापा, सक्रिय बुढ़ापे का मतलब है कि हम उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जुड़े रहें। इसका मतलब है उन गतिविधियों में भाग लेना जो उद्देश्य और खुशी लाती है, चाहे वह शौक पूरा करना हो, स्वतंत्र सेवा करना हो या नए कौशल सीखना हो। जैसे कि हम सब जानते हैं बुजुर्गों के पास अनुभव, ज्ञान और समझदारी का भंडार होता है।
1: एग्जैक्टली, काफी ज्यादा।
2: वहीं वृद्ध वयस्क साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। वे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि नए व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ बदलाव किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आजकल इतना यह बदलाव हमारे बुजुर्ग के सम्मान और महत्व के तरीके को बदल रहा है। उन्हें आश्रितों के बजाय योगदानकर्ता के रूप में देख रहा है।
1: जी, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपने जैसे एक बात कही उसमें एक सेंटेंस आया जिसको मैं शायद अभी कई बार अपने शो में कोट कर चुका हूँ कि एक बात ये साफ है कि एज जस्ट अ नंबर। तो उम्र एक नंबर है, एक संख्या है, क्योंकि ये हम अपने शो में बोलते हैं। लेकिन आपने बताया कि लोग इस एज के बाद भी बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैंने अपने शो में एक बार अपने श्रोताओं से साझा भी किया था कि 52 साल की महिला जो अपना काम शुरू करी थी उसमें सफल नहीं हो पाई थी और उसके बाद उन्होंने तैराकी शुरू की, यानी 42 साल की एज में उन्होंने ज्वाइन किया और 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने 20 किलोमीटर तक सागर में तैराकी की। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात जो आती है कि एज जो है वो एक नंबर ही है जस्ट, उसका ये एक सटीक एग्जांपल है। आपने कोई अपने आसपास ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो इस तरह के एग्जांपल सेट कर रहे हैं?
2: सर, ऐसे एग्जांपल से तो मैं वाकिफ आसपास से नहीं हूँ, बट मैं एक एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिम जा रही है और अपने फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं बुजुर्गों की अगर देखें, आज भी इस टाइम पे भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं और अगर उनसे पूछें कि उनकी इस फिटनेस का क्या राज है, उनका यही होगा सुबह व्यायाम करो, 1 लीटर पानी पियो, सैर पर जाओ। तो मैंने ऐसे भी बुजुर्ग देखे हैं जो सुबह अभी भी 4 बजे उठते हैं और आजकल की युवा पीढ़ी सुबह, इवन मैं खुद भी नहीं 4 बजे उठ सकती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती। कोशिश करती हूँ कि 7 बजे उठ जाऊँ, 8 बजे उठ जाऊँ, बट नहीं हो पाता है। 4 बजे मैं तो सोच भी नहीं सकती कि 4 बजे उठना, फिर व्यायाम करना,
1: नामुमकिन सा लगता है।
2: मतलब उनसे एक इंस्पिरेशन आती है कि हाँ भाई, 4 बजे उठते हैं, उनके अभी तक इतना 80+ होने का क्या राज है, जो 80-90+ हैं।
1: एग्जैक्टली,
2: यही है उनका राज।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि आज भी ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि वो बुजुर्गियत में नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं उनकी बहुत पुरानी आदत होती है जो वृद्ध होने के बाद भी उनके साथ होती है।
2: जी
1: ऐसा ही है, बेशक सही बात है। लेकिन एक बात और है, अक्सर जब हम बात करते हैं जमाने की तो हम यही कहते हैं कि भाई ये पुराने ख्याल के, और ये नहीं समझेंगे कि हमारी जनरेशन में क्या चीजें हैं, किन चीजों को किस तरह से हम फेस करते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं इसी विषय पर और आपके घर में खुद आपके दादा भी हैं, तो किस तरह की चीज आप महसूस करती हैं? दादा की जब बात आती है आपके, तो कितना रिलेट कर पाती हैं उनसे कि वो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, या एक टाइम की बात को आपको लगता है कि हाँ शायद दादा जो कह रहे थे वो बेहतर था, कहीं ना कहीं उनका अनुभव था, क्या आपने महसूस किया?
2: जी देखिए, हम लोगों ने सुना है कि जनरेशन गैप होता है और लोग नहीं समझ पाएंगे, पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, हमारे परिवार वाले नहीं समझ पाएंगे हम लोगों को, बट ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमें जैसे बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। देखिए बुजुर्गों को क्या चाहिए, हम लोग अगर यही सोचते रहेंगे एज अ अडल्ट, अगर मैं भी यही सोचूंगी कि नहीं मेरे परिवार वाले नहीं समझ सकते मुझे, मैं सिर्फ अपने दोस्तों से बात करूंगी, उनसे ही डिस्कस करूंगी जितना भी हो सकता है, वहीं अगर हम अपने बाबा दादी से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक अनुभवी ज्ञानी लोग हैं, जो कि उन्होंने हम लोगों से पहले इतना कुछ सहा है, इतना अनुभव किया है कि वो आज भी अगर उनके साथ बैठ जाएं तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भी ऐसे कर सकते थे। बट आजकल की जनरेशन, मतलब मैं सब पर नहीं बोलूंगी, बट मोस्टली नहीं बैठना पसंद करते हैं।
1: जी बेशक, सही कहा आपने, और ये चीज तो हम खुद भी अपने आसपास देखते हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि उन चीजों पे डाउट करना एज वाइज, तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि एज वाइज हम देखते हैं कि हमारे भी फेजेस रहे हैं, बच्चे रहे हैं, फिर थोड़ा सा बड़े हुए हैं, टीन एज में आए हैं, फिर यंग हो गए हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अधेड़ हो जाएंगे, फिर बुजुर्गियत की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो फेजेस होते हैं लाइफ के, और उन्होंने भी अपने फेजेस देखे हैं। तो जैसे कहते हैं टीन एज में जब हम होते हैं तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और हमको लगता है सिर्फ मैं ही सही हूँ और मैं वाली फीलिंग आती है। बट जैसे जैसे यंग होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो फिर कहते हैं ना कि दाल भात सबका फिर दाम पता चलने लगता है। एंड ये पता चलता है कि मेरे माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से मुझे पाल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ गैप्स सच में होते हैं जहाँ पे जमाना बदलने के साथ कुछ चीजें बदलती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंगली ही चीजें चलने वाली है। बट एक्चुअल में मुझे लगता है कि हर चीज को ऐसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे कहें कि हम फोन यूज ही नहीं करेंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, ये बहुत जरूरी है इसको ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग अपनी एज और उसके फेज वाइज तो सही कहते हैं, लेकिन कुछ चीजों में सच में बदलाव आता है और शायद ये थोड़ा समझा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो समटाइम्स हमने देखा है कि घर पे जो ऐसे लोग होते हैं जो यंग होते हैं, वो अक्सर उनकी बहस हो जाया करती है, और या कई बार मैंने देखा है कि थोड़ा सा मिसबिहेव करा जाता है बुजुर्गों के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स को भी समझना होगा उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बुजुर्ग हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है, तो चेंज हम इजीली हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते हैं।
2: जी देखिए, वृद्धावस्था, अब इसमें काफी फैक्टर्स आ जाएंगे, किसी के मतलब किसी का जो स्पाउस है, मतलब जैसे हस्बैंड है तो उनकी वाइफ नहीं रही है या उनके बच्चे नहीं रहे हैं, तो ये फैक्टर्स भी आते हैं कि वो कितने अकेले हैं। वृद्धावस्था में लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी समस्या है अकेलापन। कई वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं या अपने परिवार से अलग धलग महसूस करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि विवाद हो जाते हैं, नहीं समझते हैं, चिल्ला देते हैं, वही सारी चीजें। अब वो अकेले हैं, किसी की वाइफ नहीं उनके साथ या किसी का हस्बैंड नहीं उनके साथ, उनको नहीं परिवार में मन लग रहा है, उनको लग रहा है बस अब मेरा हो गया, जितना था मैंने जितना जीना था मैंने जी लिया, परिवार सेटल है, फैमिली सेटल है, अब मुझे नहीं किसी से मतलब है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि फैमिली वाले ही उनको ऐसा महसूस कराते हैं, उनके साथ नहीं बैठेंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, मुझे इस वे में बोलना चाहिए कि परिवार वाले उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ कहीं भी पार्क में जाएं, टहलें, सुबह एक घंटा उनके साथ बैठ के चाय ही पी लें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है कि उन वृद्ध जनों को एक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए।
1: एग्जैक्टली मतलब उनको गुड फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए, इज्जत देने के लिए। एग्जैक्टली ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात ये भी है कि अक्सर हम स्टोरी सुनते हैं बुजुर्गों से, रूढ़िवादिता को तोड़ने की बातें सुनते हैं, नया शौक पूरा करने की बात होती है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है, बहुत सारी बातें इस तरह करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस चीज से, या आपकी क्या इनसाइट है कि जो सीनियर सिटीजन है वो बुढ़ापे में क्या फिर से कुछ नया परिभाषित कर रहे हैं?
2: जी हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे कि 80 में एक महिला योग प्रशिक्षण बन गई, जिससे पता चला कि लचीलापन और ताकत किसी भी उम्र में संभव है। 70 में एक और वरिष्ठ व्यक्ति ने मैराथन दौड़ लगाई और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वृद्ध वयस्कों द्वारा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने, खाना पकाने और युक्तियां, जीवन सलाह या यहाँ तक कि फैशन के विचार साझा करने का चलन भी बढ़ रहा है। जैसे कि आजकल जो कुछ लोग होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, एक देखते हैं वो एक दादी हैं, बहुत बुड्ढी हैं, वो नए नए रेसिपीज प्रिपेयर करके शेयर करती है इंस्टा पे। वो बहुत ही मतलब इवन मैं भी देखती हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ और सीखती भी हूँ, बनाती भी हूँ कभी कभार संडे में। मतलब एज एक नंबर ही है, उनको देख के ऐसा ही लगता है। और वो इतने बढ़िया से मुखड़े भी चूज करती हैं कि आलू बना रही हैं, चलो चालू हो जाओ, मतलब ऐसे काफी बहुत एक्टिव है वो, उनको देखना चाहिए।
1: एग्जैक्टली

0: मुझे डाउट था कि लोग घर से निकाल देते हैं उनके बच्चे तो वो लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, बट ये डाउट मेरा अब जाके खत्म हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो भी चीज है, बट ये भी है कि वो अपने आप भी जाना चाहते हैं। उन्हें अब फैमिली से मोह माया नहीं रही, उन्हें अब अपना अकेला जीवन जीना है, अपने लोगों में जीवन जीना है, क्योंकि उनकी फैमिली वालों के पास टाइम नहीं है। अपनी फैमिली से वो दुखी नहीं है, बट वो बाहर जाके रहना चाहते हैं अकेले।
1: मतलब शायद ये मेरे अब तक के डिस्कशन में पहली बार ऐसी चीज निकल के आई है। मैं खुद हैरान हूँ आपके इस जवाब से, कि अभी तक मुझे भी यही आज तक और अभी इसी वक्त तक लग रहा था कि हाँ शायद ओल्ड एज होम वो लोग जाते हैं जिनको घर में परिवार वाले रखना नहीं चाहते, बट आज इसके बिल्कुल उलट आपने बताया कि ऐसे भी बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनको उनका परिवार निकालता नहीं है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरे परिवार के पास वक्त नहीं और मेरे जैसे बुजुर्ग वहाँ पे मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, या कह सकते हैं कि उनको एक मोहल्ला मिल जाएगा, एक नया घर मिल जाएगा जहाँ उनके ही जैसे लोग होंगे और उनको वो टाइम देंगे, स्पेंड करेंगे और एक दूसरे को भावनाओं को व्यक्त करने और सुनने का भी मौका मिलेगा।
0: जी बिल्कुल, वो लोग ऐसे सर्कल को ढूंढते हैं जो जिनके साथ वो बैठ सके, शाम की चाय पी सके, सुख दुख बांट सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैमिली से खुश नहीं है या उनकी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं। मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी अपनी फैमिली की बुराई करी हो मेरे से, बस इन्होंने ये बोला कि वो लोग अपने में खुश है, हम अपने में खुश है।
1: एग्जैक्टली, तो ये बात तो सच है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न भी यही है कि कल को हमको ही बुजुर्ग होना है, तो वक्त की जहाँ तक बात आती है तो आज अगर हम वक्त नहीं निकाल पा रहे तो शायद फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी से कि वो हमारे लिए इतना वक्त निकालेगी। एक टर्म होता है माइंडफुलनेस, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी धर्म के मानने वाले हों, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं धर्म को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर के, तो वो बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है, जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आध्यात्मिकता हो या माइंडफुलनेस हो, कई सारे बुजुर्ग जो हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो भावनात्मक स्वास्थ्य देखा जाए या उद्देश्य की भावना है उसको कैसे प्रभावित करते हैं ये?
0: जी देखिए, आध्यात्मिकता और ध्यान वृद्धों के लिए शक्तिशाली उपकरण है। कई वरिष्ठ नागरिक प्रार्थना, ध्यान या योग जैसी आध्यात्मिक प्रार्थनाओं में आराम और शक्ति पाते हैं। जैसे कि मैं अपने ही बाबा का एग्जाम्पल देती हूँ, वो नहाने के बाद आधा घंटा रामायण पढ़ेंगे, शाम को 4 से लेकर 4:30 तक गीता पढ़ेंगे। पहले मुझे इतना नहीं था कि मतलब ये क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं इस चीज में इन्वॉल्व हुई, जब मैंने जानना चाहा, तब मुझे पता चला कि इसे पढ़ने के बाद उनको बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है, शक्ति पाते हैं। ये अभ्यास उन्हें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के बारे में तनाव या चिंता को कम करने में मदद करते हैं। बाबा को गुस्सा आता था, मतलब मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रही हूँ, पहले मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आता था। ये उनका कहना है कि गीता और रामायण पढ़ने के बाद उन्होंने अपने में कंट्रोल पाना सीखा है। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मतलब जो लोग मंदिर में, और आप देखेंगे मंदिर में या घर में भी रामायण या सत्यनारायण की कथा होती है, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन मिलेगा?
1: बुजुर्ग।
0: एग्जैक्टली, क्यों मिलेगा, उसका रीजन मुझे अब पता चला।
1: मतलब जब आपने काम किया तो उस चीज को रियलाइज किया कि आखिर बुजुर्ग जो है उनको आध्यात्मिक कोई कार्य करना हो तो आखिर क्यों उनका इतना इंटरेस्ट होता है या उनको क्यों आखिर सुकून मिलता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं जनरेशन गैप की बात करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप यंग हैं, आपके बाबा बुजुर्ग हैं, और सच में कई सालों का बीच में अंतर है और जमाने में बहुत बदलाव है, इवन सोच में भी हो जाते हैं, किस तरह से इस गैप को आप मेंटेन करते हैं, किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं?
0: देखिए, वरिष्ठों के लिए ये रिश्ते अकेलेपन को कम करते हैं। हम भी हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, बाबा है, अगर हम लोग अपने अपने चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे को ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। वहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ यंग, हम लोग उनके साथ बैठते हैं, उनको अकेलापन मे बी 100 में से 65% उनको अकेलापन नहीं महसूस करने के लिए पूरा ट्राई करते हैं, बट जो थोड़ा बहुत होता है वो हम लोग उस कमी को पूरी नहीं कर सकते। एक स्पाउस की कमी हम लोग कभी पूरी नहीं कर सकते।
1: Exactly.
0: जो मेरे बाबा मेरी दादी के साथ शेयर कर सकते थे, वो दोनों शाम को बैठ जाते थे, बातें करते थे इधर की उधर की, हम लोग उतना नहीं कर सकते, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ उनकी बातें सुने, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ऐसे होता था। तो एक जनरेशन गैप देखिए हम लोगों के हाथ में है, एज अ फैमिली मेंबर हम ही लोग कर सकते हैं कि उनके साथ बैठें और बात करें। जनरेशन गैप रहेगा, नो डाउट रहेगा वो जनरेशन गैप, बट उसको पॉइंट नहीं करना है कि आपके टाइम पे हुआ करता था बट हमारे टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको बहुत ही लाइटली लेना है और उनको, जैसे कि उदाहरण के लिए

0: बताऊंगी। एक दादा अपने पोते को साइकिल ठीक कराना सिखाते हैं। इससे ना केवल उनका रिश्ता मजबूत होता है बल्कि वरिष्ठ व्यक्ति को उपयोगी और सराहनीय महसूस होता है। युवा लोगों को भी बहुत लाभ होते हैं, वे वरिष्ठ जनों से ज्ञान और जीवन के सबक सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो एक बात हो गई। एक बात अगर और हम करें जो हमारे जहन में इस वक्त आ रही है कि अक्सर देखा जाता है बुजुर्गों को अकेलापन फील होता है, उनको उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सामना करना होता है, इसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो इन चीजों पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं?
0: देखिए, वृद्धों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी समस्या है अकेलापन। कई वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं या अपने परिवार से अलग धलग महसूस करते हैं। इससे उदासी और अवसाद भी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिप्रेशन या लोनीनेस।
1: Exactly.
0: एक और चुनौती स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, या याददाश्त कमजोर हो जाती है। बुजुर्ग लोग हैं, कहीं कुछ रख के भूल गए, नॉर्मल है, उसमें मतलब इतना कोई वो होने की बात नहीं है। वहीं मैं बुजुर्गों से भी यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एज के साथ होता रहता है। अब आप कभी समझिए सिलेंडर उठा सकते थे, आज के टाइम पे नहीं उठा सकते भाई, अपने परिवार वालों से उठाएं, आपने जितना उठाना तो उठा लिया, ये समझिए। ये नहीं समझिए कि मैं अब ये नहीं कर सकता, आपने अपने टाइम पे बहुत किया, अब आपके बेटे और उनके बेटे के करने का टाइम है, तो उनको करवाएं, उनको ऑर्डर दें। और इसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें अधिक सहायक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। अकेलेपन के लिए सामुदायिक केंद्र मदद कर सकते हैं, जैसे वरिष्ठ केंद्र, शौक समूह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां वरिष्ठ नागरिक दूसरों से जुड़ सकते हैं। आजकल बहुत एडवांस हो गया है सब कुछ, पोता दादा को बता देता है, फेसबुक पर आईडी बना देते हैं। तो उससे फेसबुक पर आईडी बनाने से क्या मतलब है कि वो जो चीजें हैं आजकल के दौर में चल रही हैं उससे वो अपडेट रहते हैं। नो डाउट न्यूज चैनल्स भी बहुत मेजर रोल दे रहे हैं, बट ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिससे लोग दूर दराज से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई किसी का बेटा बाहर है तो उससे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ये सब भी, इससे वातावरण मतलब बहुत लाइट हो जाता है उन लोगों के लिए।
1: तो ये बात तो बिल्कुल सही कहा है कि अगर इन चीजों को प्रैक्टिस में लाया जाएगा तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्सर मैंने जैसे अपने घर में भी देखा है कि फादर की भी एज हमारी अच्छी खासी हो गई है और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस अभी नहीं देख पा रहे हैं। क्या ये एक प्रॉब्लम होती है, लोगों में समस्या आती है कि वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपना बुढ़ापा, इसको कैसे आप देखते हैं?
0: जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जहाँ वो एक्सेप्ट कर लेंगे वो मन में शांति पाएंगे। एक्सेप्ट ना कर पाना बहुत नॉर्मल है। अब कोई बुजुर्ग है, अपने टाइम पे इतने किलोमीटर चल देते थे, आज भी एग्जांपल देते हैं, मैं तो अपने गांव से इतना चल के जाया करता था पढ़ने के लिए, तब तो साइकिल और बाइक्स भी नहीं हुआ करती थी।
1: Exactly.
0: ये बहुत कॉमन फ्रेज है जो हम लोग सुनते आते हैं। वही
1: पा रहे अच्छे से, क्योंकि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट बुजुर्गों के साथ भी है और हम जेन जीस को भी देख रहे हैं जो कि इनसे खुद की पहले की हम पीढ़ी हैं, तो बीच में एक कनेक्टर का काम हम कर रहे हैं। और ये बात जिस दिन शायद हमने समझ लिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चीजों को हम अपनी अगली पीढ़ी जेन जीस में डिलीवर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपसे इस अहम मुद्दे पर आपकी राय जान करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने एप्लीकेशन पर। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाजत क्योंकि चलने का वक्त हो गया है। सुनते रहिए गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

जी हाँ श्रोताओं, वक्त हो गया है आपके शो का जिसका नाम है गुंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला। फिलहाल आज भी बीना मैम आपके बीच में नहीं मौजूद हैं और आपकी होस्ट एंड दोस्त है आरजे आकांक्षा। फिलहाल आज का जो दिन है वो आप सभी को अच्छे से पता है, दिन है सोमवार। सोमवार को होता है आपका कॉल इन प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले आज के दिन की कुछ खास बातें हैं जो आपसे साझा करेंगे, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जलेबी वाला गाना, भाई शाम हो गई है, शाम को चाय पानी का वक्त होता है, तो आप अपनी जलेबी खाइए या कुछ मीठा खाइए, चाय का लुत्फ उठाइए, तब तक हम इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
9: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
8: सच में? क्या खास है वहाँ?
9: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
8: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
9: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
8: और फोटोग्राफी वगैरह?
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
8: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
10: श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करते हैं, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गैनेसली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। और वक्त हो चला है भाई स्टूडियो क्लॉक से 6:16। शो है आपका गोंडा मैसेज मसाला। फिलहाल आज की अगर मसालों की बात करें तो भाई, गोंडा में जो हाल फिलहाल में 2 महीने से कहीं ना कहीं कार्यरत था संजय सेतु पुल, वो अभी चालू हो गया, लेकिन उस पर बड़ी गाड़ियां नहीं आ जा सकती हैं। अभी ट्रायल के रूप में छोटी छोटी गाड़ियों का आवागमन चालू है। इससे पहले आप पीपा पुल से गुजर रहे थे, और जो जो पीपा पुल पे गुजरे हैं उन्होंने उसका आनंद भी उठाया होगा, धीरे धीरे मटकती हुई कार। हाँ जी, और आप भी उसमें कहीं ना कहीं डोल रहे होंगे। तो ऐसा आवागमन हुआ, काफी ज्यादा समस्या भी देखने को मिली, क्योंकि जब रास्ता थोड़ा लंबा हुआ तो इस वजह से हमारी कहीं ना कहीं उसमें जो हम किराया भाड़ा देते थे वो भी बढ़ गया और वक्त का भी कहीं ना कहीं जाया होना देखा गया। तो अभी क्या है, उससे थोड़ी सी आपको राहत मिल गई है। अभी पीपा पुल से हम फिर से संजय सेतु पुल पर आ चुके हैं और बतौर ट्रायल ही अभी शुरुआत की गई है, जिसमें छोटी गाड़ियों का ही आवागमन अभी शुरुआती तौर पे रखा गया है। देखते हैं कितने दिनों में बड़ी गाड़ियां भी उस पे आना जाना शुरू होगी। जैसे ही हमको कोई सूचना मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल लेकिन आज की जो सूचना है यानी कि है 8 जून, और 8 जून को क्या क्या होता है ये आपसे हम बताना चाहेंगे। 8 जून को खास तौर पर मनाया जाता है विश्व स्तर पर विश्व महासागर दिवस। हाँ जी, और इसके अलावा दो और दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि विश्व महासागर दिवस के रूप में आज के दिन को क्यों मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जीवन को बनाए रखने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए ऐसे दिन को मनाया जाता है, ऐसी मान्यता दी गई है। और इसके अलावा अगर बात तो दो और विशेष दिन है जिसमें भाई एक सेगमेंट आता है दोस्ती का और एक सेगमेंट है बुद्धि का। यानी कि आज के दिन जो मनाया जाता है, जिसकी जागरूकता फैलाने की अगर बात करें तो जागरूकता के लेवल पर अगर हम देखते हैं तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और आप देख भी रहे हैं कि आजकल का जो दौर है, वैसे मैं थोड़ा सा सीरियस वे में पहले बात करती हूं आपसे, इसके एक सीरियस पक्ष पर बात करते हैं फिर आते थोड़े से मजाकिया वे में। तो सीरियस पक्ष इसका यह है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी वाला जीवन हम लोग का हो गया, हम लोग इतना व्यस्तता में जूझे पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं जूझने की वजह से जो हम अपने आप को थोड़ा सा स्पेस नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा गैप नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा ठहराव हमारे अंदर गुम होता जो नज़र आ रहा है, उसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ऐसी सारी स्थितियाँ आती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेन के ट्यूमर का कारण बनती हैं। तो इन सबसे निजात पाने के लिए आज के दिन को विशेष तौर पर मनाया जाता है और मनाया इसलिए भी जाता है ताकि इससे जुड़ी हुई जागरूकता फैलाई जा सके। तो भाई इस बारे में भी हम थोड़ा सा डीप में जाके बात करेंगे। अब बातें हैं इसके थोड़े से कॉमेडी वाले पक्ष में। भाई आज ही के दिन यानी कि 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों से दोबारा जुड़ा वाला दिन यानी कि नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। हाँ जी, आज वही दिन है, नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। और जब बात करते हैं दिमाग की और दोस्तों की तो दोनों ही एक दूसरे से इतर होते हैं, क्योंकि दोस्ती में तो हम पागलपन की हद क्रॉस कर जाते हैं और शायद वही दोस्ती होती है जो जीवन भर टिकती है, जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, बस खाली पंगे शंगे दंगे होते हैं और लास्ट में पूरा दिन भले हम लड़ाई करेंगे, लास्ट में एक साथ में बैठ के कप में चाय पीते हुए मिलेंगे और यही होती है दोस्ती की कहीं ना कहीं रंगीनियत। फिलहाल आज के जो टॉपिक होंगे, आज का जो कॉल इन सेगमेंट होगा, आज का जो कॉल इन प्रोग्राम होगा आपका गुंडा मैसेज मसाला में, वो होगा दोस्ती और दिमाग के ऊपर। फिलहाल देखते हैं कि आप अपनी ओर से क्या लेके आते हैं और आपसे आपकी भी कुछ जानकारियां चाहेंगे, कुछ हमारे सवाल होंगे। अगर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लाएंगे तो हम आपसे भाई सवाल करेंगे और सवाल का जवाब आप क्या देंगे, किस लहजे में देंगे, थोड़ा सीरियस वाला देंगे, थोड़ा हंसी मजाक वाला देंगे या फिर नाराजगी वाला देंगे, देखते हैं भाई आज के मसाला वाले शो में यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में आप कौन सा मसाला अपना डालते हैं। फिलहाल तब तक के लिए हम लेते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक और चलते हैं उस और जो कि एक प्यारे से नगमे से सजाया गया है, आवाज से सजाया इन्हें सुनिधि चौहान जी ने। आप भी इसको एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करते हैं, फिर आएंगे दो प्यारी प्यारी जानकारी आपसे साझा करेंगे और फिर आपका कॉल इन वाला शो स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले कोई भी श्रोता कॉल करना चाहे तो नंबर वही है, आपकी स्टूडियो वाला नंबर है 6393316429। और अगर आपकी भी लाइफ में आपके दोस्तों ने 4 चांद 40 चांद 4000 चांद 4 करोड़ चांद या कुछ भी लगाया है, मतलब आपकी खुशियों में इजाफा किया है, तो बेशक से आप फोन मिलाएं और हम तो चाहेंगे कि उनके नाम के साथ में डेडिकेशन लेके आएं। वैसे आज हमारी मोहिनी जी ने हमको एक सॉन्ग का डेडिकेशन किया था दोस्ती के ऊपर, तो मैं उनसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगी अगर वो उन तक मेरी आवाज़ जा रही है, और फिर मैं अपनी प्लेलिस्ट का, मैंने गाना बोला था कि आज नहीं कल बजवा लीजिएगा, तो मैं आज ही बजाना चाहूंगी क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और मैंने कभी किसी को सॉन्ग डेडिकेट नहीं किया सिवा अपने दोस्त के। फिलहाल चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और आने के बाद आपसे कुछ जानकारियां साझा करेंगे, फिर आएंगे आपके कॉल इन सेगमेंट की ओर। बने रहिए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो 89.6 FM के साथ।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: हाँ जी, एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में। और आज मसालों के तड़कों के साथ में हाजिर हूँ मैं, यानी आपके होस्ट एंड दोस्त आर्जी आकांक्षा। और वक्त की अगर बात करें तो भाई हो गए हैं 6:29 बाय योर स्टूडियो क्लॉक, और घड़ी की सुइयां बता रही कि आप लोग कहीं ना कहीं नाश्ते पानी में व्यस्त हैं। फिलहाल मैंने आपको अफगान जलेबी खिलाई, उसके बाद में हमने क्रेजी पने की ओर आगे बढ़े थे। थोड़ी सी भाई गर्मी हो रही है, गर्मी में इंसान क्रेजी हो जाता है, और क्रेजीनेस तब भी आती है जब हम अपने दोस्ती की बात करते हैं। दोस्त यानी के पागलपन, अगर पागलपन नहीं है तो फिर वो दोस्ती टिक नहीं सकती है, कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी, धूमिल से हो जाएगी। फिलहाल आज का जो दिन है वो है 8 जून, और 8 जून को मनाए जाते हैं 3 खास दिन, यानी के एक मैंने आपसे साझा किया जो कि था विश्व महासागर दिवस, दूसरा है हमारा नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, और तीसरा है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले हम लेंगे आज के टॉपिक में राष्ट्रीय सबसे अच्छा दोस्त यानी कि नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे के बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो ये दिन हर साल 8 जून को मनाया जाता है, जो कि आज का दिन है। ये एक अनौपचारिक अवकाश है जो उन सार्थक दोस्ती का जश्न मनाते हैं या मनाने के लिए समर्पित हैं जो समय, क्षेत्रों और जीवन में होने वाले बदलाव से परे हैं। हाँ जी, इन सभी घटनाओं से जो परे है वही तो दोस्ती है भाई। जहाँ पर ये सारे मतलब और मतलब की चीज़ें होती है, वहां पर फिर दोस्ती टिक ही नहीं पाती और वो दोस्ती कहलाती भी नहीं है, वो बस खाली मतलब के रिश्ते होते हैं। आज का दिन कैसे मनाना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। चाहे आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो या आपके बिल्कुल पास रहते हों, या फिर वो देश से दूसरे कोने में कहीं रहते हों, या फिर इस देश के बाहर ही रहते हों, इस दिन को मनाने के लिए कुछ खास उपाय हैं उन सभी के लिए। चलिए बताते हैं क्या है वो। ओपन वैन पत्र उनके लिए लिखें। मतलब कि होता क्या है कि कई दिन हो जाते हैं ना कि हम अपनी मनोदशाओं को उनसे साझा नहीं कर पाते व्यस्तता के चलते। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि आजकल का दौर इतना ज़्यादा हम लोगों को व्यस्तता की सीमा के पार लेके जा चुका है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। महंगाई की मार के तले हम कहीं ना कहीं डबल जॉब्स करने लगे हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हम पार्ट टाइम जॉब फिर से कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, और अलग अलग मनोदशाओं के लिए छोटे दिल को छूने वाले पत्र लिखें। जब आपको उनकी याद आए तब उसे खोलें, जब आप निराशा से घिर जाएं तब खोलें, ऐसा कुछ लिखें और उनके लिए स्पेशली भेजें ताकि वो आपको तब याद करें जब आप वहाँ पे ना भी मौजूद हो और कोई भी मतलब आपकी दोस्ती में रुकावट ना आए। डिजिटल स्क्रैप बुक भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं और गिफ्ट फील्स भी उसमें दे सकते हैं, यानी कि आप जब गिफ्ट कुछ लिख रहे हों या दे रहे हों तो उसमें अपनी पसंदीदा यादें जब आपने उनके साथ में कभी कहीं बिताई हो वो वाले पल भी ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा मूवी मैराथन, यानी कि अपने रिश्ते को सम्मान देने के लिए एक वॉच पार्टी या फिर मूवी नाइट का आयोजन भी आप कर सकते हैं, मतलब दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। और क्या, इतनी मतलब टफ इंग्लिश नहीं थी, मेरे को मालूम है आपको आता है। और इसके अलावा आज के दिन के बारे में अगर कुछ रोचक बोलें तो हालांकि इसकी सटीक स्थापना थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है और सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय डिजिटल उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। आज काफ़ी सारे लोग ने अपने अपने दोस्तों को विश भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप के पेज पे क्या नाम है वो स्टेटस डाला होगा और स्टोरी लगाई होगी अपने दोस्तों की, तो ऐसे कहीं ना कहीं आज के दिन को मनाया जाता है। वैसे अनोखी परंपरा है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। और दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कई देशों में 14 फरवरी को जो प्रेम और मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है वो आज के दिन कहीं ना कहीं अमेरिका में देखने को मिलता है। फिलहाल चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और आपसे हम जानकारी अपनी तरफ से साझा करना चाहेंगे, यानी कि पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने का एक बेहतरीन कदम है आज का, और शुरुआत करने के लिए उन्हें सीधा संदेश यानी कि टेक्स्ट भेज सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं जिनसे आपने बहुत समय से बात नहीं की है और आपके वो फ्रेंड्स जोन में आते, हो सकता है बहुत खास कोई फ्रेंड हो। और कहते हैं ना कि जो मित्र आपका सबसे ज़्यादा खास होता है उसके साथ में यादें तो ढेर सारी होती हैं लेकिन फोटोज़ इमेजेस ये सब बहुत कम होते हैं। इसके अलावा उनसे पुरानी यादें साझा करें और उनका हाल चाल पूछें, फिर एक छोटी मुलाकात या कॉफ़ी डेट का प्लान भी बना सकते हैं, हो सकता है आपसे आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि ले चले हम आपको एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें साझा कर लेते हैं। भाई आज है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे और अपने दोस्तों को, वो जो बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं हैं, जिन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की है, उनके लिए कुछ आसान से टिप्स हैं, चलिए मेरी तरफ से ले लीजिए। तो रिश्ता फिर से मजबूत करने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जिनमें से है आसान शुरुआत करें और टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, जैसे मैंने आज बताया भी कि काफ़ी लोगों ने स्टेटस डाला है, काफी लोगों ने स्टोरी डाली है, वहीं से शुरुआत कर लीजिए। हो सकता है कि उनकी नजर वहां पड़े और एक पल को उनका दिल थम जाए, उनकी धड़कन रुक जाए और बोले कि बस इस पे रिप्लाई कर ही देते हैं, देखो इसको मेरी याद आई है, मैं इसके लिए इतना खास हूँ कि आज के दिन इसने मुझे याद किया। तो हो सकता है उधर से ही मतलब शुरुआत हो जाए, आपको करना ही ना पड़े, या फिर आप कह सकते हैं बस नमस्ते और कैसे हो, ये भी पूछ सकते हैं, बहुत दिन हो गया यार तुमसे बात नहीं हुई, ऐसा संदेश भी आप लिख के भेज सकते हैं। यादें ताज़ा करें, मतलब किसी पुरानी तस्वीर या किसी याद को साझा कर सकते हैं, किसी कॉलेज किस्से पर भी बात कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं कॉल मिला करके। दबाव ना डालें कि बातचीत में मिलने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे, ऐसा भी मत करिएगा। उनकी सुविधा के अनुसार कैजुअल प्लान बनाएं जो उन्हें अच्छा लगे सामने वाले को, और दोस्त तो दोस्त होते हैं यार, एक दफ़ा अगर आवाज़ देंगे आप तो दौड़ के आते हैं, कई दफ़ा तो ऐसा होता है बिना बुलाए भी आ जाते हैं और फिर आफत लगती है कि भाई कुछ कांड वांड तो करके नहीं आए हो, मतलब ठीक ठाक है ना सब कुछ, ऐसा आप चौंक जाते हैं। भाई आपको पता होता है आपके दोस्त कहते हैं, दोस्त वही होते हैं जो कांडी होते हैं, अदरवाइज कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा सुनना भी ज़रूरी है, केवल अपनी ही बातें उनसे ना बताएं, उनकी भी बातों पर गौर फरमाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यकीन मानिए अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं तो आपसे बेस्ट कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता सामने वाले का। दोस्त क्या करते हैं, अपनी बातें साझा करने के लिए तो एक दोस्त को पालते हैं, बनाते हैं, रखते हैं, सीधी सी बात है भाई, नो इसमें लॉजिक लगाना ही नहीं, एक सीधा साधा फंडा है, जो सुनेगा वो हमारा दोस्त बनेगा और उसके बाद में धूम धड़ाका तो मचाएंगे ही दोस्तों के साथ में। इसके अलावा क्या उनसे ये भी सवाल कर सकते हो कि क्या आप मुझसे बात कर सकते हो, ये दोस्त स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, कोई पुराना पड़ोसी भी हो सकता है यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला गया हो या गई हो, आपकी उनसे कितनी समय बात नहीं हुई है, ये भी गौर फरमाने की बात है। तो ऐसी चीजों पर थोड़ा सा गौर करिए और आज है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, इसको बिल्कुल से मनाइए। फिलहाल हम चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कुछ लिसनर्स जुड़ गए हैं, जैसे कि हमारे राजेश कुमार जी जुड़ गए हैं अंबेडकर चौराहे से, आपका मोस्ट वेलकम है। और ये मिस्टर सैड है हमारे, उम्मीद है कि आप भी ये मुस्कुराने लगे हों क्योंकि इनकी इमोजी बता रही है। भाई दोस्ती के नाम पे देखिए, कुछ आए हो या ना आए हो, मैसेज बॉक्स में एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई इमोजी आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राजेश कुमार जी। इसके अलावा अनिल शास्त्री जी जो हमें गोरखपुर से सुनते हैं, गुड इवनिंग हमको बोला है इन्होंने, गुड इवनिंग आपको भी सर, आपकी संध्या बहुत ज़्यादा शुभ हो। और सविता दुबे जी भाई हमारी खास मित्राणियों में से एक है, आपको भी शुभ संध्या सविता जी। फिलहाल अभी हम लेंगे एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे क्योंकि आज है कहीं ना कहीं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, तो उस पर भी जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, तो इस पर थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे। देन आज का कॉल इन सेगमेंट एंजॉय करिए आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में, कुछ मसाले होंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ आपकी यादें होंगी, देखते हैं कौन क्या लाता है अपने पिटारे से। और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड को कोई सॉन्ग भी डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक शर्त होगी हमारी, वो गाना आपको गा के सुनाना होगा। भाई ऐसा कोई जबरदस्ती वाला रूल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो गा के भी सुना सकते हैं। फिलहाल नंबर वही है 6393316429, यानी कि 6393316429। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर आते हैं आप लोगों से, और सारी बातें साझा करनी है। भाई आज 8 जून, अरे मेरे को एक बात और याद है, 8 जून की रोटी कौन खाता है, ये भी सवाल है, मैं पूछूंगी जरूर। कमल नयन जी आ गए हमारे बीच में, और मैं तो मुझे लगता है कमल नयन जी से बेस्ट कोई इस सवाल का उत्तर ही नहीं दे सकता है कि 8 जून की रोटी कौन खाता है। भाई मैं तो 2 जून ही खा लूं बड़ी बात हो जाती है, आज 8 जून है तो क्या आप लोगों ने 8 जून की रोटी खाई या नहीं खाई, ये भी एक सवाल है पूछने लायक, बड़े बढ़िया लगा मुझे। चलिए फिलहाल चलते हैं शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और जस्ट यू गए यू आए और आपसे ढेर सारी जानकारी भी साझा करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कॉल इन वाला सेगमेंट। जी हां, दिन है मंगलवार नहीं सोमवार, और सोमवार में हम और आप होते हैं आमने सामने, यानी आपकी बातें और हम सुनने के लिए आपके बेस्ट वाले फ्रेंड। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे कांक्षा, और शो वही वाला है, गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला, लेकिन है आपकी उससे अंदर आरजे कांक्षा। और हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास उपलक्षों की, जो कि आज के दिन पर निर्धारित है। और ये वक्त है मसालों का, तड़का लगाने का। कहीं तो भाई चाय बन रही है, कहीं सब्जियाँ बन रही हैं, कहीं नाश्ते बनने को तैयार हैं, कहीं तो भाई गर्मी होते हुए भी कुछ पकौड़ियाँ तल रही हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का कॉम्बिनेशन हो कोल्ड ड्रिंक के साथ में पकौड़ी खाने का। कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं उस ओर जो मुझे आपसे साझा करना है। और वक्त की बात करें तो 6:46 हो गया है, और 7 से मैं लूँगी आप सभी के कॉल्स को। हाँ जी, क्योंकि आज है मंडे वाला दिन, और मंडे वाला दिन होता है आपके गोंडा मैसेज मसाला में आपके द्वारा लगाए जाने वाले मसालों के तड़कों का। और भाई, ये मैं क्या देख, हमारे पास में अनिल बनर्जी की भाई कॉल भी आ गई है, चलिए ले ही लेते हैं, फिर बात करेंगे बाकी चीजों पर। हेलो हेलो
7: हेलो
8: हेलो
6: हाँ जी, नमस्कार
8: नमस्कार नमस्कार, मैं कैसी हूँ?
6: जी बहुत ज्यादा खुश हैं। वैसे हम पता नहीं क्यों मुस्कुराते रहते हैं, हमारी एक बीमारी है, हमारे चेहरे से स्माइल ही नहीं जाती है।
8: बीमारी नहीं, बहुत अच्छी थी।
6: अरे आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं सर, सबकी दिक्कत कुछ और होती है, हमारी इकलौती दिक्कत है कि हम कभी उदास नहीं हो पाते, हम आज तक दुख को एंजॉय नहीं कर पाए। और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे दुख को एक्सपीरियंस करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक हमसे हुआ ही नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन।
8: मैंने आपका ये बहुत अच्छी विचारधारा है और अच्छी सोच है
6: जी।
8: दूसरा ये है कि जीवन में
6: जी,
8: आदमी को दुख से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा साथ रहता है।
6: ओके, दुख से क्या करनी, दोस्ती। अच्छा, दोस्ती दुख से करनी चाहिए।
8: जी हाँ, जो जीवन में आपके साथ रहे, हमेशा साथ रहे, वही आपका दोस्त होता है ना।
6: क्या बात है भाई, हमको एक गाना भी याद आ गया इसी बात पे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्यों सर?
8: बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि सुख तो क्षणिक होता है।
6: जी जी जी,
8: जो क्षण में आता है फिर चला जाता है, तो उसकी क्या वैल्यू, उसकी क्या लिया है।
6: लेकिन हमें लगता है ना सर, दो आप अपनी जगह
8: बिल्कुल, आपका थिंग भी यही था दोस्ती का।
6: आज तो दोस्ती पे ही बात होनी है और दोस्ती पे ही बात करेंगे, लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए आपने हमने भुलवा दिया कोई बात नहीं याद करने की कोशिश करते हैं हम। हाँ तो बात ये थी कि हम क्या होता है, हाँ दोस्ती हमारी जो है वो हमें गम से करनी चाहिए, आपने ऐसा कहा, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है, हाँ आपने ये बोला कि जो खुशी होती है वो क्षणिक मात्र होती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो दुख है और ये जो सुख है, दोनों के ही जनक कहीं ना कहीं हम हैं, हम खुद हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
6: कारण ये है कि जैसे कोई मुद्दा बन रहा है,
8: दुख कहाँ आता है और सुख कहाँ आता है। दुख आता है कि आपको किसी से भी अपना आप काम कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन न रखिए, जहाँ एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुख आएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से 100 नहीं 200% राबता रखती हूँ, और प्रॉब्लम यही होती है, और शायद इसीलिए मेरा क्या है, मैं ना सफाई देती हूँ ना मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ, उम्मीद भी वहीं रखती हूँ जहाँ मुझे मालूम है कि सामने वाला मुझे देगा, अदरवाइज मैं नहीं रखती, मुझे एकदम मतलब शोर हो जाता है।
8: नहीं, मेरा अपना फलसफा ये है
6: जी
8: कि मैं एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखता, कोई मेरे पास आए उसने उसका एक्सपेक्टेशन है आया, मेरे बस के चीज से मैंने कर दिया, फिर ये नहीं सोचे कि कल भी डेट मेरे खड़ा होगा।
6: नहीं नहीं, वो चाहिए भी नहीं है, वो एक्चुअली वो होना ही नहीं चाहिए, तब यही दुख का कारण होता है। नहीं, मैं उन लोगों से उम्मीद रखती हूँ जो हमारे दोस्त हैं, दोस्ती में तो भाई चलता है, ये अगर मेरे को चाहिए अगर तुमने नहीं दिया
8: तो फिर तुम्हारी बैंड बज जानी है।
6: नहीं नहीं नहीं, हमारे दोस्त उनको अच्छे से पता है, वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ पे उम्मीद हमें मालूम है कि ये पूरा होगा तभी उम्मीद है, अदरवाइज नहीं है, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ साथ ही साथ में, और शायद कहीं ना कहीं मैं इसीलिए मैं कभी दुखी भी नहीं होती हूँ
8: मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि वो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच।
6: जी जी जी, बेशक बेशक, आपने बिल्कुल सही।

0: आपकी लाइफ में वैसे आपके बहुत सारे मित्र होंगे जहां तक मुझे लगता है अनिल जी।
1: हाँ, बताएं।
0: मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मित्र होंगे और आपके लिए मतलब मित्र का जो दायरा है जिसको आप सोचते हैं कि जो सबसे अच्छा वाला मित्र होता है वो इस लेवल पे खरा उतरना चाहिए, वो कौन सा है?
1: देखिए, जो आपके समय खराब हो जब तब आपके पास रहे वही आपका सच्चा मित्र है। सुख में तो तमाम मिलते रहे।
0: ओके, ये बात भी बिल्कुल आपने सही कही और पीछे से भी कॉल्स आ रही हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे अभी उस जानकारी की। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफ़ी अच्छा मतलब बताया। लेकिन मैं आप देखिए कॉल और आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने।
1: तो आप एक काम करें, बात कर लें।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ में कौन बना हुआ। हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम।
0: और ये टैग लाइन जो होती है वो होती है हमारी सृष्टि जी की। क्यों सृष्टि जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अच्छी हैं। क्या चल रहा है आपके उधर अभी फिलहाल में? आपके घर में क्या चल रहा है फिलहाल में? चाय बन रही है, नाश्ता बनना है, खाने बनने की तैयारी हो रही है। मसाले किस पे छिड़के जा रहे हैं?
2: मसाले किसी पे नहीं छिड़के जा रहे, चाय नाश्ता भी हो गया।
0: अच्छा, चाय नाश्ता हो गया। नाश्ते में क्या था?
2: नाश्ते में नमकीन थी।
0: ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपके लिए आपकी बेस्ट फ्रेंड की कोई सीमा होती, मतलब अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो क्या डेडिकेट करेंगी? हेलो, शायद सृष्टि जी किसी काम में व्यस्त हो गई हैं। कोई बात नहीं, और हम चलेंगे नेक्स्ट अपनी जानकारी की ओर। लेकिन उससे पहले भाई लगातार आज कॉल्स आ रही हैं, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: नमस्कार।
3: आपको भी सुसंध्या, और आपसे बात हो रही है 29 घंटे बाद।
0: 29 घंटे बाद, ओ माय गॉड। वैसे तो सबसे पहले हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे
3: आपको भी। आपसे मैं 29 घंटे पहले मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात की थी।
0: बिल्कुल, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं वो कोई और नहीं, आप सभी को पता है, आपकी प्यारी सी क्यूट सी सविता दुबे जी बात कर रही हैं हरखापुर से। और कुछ और इनके बारे में मैं कहूँ उससे पहले मैं तारीफ करनी चाहूंगी एक बार पुनः से इनकी खूबसूरती की। भाई, जब महिलाओं की खूबसूरती की बात आती है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली पुरुष ही ताड़ने का काम करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी। तो आप शर्माई तो नहीं सविता जी?
3: क्या बोलूं, नहीं बोले तो यही ठीक है।
0: हाँ, ये भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे सविता जी, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो लाइक मी, मेरी तरह, तो आप दोनों अगर बैठे हों, हाँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मैं अगर 10 मिनट में 5 समोसे खा लेती हूँ और आप 5 मिनट में 2 समोसे खाती हैं, तो सबसे पहले कौन बोलेगा और क्या बोलेगा? मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ, ठीक है? समझ आया सवाल? फिर से समझाऊं?
3: जी, 5 मिनट में 5 समोसे 2 समोसे।
0: नहीं नहीं, 10 मिनट में अगर मैं 5 समोसे खा लेती हूँ और आप 5 मिनट में 2 समोसे खा लेती हैं, तो पहले कौन बोलेगा और क्या बोलेगा? ऑप्शन है, पेट भर गया और लाओ, डाइट कल से शुरू करेंगे आज खा लेते हैं, और या फिर ये बोलेंगे फोटो खींचो पहले।
3: मैं तो बोलूंगी पहले फोटो खींच लो।
0: पहले फोटो खींच लो, मतलब आज के ट्रेंड के हिसाब से आप चलेंगी। बहुत सही। वैसे तो मैं होती तो मैं यही बोलती, मेरा तो भाई पेट भर गया, मैं और नहीं खा पाऊंगी, दैट्स इनफ। क्योंकि मुझे फोटो लेना बिल्कुल नहीं पसंद है, ये बात सच है। हेलो,
3: और मैं गाना सुनाना चाहती हूँ आपको।
0: बिल्कुल सुनाइए, हम सुनने के लिए तो बैठे हैं।
3: दोस्ती दिवस है, आप लोगों के साथ मेरा दोस्ती हमेशा रहा करे, मैं यही चाहती हूँ, इसके लिए मैं गाना भी गाती।
0: बिल्कुल सुनाइए।
3: बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: क्या बात है भाई, और मुझे लगता है कि इसी बात पे आपको ये गाना सुना देना चाहिए। क्यों? चलिए भाई, सविता जी की इस प्यारी सी आवाज के पीछे छुपा हुआ राज है ये गाना। चलिए इस गाने को बजा देते हैं, सुना देते। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी। सविता जी थी हमारे साथ में कॉल पे, और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और फिर देखेंगे किस कॉलर की क्या कॉल आती है।

और हमें जो आपसे साझा करना है वो भी हम साझा करना चाहेंगे। हाँ जी, अब हमें लग रहा है कि हम जा ही नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। चलिए फिलहाल चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और फिर आते हैं आप लोगों से कुछ जानकारी या फिर आपकी कॉल्स के साथ।

0: हाँ जी श्रोताओं, इस गाने को यहीं पे रोकेंगे, थामेंगे और देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन है, फिर इस गाने की ओर आगे बढ़ेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते
0: जी, आप अपना नाम बता दें।
1: बताया था।
0: हाँ सृष्टि जी, आप कहीं चली गई थी, हमें लगा चाय लेने तो नहीं चली गई थी ऑर्डर करके हमारे लिए।
1: आपके लिए अचार आपको पसंद है?
0: अचार? हेलो, अचार पूछ रही हैं या चाय?
1: जी अचार लेने गए थे।
0: ओके ओके, फिलहाल मुझे अचार नहीं पसंद है, मैं अचार नहीं खाती।
1: आप केक खाती हैं?
0: केक भी बहुत लिमिट में खाती हूँ, खाने पीने की थोड़ी कम शौकीन हूँ। बस जानती बहुत कुछ हूँ खाने पीने के बारे में, ये बात दूसरी है।
1: समोसा
0: तो मैं देखती भी नहीं।
1: आपको क्या खाना, दाल चावल?
0: मैं हवा खाती हूँ, मैं हवा खाती हूँ, हवा पीती हूँ और हवा पे ही जीती हूँ।
1: बाटी चोखा?
0: बाटी चोखा हाँ, ये हमारा फेवरेट है। अब आप आई हैं, हम चले पटना की ओर।
1: चलिए गोरखपुर की ओर चलिए। हाँ
0: ये बात है, अन्य यात्री जी की ओर चलना चाहिए हमें, वहाँ हमें अच्छा कुछ खाने मिल सकता है। बहुत अच्छा है आपने, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कॉल में लेना चाहूँगी। थैंक यू सृष्टि जी।
1: ओके
0: बाय बाय, टेक केयर डियर। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
2: नमस्कार, रीना शर्मा
0: जी। हाँ हमारे बीच में है रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे। हेलो हेलो,
2: हाँ जी आवाज आ रही है?
0: हाँ अब आ रही है। हमने कहा आज आपको जो दिन है यानी कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सबसे पहले आपको विश करना चाहेंगे।
2: हम भी आपको सब अच्छे दोस्त हो आप हमारे।
0: ओह माय गॉड, अच्छा हमें तो पता भी नहीं चला आज तक ये बात। ये हादसा हमारे साथ हुआ कब, हमें अभी तक नहीं एहसास था। आपने थोड़ी सी दर्द भरी चोट पहुंचाई तो मतलब मीठा मीठा गुदगुदाहट कहीं पे हुआ और चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आई तो मुझे पता चला कि हम आपके सबसे अच्छे दोस्त।
2: प्रोग्राम सुनना शुरू किया ना तब सबसे अच्छे दोस्त बन गए।
0: ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने, आपको यकीन नहीं होगा, आपने जो गाना भेजा है वो मतलब बहुत पसंदीदा गाना है मेरा।
2: बहुत अच्छा लगता है मुझे
0: भी बेहद पसंद है। मुझे पता है जब मैं YouTube नया नया आया था, मतलब फोन ही नया नया आया था, तो मैं YouTube पे गाना ढूंढती थी तो मुझे मिलता ही नहीं था और मैं बहुत परेशान होती थी। हाँ
2: हाँ, तो मैंने आज
0: भेज दिया। जी आज तो मिल ही जाएगा आप तो। आज आज आज अगर मिल गया तो आज जरूर प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही गाना सुनना चाहेंगे। कम से कम हमारे लिसनर्स को पता तो चले कि कौन सा गाना आपने भेजा है। हाँ
2: एक लाइन आपकी,
0: बस इतना ही सुनना है।
2: ठीक है चलो कोशिश करती हूँ।
0: अरे आप अच्छी कोशिश करेंगी, हमारी मित्र हैं, ऐसे मत बोलिए।
2: अच्छा चलो करती हूँ। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। बस
0: मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म
2: तक,
0: सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम
2: तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक।
0: क्या बात है, क्या डुअल जोड़ा बैठिया यहाँ भाई, फिट हो गया, मजा आ गया गा के हमें, और आपकी आवाज और खुद की आवाज दोनों की आवाज का कॉम्बिनेशन सुन के भी बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपसे एक सवाल सुन सकती या फिर रहने दो? बहुत बहुत शुक्रिया, आज छोंक के दीजिए आप, छोंक के चिट्ठी छोड़िएगा आज। थैंक यू सो मच जी। भाई हमारे साथ में थी रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से, और क्या मस्त बात हुई। चलिए फिलहाल चलते हैं अपनी प्यारी लिसनर यानी कि सविता जी के सॉन्ग को कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं रीना शर्मा जी के सॉन्ग के साथ में, और फिर आते हैं आप लोग की कॉल्स की ओर और आप लोगों से बातें करेंगे।

0: हाँ जी, ये गाना पता नहीं पूरा होगा आज या नहीं, लेकिन हो सकता है मुखड़े तक ही रह जाऊं मैं सविता जी, क्योंकि नेक्स्ट कॉल पे कॉलर है हमारे साथ में, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं आरजे अनु बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, हमारी आरजे अनु जी हमारे साथ में आ गई हैं। और आरजे अनु जी, बस मैं आपसे यही इतना जानना चाहती हूँ कि आरजे का मतलब क्या होता है?
1: आरजे का मतलब होता है अलाउंसर एंड उद्घोषक।
0: अच्छा,
1: अनाउंसर मतलब जो अनाउंस करता है।
0: नहीं नहीं, अनाउंसर एंड उद्घोषक। बड़ा मजा आया भाई हमको जान करके, हमको भी नहीं पता था उद्घोषक, मजा आया।
1: तो एक बात मैं बता दूं ना, आज से मैं भी उद्घोषक बन गई।
0: ओहो, उद्गुद उद्घोष।
1: आज मेरा पहला शो था।
0: शो था
1: तो जबरदस्ती करवा दिया, जबरदस्ती मुझको आज से बनाया गया है।
0: ओहो, ऐसा किसने किया, ये इतना नेक काम किया किसने?
1: ये नेक काम करने वाली आरजे पूनम है जो कानपुर से है।
0: ओके ओके, क्या बात है भाई। और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, जो हम करते हैं उस काम में सामने वाला भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी तो दोस्ती दोस्ती है, क्यों जी?
1: तो वो आरजे थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी आरजे बनूं, मैं कितना भी मना करूं पर वो जबरदस्ती मुझको बना दी।
0: क्या बात है, एक ख्वाहिश होती है और उस ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए जबरदस्ती की जाती है, तभी तो दोस्ती दोस्ती कहलाती है। मजा आया सुनकर।
1: बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़ी थी, हाँ तो हमने कहा चलिए आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं
0: जी। तो आरजे पूनम जी ने आपको किस तरह से आरजे बनाया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
1: आरजे उन्होंने मुझे इस तरह से बनाया, अपने साथ में लेकर मेरे साथ मिलकर शो किया, कॉलिंग शो किया।
0: अपने साथ में लेकर मेरे साथ मिलकर, लेकर और मिलकर, लेकर या मिलकर?
1: मतलब हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे, तो हम दोनों ने मिलकर कॉलिंग शो किया।
0: कुल मिला करके बाद में बचा हुआ था कर कर कर, तो हम दोनों ने कर दिया, ऐसे बोलिए ना।
1: कर दिया। और बात भी करनी बहुत सारी।
0: जी जी, क्या बात है भाई अनु जी, आज तो आपसे बात करके मैं बड़ी प्रसन्न हो रही हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ, आप जवाब देंगे?
1: हाँ पूछ रही।
0: एक दोस्त कहता है मैंने तेरे लिए जान, मतलब मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, अगले दिन आप उससे 500 रुपए मांगते हैं, सबसे पहले क्या गायब होगा, दोस्त, मोबाइल का नेटवर्क, व्हाट्सएप डीपी या फिर ऊपर के सभी?
1: मैं एक बात बता दूं ना
0: जी,
1: मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ सीधे 500 का नोट आ गया, वो भी कभी मौका लगा सामने वाला था तो सामने आ गया, अगर सामने नहीं दे सकते थे तो ऑनलाइन आ गया।
0: ओके, और अगर आपका कोई चंट महाचंट दोस्त होगा और उसके लिए ऑप्शन दिया जाए, तो ये तो अच्छे वालों का है ना, जो आपके साथ में अच्छाई से वो पेश आए, महाचंट की श्रेणियों में आने वाले
1: दोस्त? वाले पता है वो बात ही नहीं करेंगे, जिनके लिए सीधा गायब हो जाएंगे,
0: है ना। वही तो मैंने कहा, मतलब दोस्त गायब होगा या मोबाइल नेटवर्क गायब होगा या फिर व्हाट्सएप से डीपी गायब होगी, या कि तीनों के तीनों ही गायब होंगे?
1: तीन के तीनों ही गायब हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, ब्लैंक हो जाएगा,
0: नजर बंद हो जाएंगे सब। क्या बात है भाई, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दिन बाद वापस आएंगे, जब तक मैं भूल चुकी हूँ वो बात, वापस आएंगे।
0: अच्छा, ये भी होता है?
1: वापिस आते
0: हैं। सही है सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं आपके दोस्त, हमारी तरफ से उन्हें बधाई दीजिएगा आज के दिन की। वैसे उससे पहले मैं आपको देना चाहूंगी हैप्पी नेशनल फ्रेंडशिप डे, नहीं हैप्पी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे,
1: और मैं आपको ही बोलना चाहूंगी सेम टू यू।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: और एक बात, हाँ, आज ना मेरे यहाँ नन्ही परी का जन्मदिन है जो भी 10 साल की हो गई है, और उसके लिए मैं एक सॉन्ग गुनगुनाना चाहूंगी, उनका नाम है महक पांडे
0: जी। महर या महक?
1: महक पांडे।
0: ओके, खुशबू पांडे जी, सॉरी।
1: हाँ सही है, खुशबू या महक को।
0: जी जी, कहिए क्या गुनगुनाइए, मतलब
1: जी जी, बधाई।

0: तुमको।
1: अरे वाह, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की। तुमको जन्मदिन है तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको। ये इसमें मतलब आप बधाई दे रही हैं या लड्डू खा रही हैं?
0: दोनों हो रहा है। लड्डू पहले खा लिया, बधाई अभी दे रही हूँ।
1: ओह, लड्डू पहले खा भी लिया है, क्या बात है भाई।
0: लड्डू खा लिया और ऑफलाइन तो बहुत सारी बधाई दे दी, पर ये ऑन एयर वाली है तो इससे सारी दुनिया सुन रही है, तो ये अभी तो पता चलेगा कि मैं अभी बधाई दे रही हूँ, लड्डू तो पहले खा लिया।
1: ये भी बात है। वैसे हमारी एक लिसनर है लड्डू सिंह जी, उनकी मुझे याद आ गई आपके लड्डू लड्डू लड्डू करने से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत हंसाया आपने। थैंक यू सो मच अनु जी।
0: ओके बाय
1: बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये थी हमारे साथ में हमारी अनु जी, और लगातार पीछे से कॉल्स भी आ रही थी। मैं नेक्स्ट कॉल लूंगी, उससे पहले रीना जी का ये प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करते हैं, और इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओ बाद हम आपसे फिर रूबरू होते हैं।

0: आज लग रहा है कोई गाना बजने ही नहीं देगा, सब चाहते हैं बात करना। चलिए ले लेते हैं हम नेक्स्ट कॉलर को और उनसे पूछेंगे एक सवाल। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, अपना शुभ नाम बताएं।
1: कमल नैन बोल रहे हैं मैम।
0: जी कमल नैन जी, आपसे तो हम एक के सवाल पूछने वाले हैं।
1: एक नहीं दो चार पूछिए।
0: दो चार तो बाद में, पहले हमें जब पहले सवाल के जवाब हुआ आपके अलावा कोई दे नहीं सकता, तो आपसे नीक कोई नहीं दे सकते, इसलिए हम आपसे पूछा चाहिए थे।
1: पूछे कौन सा सवाल है।
0: 8 जून की रोटी कौन खाता है और किसने खाई होगी, क्योंकि लोग 2 जून भी नहीं कंप्लीट कर पाते, मतलब एक टाइम दो टाइम, मैं तो भाई 2 टाइम खा लूं वही बड़ी बात है, तो ये जो 8 जून की रोटी है वो खा कौन रहा है।
1: 8 जून की रोटी तो सभी खाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे।
0: ओहो क्या बात है, व्हाट अ कॉमन सेंस।
1: अगर आप ऐसा पूछिए कि 8 टाइम खाना कौन खाता है, तो ये चीज हाँ हो सकता है कि कोई नहीं खाता होगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने दोनों ही सवाल, मतलब एक ही सवाल में मैंने आपसे घुमा के पूछा था, आपने दोनों ही जवाब बहुत बेहतरीन दिया है। व्हाट अ कॉमन सेंस यू हैव सर, और बिल्कुल सही कहा आपने, 8 जून की रोटी कौन नहीं खाएगा, सभी खाएंगे भाई। 8 तारीख को जो रोटी खाया जाएगा वो 8 जून की रोटी कहलाएगी, और साथ ही साथ में 8 टाइम अगर कोई खाता है तो वो 8 टाइम कहलाएगा। तो आपने दोनों का मतलब अंतर स्पष्ट कर दिया, मैंने कहा था ना आप ही है एक जो जवाब इसका दे पाएंगे, मुझे उम्मीद था और आप उस उम्मीद पे पूरे खरे उतरे हैं।
1: आप लोगों से बात कर करके इतना माइंड हम लोग का वो हो गया है कि आप लोग के सवाल करने से पहले दिमाग में सोच लेना पड़ता है कि क्या कहेंगे, तो सवाल का जवाब क्या होगा।
0: ए भगवान, सच में,
1: क्योंकि हमने देखा है कि हमारे स्टूडियो पे 2 आरजे ऐसे हैं कि लिसनर को घुमा ही देते हैं, मानते नहीं हैं।
0: अच्छा कौन कौन है जरा नाम बताइए।
1: एक तो आरजे अदनान सर और दूसरा अक्कू जी।
0: ओह अक्कू कौन है ये।
1: हमारी आकांक्षा दीदी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। वैसे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, अब आप ही की बातों में आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना शार्प माइंड हम कर देते हैं आपसे सवाल करके, मतलब आरजे अदनान हूँ या आरजे आकांक्षा हूँ आपकी, तो फिर UPSC की तैयारी के लिए लोग इतना पैसा क्यों फूक रहे हैं, कोचिंग क्यों कर रहे हैं, आके सीधे शो सुने, अपना माइंड शार्प करें और जाए निकले एस्पिरेंट्स बढ़िया नंबर से पास होके।
1: अब वो तो बीत चुका है ना, जैसे मान लीजिए हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हमें जो
0: हाँ ये बात भी है,
1: तो बेकार ही है ना।
0: क्या बात है भाई, हम जो सोच भी नहीं सकते वो हमारे कमल नैन जी सोच ले जाते हैं, कितनी दूर दृष्टि रखते हैं आप।
1: आप लोगों से हम लोग को एक अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है और मन भी प्रसन्न रहता है, जब से हम रेडियो से जुड़े लगभग 3 साल हो रहा है हमें।
0: जी, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: हम लोग को इतना हम लोग को बदल के रख दिया है कि क्या बताएं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आप आपकी बातों से काफ़ी मतलब अच्छा लगा सुन के, फीडबैक मिला हमें। आपके कितने सारे मित्र हैं ये आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैम लगभग हमारे पास मित्र होंगे 20 से 25।
0: ओहो, और उसमें सबसे प्यारे मित्र कौन है।
1: हमारे प्रिय मित्र एक पंडित जी हैं, प्रबल मिश्रा जी।
0: जी
1: सबसे टॉप पे वही है।
0: और सेकंड टॉपर कौन है फिर।
1: एक शिवा करके लड़का है वो है, और वैसे तो अभी हमारे एक पास एक मनी भाई हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं।
0: जी जी
1: तीसरे नंबर पे वो भी आ जाते हैं।
0: ओके, और अगर किसी महिला मित्र की बात करें तो क्या वो आपके पास में है या नहीं, पहले तो ये जानना चाहेंगे।
1: महिला में तो अगर देखा जाए तो मैम कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए रेडियो के अनुसार से तो हमारी अक्कू जी हो गई और जैसे आंसू दीदी हो गई, ये लोग मतलब पहचानने वाले हो गए। नहीं नहीं दोस्त, अब देखिए आंसू दीदी को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन एक मित्रता की वजह से कभी भी उनको हम प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देती है, मतलब
0: जी जी, जी जी जी बस हम यही सुनना ही चाहते थे आपसे, बहुत सही आपने जवाब दिया है, अब हम क्या ही कहें इससे ज्यादा। मजा आ जाता है भाई आपसे बात करके, तो इंसान ना हंसना चाहे तो हंसने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: हम वो नहीं है जी, मन जी
0: सुन रहे हैं, कहिए।
1: हम वो नहीं जी मतलब से याद करते हैं, हम वो जो रिश्ता से प्यार करते हैं, आपका पैगाम आए या ना आए हम रोज आपको दिल से याद करते
0: हैं। क्या मारा फेंक के सीधे आके यहाँ पहुँच गया स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूब मतलब हाजिर जवाबी भी है आप में। हाँ
1: मैम, अगर गाना कहिए तो एक डेलीगेट कर दीजिए हमारे दोस्तों के लिए।
0: जी प्लीज, लेकिन उसको आपको सुनाना पड़ेगा।
1: ऐसी बात है।
0: हाँ हाँ, यही तो हमारी क्या नाम है उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन थी। हाँ
1: मैम ये गाना हमारे सभी मतलब महिला मित्रों के लिए और पुरुष मित्रों के लिए है
0: जी, सारे मित्रों के लिए, ओवरऑल दुनिया के जितने भी मित्र हैं उन सबको भी डेडिकेट कर देते हैं हम अपनी ओर से।
1: जी दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है ज्यादा, वादियों एक से आया है मेरा से ज्यादा।
0: क्या
1: दिल
0: बात
1: का भोला है तबीयत का बड़ा है यो ज्यादा, वादियों एक से आया है मेरा से ज्यादा।
0: जी हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके वादी इश्क का इक्स जो आपने किया उसे मुझे विक्स याद आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नहीं मैम, विक्स उनके लिए है जिनको जुखाम हो गया होगा, जिनको जुखाम नहीं होगा उनके लिए विक्स है।
0: ओके, हमको तो थोड़ी सी खिचकिच थी तो हमने कहा याद कर ले विक्स को भी।
1: कोई मैम ने एक सूंघने वाला आता है 40 रुपए का आता है, वही लीजिएगा आराम ले लो।
0: ना ना भाई साहब, हम ऐसे ही अच्छे हैं, हमें दवाई से बड़ी परहेज है, हम कितना भी बीमार हो जाए आज तक रिकॉर्ड है हमने दवाई नहीं ली है।
1: Okay.
0: जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में हमारे कमल नैन जी, और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और आज भी उन्होंने वही अपना फन दिखाया। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जुगल किशोर वर्मा जी MP से, और इन्होंने कहा है शुभ संध्या आरजे आकांक्षा मैम, कैसी हो आप? तो भाई मैं तो बड़ी ही प्यारी हूँ, हमेशा की तरह आप सभी की दुलारी हूँ और आप सभी के आशीर्वाद की तरह ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हालचाल लेने के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट, कुछ म्यूज़िकल ब्रेक ले लेते हैं भाई, क्योंकि जिन लोगों ने गाने गा के सुना दिए हैं अब उसको प्ले करने की बारी है। सबसे पहले पूरा करेंगे हम रीना शर्मा जी की प्यारी सी इस नगमे को, फिर आएंगे हम कमल नैन जी के नगमे की ओर, और उसके बाद में हमारे रामकृष्ण नंदन जी का कहना है भाई कोई भी सैड सॉन्ग आप सुना दीजिए अपनी पसंद का। तो इन तीनों नगमों को आप एंजॉय करिए और फिर आते हैं आप सभी से वो जानकारी साझा करेंगे जो हमें आपसे करनी है, या अगर आप कॉल करते हैं बीच में तो हम ज़रूर आपकी कॉल को पिक करेंगे। कॉल इन नंबर वही है 6393 316429। शो चला है आपका गुंडा मैसेज मसाला, और आज दिन है, आज का सेगमेंट है आप सभी से रूबरू होने का, और दिन है बहुत खास, यानी कि हैप्पी नहीं नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे।

0: साथ यूं ही बरकरार रहेगा जब तक जिंदा रहेगी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, तब तक आप सभी के साथ बनी रहेगी, कोशिश यही होगी, बाकी भविष्य जाने और उसकी किस्मत। चलते हैं उस ओर जिस ओर आई हुई हमारे पास एक प्यारी सी कॉल। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: नमस्ते, मैं अरविंद बोली थन मनकापुर से।
0: जी अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनकापुर से। वैसे आज आपकी होस्ट एंड दोस्त है आरजे आकांक्षा, अगर आप इसको पहचानते हो तो।
1: मैं आपसे फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था, आप आरजे आकांक्षा जी ही बोल रहे हैं।
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वही मैंने कहा अगर आपको याद हो तो।
1: मुझे याद है, आपने हमारा वेडिंग एनिवर्सरी विश करवाया था आपने अपने रेडियो चैनल पर।
0: जी जी, और वो पसंदीदा सॉन्ग भी मैंने आपको डेडिकेट किया था, और आपकी धर्म पत्नी यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मधु जी थी या फिर अनु जी थी?
1: नहीं नहीं, अरे मैं इसे करवाऊंगी,
0: अनु जी थी, अनु जी थी। तो मैं थोड़ा सा, अगर मैं गलत नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया अनु जी,
1: अनु अनु अनु।
0: हाँ देखिए, मैं कंफर्म भी कर रही हूँ, मैंने अभी पूरी बात भी नहीं कही, हद हो गई। मतलब
1: धर्म पत्नी हंसी मजाक हुए क्या ही, ये भाग दौड़ बड़े जिंदगी में हंसी मजाक से बढ़कर कुछ है ना, आप हमसे हंस लियो, हम तूते हंस ली, यही खुशी है
0: जी। लेकिन भाई साहब, दिक्कत है बात की, हमारे बतिया पूरे नहीं हुए दी हो, उसे पहले ना आप डराए गए हो, तो ये देख कर मैं नहीं नहीं अपन बतिया हम ना कहन, बस हमारे पूर हो गए ना, हम कहन या तो मधु जी है या तो अनु जी। अनु जी का आपने नाम भी नहीं सुना, आप पहले ही मतलब आप डर गए ऐसा सा लगा हमें।
1: बीबी का खौफ हुआ चाहे जिंदगी में कुल करो, लेकिन बीबी खौफ हमेशा रखो।
0: बिल्कुल बेशक हुए चाहिए, और यही से कहूँ ना कहूँ जिंदगी सुरक्षित रहा थी, हमें तो ऐसा लगा।
1: वही जीवन साथी और बुढ़ापक वही साथी है, बाकी कोई होता ना है।
0: हाँ ये भी है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज के जमाने में भी अगर हम देखें तो ज्यादातर धोखे ही हैं जो लोग खा रहे हैं।
1: हाँ बात सही है, लेकिन यही कुछ चीजें धोए खाए चाहिए,
0: यही बात ना। हम अगली बात यही है, कहे जाते रहे आप हमारे मन के बात पढ़ ली हो, बहुत अच्छा लगा मैं सुन के।
1: हम आपका समझी थन बहुत अच्छे से, यही है कि पैसे से हम ड्राइवर और आपके मन हमारे मनकापुर में आपके फ्रिक्वेंसिया का कहा था, मेगा हट कहा था, का कहा था ढंग से।
0: ओह हाँ, इसकी इसकी समस्या बहुत सारी। हाँ कही है,
1: डेली हमें गोंडा आवे रहा था, तो जब हम अपन गड़िया चलाई सन तो रेडियो चलाई ली सन, सुनी सन, बड़ा मजा आवा था, जब सबे बतवा हमारा हरियर हो जाता।
0: ओह हरियर हो जाता, तो हरियरी पहन पानी परत है या फिर पानी कभो नहीं परत है?
1: बहुत जल्दी धानी सीजन आवे थे, हरियरी अपने आ जाए, आप परेशान ना हो, बस इंतजार करो।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये तो बता दिया कि चलिए अनु जी थी, और उस दिन मैंने गाना कौन सा सुनाया था, चलिए ये भी बताइए।
1: मेरे जीवन नहीं, थोड़ा भुलान है मैम, याद ना आवत है ना,
0: फंस गए आप।
1: थोड़ा भुलाई गए
0: ले दादा। अब जब दोबारा आप कॉल मिला तो गाना याद गए क्या हो? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे वो
1: ले जाए तो सुनाई था ना अपने दुल्हन का कि देखो सुनो, बहुत बढ़िया मैडम मिल गई, बतवा थी, बहुत अच्छा लागत है।
0: वाह वाह, मैं हंस हंस के पागल ना हो जाऊं। वैसे वो गाना गाना नहीं था, वो आपके जीवन के लिए सबक था, इसीलिए मैंने आपको भेजा था।
1: कुछ ऐसा ही था, हमें भी लग रहा है कुछ ऐसा ही था कि बहुत मतलब बहुत ठीक
0: गाना मेरे मैं बताऊँ, मुझे जो मेरे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स हैं दो चार, उनमें से एक था।
1: अच्छा बताओ जाए मैडम, ये बताओ जाए, हमारे बिटिया का 12 तारीख का जन्मदिन है, वही दिन हम गोंडा आए ना, पहले तो आपसे बात हुई ना, पहले जाप बिटिया का लेकर चाहे अयोध्या चाहे छपिया मंदिर वका दर्शन वर्शन कराए दी, तो वही दिन अगर नोट कह लेते हो बिस कह दे तो बड़ा बहुत हमारे लिए उपकार हो जाता आपका।
0: तो आप एक दिन पहले हमको याद करा दीजिएगा 11 को, ताकि हम 12 को आपका सब कुछ याद रखें।
1: ठीक मैडम,
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात आपसे जानना चाहेंगे अरविंद मौर्य जी।
1: हाँ जी,
0: वो गाना क्या था जो हमने डेडिकेट किया था?
1: रुको, आपका रिकॉर्डिंग खोल रहा है।
0: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम जब कॉल करेंगे तो आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हम डेली करम मैडम फोन, बस आप डेली बतवावा करिए।
0: डेली हमारे कॉलेज जो होता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
1: वेलकम मैम।
0: जी नमस्ते सर। तो ये थे हमारे बीच में हमारे अरविंद मौर्य जी। भाई क्या बात की इन्होंने, इनका दिल हरेर हुआ हो या नहीं, लेकिन मेरा चेहरा फिलहाल के लिए हंस हंस के हरेर हो गया है। और देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है, क्या कहना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग डियर, अपना नाम बताएं।
2: श्रद्धा तिवारी।
0: जी श्रद्धा तिवारी जी हमारे साथ में बनी हुई है। आज दोस्ती के नाम क्या कुछ आप चंद लाइन हम तक पहुँचाएंगी?
2: यस मैम, बिल्कुल
0: जी, फरमाएं।

0: थैंक यू सो मच भाई, दोस्ती के लिए इतना प्यारा सा नगमा आपने पूरा पूरा कंप्लीट किया, पूरा निभाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ये सॉन्ग हम अपने सारे लिसनर्स को डेडिकेट करते हैं और आपको भी मैम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और मुझे मालूम था आप निभाएंगी, इसलिए आपके आते ही जैसे आपका नाम मैंने सुना कि श्रद्धा तिवारी जी हमारे साथ में है, हमने कहा आप प्लीज कुछ सुनाए। जी कहिए, कुछ कह रही थी आप?
1: बीना मैम क्यों नहीं आ रही
0: हैं? बीना मैम की थोड़ी सी तबीयत खराब है, बस कुछ दिनों में आ जाएंगी, दो चार दिन और।
1: जी हम अपने मादर से प्रे करेंगे, उन्हें जल्दी से ठीक कर दें।
0: बिल्कुल बेशक, आप दुआ करिए उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू मैम।
0: जी तो ये थी हमारे साथ में हमारी श्रद्धा जी, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा नगमा दोस्ती के ऊपर गुनगुनाया। फिलहाल चलते हैं जो डेडिकेशन आया हुआ है सॉन्ग दोस्तों के लिए कमल नैन जी की ओर से, उसको एंजॉय कर लेते हैं, फिर आते हैं देखते हैं नेक्स्ट लिसनर हमारे साथ में कौन बना हुआ है, वरना फिर आप लोगों से वो जानकारी साझा करनी है जो आप लोगों तक पहुँचानी है वो ज़रूर बता के जाएंगे।

0: क्या बात है भाई, बहुत प्यारी सी डिमांड थी जो कि डेडिकेशन में आई हुई थी हमारे पास में कमल लैंजिंग की ओर से उनके सभी
1: मित्रों। देसी घी रहा है भैया ना, देसी पता कर लो चौक, देसी घी रहा है कहीं पूरा शहर में हीरो।
0: क्या बात है, देसी खीरे की दुकान पे हम आ गए हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मीरा मैम
0: जी। गुड इवनिंग सुरेश जी, हम बीना मैम नहीं है, आरजे कांक्षा बोल रहे हैं। वैसे खीरे की दुकान पे आके हमें बड़ा अच्छा लगा।
1: सॉरी सॉरी,
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
1: क्या कोई गीत सुना दें?
0: बिल्कुल, और हम चाहेंगे दोस्ती पर अगर आप सुनाएं तो काफी अच्छा होगा।
1: दोस्ती पे है तो एक दर्द भरा है।
0: हाँ, दर्द भरा सुनाइए।
1: ये दर्द भरा किसी पे भी जोड़ सकती हो, माँ बहन भाई भगवान
0: जी,
1: और माता पिता दोस्त यार, सभी से जुड़ जाएगा
0: जी। मैं तो फिर ईश्वर से ही जोड़ना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे सबसे पहले माता पिता, आप जो भी समझ लीजिए वही है।
1: तो ठीक है
0: जी।
1: मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो कदम है वो तेरा है, के तू कहीं भी के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, छुपा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, छुपा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी क्या में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, छुपा हुआ था मुझी में के तू कहीं है तो, छुपा हुआ था मुझी में के तू कहीं है तो, मेरी हंसी में नहीं है मेरी आँख में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब गाया आपने हमेशा की तरह, और लगातार कॉल आ रही है सर, मैं नेक्स्ट कॉल लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन है हमारे साथ में। लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है, बहुत सारी कॉल्स आ रही है, काफी लिसनर हमारे साथ में जुड़ भी गए हैं। लाइक अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, और इसके अलावा प्रमुख कुमार जी, नहीं अनुष्का जी और प्रमुख जी दोनों ही श्रावस्ती से आए। क्या बात है, हमें लग रहा है भाई बहनों ने वादा किया था इसी टाइम आना होगा, इसी टाइम आना होगा जी। देखते हैं कौन है हमारे साथ में। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो हेलो।
0: हाँ जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक, अपना शुभ नाम बताएं।
2: जी मनीष शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी मनीष जी, स्वागत है आपका आपके अपने शो गुंडा मैसेज मसाला में। वैसे मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगी, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, क्या कर सकती दोस्ती के ऊपर है।
2: जी जी बताइए।
0: मुझे लगता है कि गाड़ी की टंकी में जो तेल भरता है उसका आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, कर सकती।
2: जी जी बताइए।
0: सवाल ये है कि दो बेस्ट फ्रेंड एक ही बाइक पर जा रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे पेट्रोल खत्म हो गया है और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, अब सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, बाइक की चलेगी, दोस्ती की चलेगी, बहानेबाजी की चलेगी, या फिर पैदल निकल जाने की चलेगी।
2: पैदल ही अच्छा है।
0: मतलब आपके दोस्त बहाने नहीं करेंगे, आप भी बहाना नहीं करेंगे, पैदल ही निकल लेंगे।
2: नहीं, जिसकी शरीर भारी है वो बैठेगा, जिस जो हल्का है वो धक्का मारेगा।
0: ये बताइए, जो भारी वो बैठा है और हल्का धक्का मारा है, तो किसके की भी या नहीं?
2: नहीं, वो जो भारी रहेगा वो नहीं चल पाएगा, थोड़ी देर में वो भाप जाएगा, और जो पतला रहेगा ना वो काफी देर तक।
0: अच्छा, तो मतलब पतला जो धक्का दे रहा है वो पतला धक्का दे सकता है और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, इस बात का मतलब? मैं अब ट्रायल लेना चाहूंगी, आमने सामने मेरा ऐसा मन कर रहा है।
2: बिल्कुल मैम, अगर हमको 10 किलोमीटर चलना हो तो मैं चल जाऊँ।
0: ओ माय गॉड। अच्छा, मतलब ना बाइक, मतलब बाइक भी आ गया इसमें शामिल हो गया कहीं ना कहीं, और दोस्ती दोस्त भी आपने साथ में शामिल कर लिया है। बहानेबाजी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धक्का मारे जा रहे हैं और गाड़ी आगे चलती जा रही है। भाई बहुत खूब जवाब दिया आपने, क्या बात है। वैसे आपने कॉल किया था, अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते थे आप?
2: एक गाना आज सुनना चाहते थे, बहुत सुबह से मन कर रहा है।
0: जी कहिए, कौन सा सॉन्ग है?
2: अरे मैम, उसका क्या, साथी मूवी का, कोई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया। आज हम आज हमारा एक दोस्त जो है ना,
0: जी
2: वो थोड़ा वो हो गया, हमसे ब्रेकअप हो गया है।
0: अच्छा, आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया आपसे?
2: नहीं, मेरा उससे जो है आज बिल्कुल एंड हो गया है।
0: ओहो, ये तो बहुत ही दुख की बात है।
2: हाँ, तो ये आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे रामकृष्ण नंदन जी भी बड़ी देर से कह रहे थे कि अपनी पसंद का कोई गाना प्ले कर दीजिए जो कि सैड सॉन्ग हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, अपनी मर्जी से आप कोई चला दीजिए। तो मैं आपका ये सॉन्ग उनको उन तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, टेक केयर। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन है। हेलो भाई, जो भी कॉल करें प्लीज रेडियो बंद करके कॉल किया करें, पीछे से कितनी दफा आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है। कोई बात नहीं, चलते हैं इस नगमे की ओर जिसकी डिमांड हम तक आई हुई है, डेडिकेशन के साथ में उनके मित्र के लिए जो उनसे आज ही बिछड़ गए हैं। बताइए, आज है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे और इनके दोस्त आज इनसे बिछड़ गए हैं। फिलहाल एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को और देख लेते हैं किसकी कॉल है, फिर उसके बाद आएंगे। वो जानकारी जो आपसे साझा करनी थी वो रह गई है, उसको कंप्लीट करके ही यहाँ से हम फिर आप लोगों से अलविदा करेंगे। देखते हैं कौन है। हेलो,
3: गुड इवनिंग मैम, मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं गोंडा से।
0: ओ माय गॉड, मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रही थी। यकीन मानिए, आज दोस्ती का सेगमेंट लिया था और मैंने सोचा कि काश आप कॉल करें तो हम कविता जी को वो सॉन्ग डेडिकेट कर पाए जो हमने प्लेलिस्ट तो किया था, लेकिन 4 बज गए थे और मैं प्ले नहीं कर पाई थी।
3: जी मैम, नहीं आप बोली थी, हम सुने थे।
0: हाँ,
3: तो हमने कहा आप कॉल करके देंगे, शो खत्म होने से पहले पहले कॉल करेंगे, फोन करके था नहीं, अभी जस्ट आया है।
0: क्या बात है,
3: तो हमने कहा आप कॉल कर दें मैम के पास। मैम बोली थी तो आप पूछ ले कोई सवाल, जो भी पूछना मैम को।
0: आपसे तो हम कोई सवाल करेंगे नहीं, आपसे बस ये नहीं, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम जानना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कौन सा गाना डेडिकेट करती। फिलहाल हम अपना वाला ही गाना प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने फ्रेंड को कौन सा गाना डेडिकेट करती।
3: मुझे याद नहीं कर रही है मैम, बोली मेरे दो फ्रेंड है ना, दोनों
0: ऐसे
3: है, इस समय आज 3 दिन हो गया फोन ही नहीं आ रहा किसी का, फोन कट हो जाता है।
0: क्या बात है,
3: तो ना मेरे पास एक प्रिया पांडे है, कविता पांडे, तो कविता जी से थोड़ा लड़ाई हो गई थी हमारी, और क्योंकि वो उस दिन बोले थे ना, तो टिकस रही थी ज्यादा, मतलब का मतलब है कि मैं उससे बातें करते रहूँ या फिर अगर पास में है तो एकदम मेरे पास नहीं रहे, दूर जाने का नाम ही नहीं रही, जैसे मैं क्या हूँ। उसके बाद में जो प्रिया है ना, वो तो हर समय करती रहती है, तो इसी वजह से उसका नाम अकुरु रखवाया था।
0: okay.
3: तो आज मुझे दोनों फ्रेंडों को सॉन्ग डेडिकेट करना है।
0: ओके, तो ये गाना मैं आपको बजा के सुना रही हूँ और यही गाना आप उन दोनों तक पहुँचा दीजिएगा किसी भी माध्यम से, अगर वो मान नहीं जाए तो हमारा नाम बदल बिल्कुल आप
3: या फिर सुन रही हूँ,
0: हो सकता है सुन रही हूँ, और अगर नहीं भी सुन रही हूँ तो आप ये गाना उन तक जरूर पहुँचाइएगा किसी भी माध्यम से।
3: रिकॉर्डिंग लगा के रखे हैं।
0: मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मानेंगी, क्योंकि ये मैं आपको बता रही, मेरे जो चुनिंदा दोस्त हैं, वैसे तो मेरे दोस्त बहुत सारे नहीं हैं, लोगों का मानना है कि मैं दोस्ती बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मैं जिनको दोस्त मानती हूँ उन लोगों के लिए आज तक मैंने ये सॉन्ग हमेशा से डेडिकेट किया, उनके अलावा कभी किसी को नहीं किया, लेकिन आपकी दोस्ती को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये सॉन्ग मैं आपके दोस्तों के लिए प्ले कर रही हूँ।
3: किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, लेकिन ये दोनों हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ।
0: ओके, तो फिर चलिए आपके ही सॉन्ग को पहले ट्यून कर देते हैं।
3: भरोसा करते हैं हम और हमारा भरोसा टूट जाता है, इस वजह से किसी के ऊपर
0: भरोसा करना भी, इसीलिए नीचे आँख बंद करके किसी पे भी। फिलहाल चलते हैं आपके ही सॉन्ग की ओर, और पहले आपका सॉन्ग होगा, फिर मनी जी की ओर जाएंगे, उनकी दोस्ती का सॉन्ग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
3: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो भाई ये थी हमारी मोहिनी जी, और हमने चाहत भी जताई थी कहीं ना कहीं कि ये हमको कॉल करे, और उन्होंने किया भी। चलिए चलते हैं इस गाने की ओर, जो कि हमने इनके दोस्त के नाम जी हाँ भेजा है।

फिर हमारे जिगरी कलेजो या फिर फेफड़ों जो भी आप समझ लीजिए उनके लिए ये गाने मैं कभी ट्यून करती थी और बस उन्हीं के नाम डेडिकेशन पे ये गाने हुआ करते थे। लेकिन आज इनकी दोस्ती को देख करके मन किया कि इनके लिए भी बजाते, यानी हमारी मोहिनी जी के लिए, कविता जी के लिए और प्रिया जी के लिए। फिलहाल हमारे साथ में बनी हुई है अनुष्का जी, गुड इवनिंग बोला इन्होंने। प्रमुख जी भी आ गए श्रावस्ती से, गुड इवनिंग इन्होंने भी बोला है। ओके, थोड़ा बिजी है लेकिन सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल जी ने भी हमें लग रहा है गाने भेज दिया। और मुझे जो बात करनी थी वो तो रह ही गया, लेकिन जाने से पहले जरूर एक बार अगर कोशिश कर पाऊँ तो वहां तक जरूर आऊंगी, वरना फिर नेक्स्ट कभी इस पर जरूर चर्चा करूंगी। और आप लोग के गाने, क्योंकि आज दोस्ती के नाम, आज का दिन पूरा दोस्ती को डेडिकेट था, तो आप लोगों के गानों को ही पूरा करूंगी।

समय की कमी के कारण हम बढ़ते हैं मनीष शर्मा जी के फ्रेंड को, जो डेडिकेशन सॉन्ग आया है वो प्ले करते हैं, और फिर आएंगे अनिल शास्त्री जी के सॉन्ग की तरफ, और फिर एक प्यारा सा सैड सॉन्ग होगा हमारे प्यारे रामकृष्ण नंदन जी के लिए।

और अब आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का नहीं यानी कि अब चैट बॉक्स वाले कार्यक्रम का वक्त हो गया, यानी कि गीत आपके नाम से का वक्त हो गया है। आप वैसे कॉल करके भी अपनी फरमाइशों को दे सकते हैं, कॉलिंग नंबर वही है 6933316429। और अब हम लेंगे अपने अनिल बनर्जी जी के प्यारी सी डिमांड और इस गाने को कम्प्लीट करते हैं, क्योंकि दोस्ती के नाम गाने प्ले हो रहे हैं और आप लोगों ने गुनगुनाया है, कॉल किया है, तो ये गाना हम सुनते हैं, फिर आते हैं आज की लास्ट प्यारी सी नगमे के लिए, जो कि होगा हमारे रामकृष्ण नंदन जी का सॉन्ग।

जी अनिल बनर्जी जी की इस प्यारी से कहीं ना कहीं डेडिकेशन वाले सॉन्ग को फ्रेंडशिप वाले आपने एंजॉय कर लिया है। और आज की लास्ट प्यारी सी एक डेडिकेशन आई हुई भाई, इनको सुनना है रामकृष्ण नंदन जी को, सैड सॉन्ग अपने दोस्त के लिए। फिलहाल चलते हैं, इन्होंने कहा हमारी पसंद का ही सुनना चाहते हैं, तो चलिए आपको सुना देते हैं हम अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। और इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, कल मिलेंगे आपके अपने शो जी हाँ कॉलेज इन गुंडा के साथ में। और अभी आपकी अपनी प्यारी आरजे का सिंपल जी आ रही होंगी, वैसे रास्ते में ही होंगी, और मैं तब तक इंतजार करती हूँ उनके आने का। और ये डोर जो कि आपके शो की है उनके हाथ में सौंप के फिर चलती हूँ। और एंजॉय करिए इस गाने को, लेकिन आप लोगों से यहीं से विदा, बाय बाय, टेक केयर।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, हम याद नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, लेकिन हमें तो आप बखूबी याद हैं और आपको भी हम बखूबी याद हैं। ये चैट बॉक्स में आपकी उपस्थिति ही गवाह दे रही है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार श्रावस्ती से, अनुष्का श्रावस्ती से, राम कृष्ण नंदन मिश्रा आपका भी स्वागत है, सविता दुबे जी, कमल नयन, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा बबीता गोंडा से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, भाई आ चुकी हूँ मैं और आज है मंडे, हम लोग का ब्यूटीफुल मंडे। सो अपने इस सोमवार में हजारों लाखों खुशियां बिखेरेंगे, जज्बात बिखेरेंगे और अपनी फरमाइशी की गठरी को खोलेंगे, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोलेंगे, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे और हमेशा की तरह डेफिनेटली लगाएंगे जितने चांद हम लगाना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, गीत आपके नाम से भी रहेंगे और आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो क्या है हाल चाल, कैसे रहे संडे के जज्बात और कैसे रहे मंडे के जज्बात, दोनों मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। और हमारे जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना आ मेरे हम जोलिया। सो एंजॉय करते हैं जीने की राह मूवी का ये गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए, सुनते रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पकड़ा गया। हमने एंजॉय किया जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगले फरमाइशी गीत के लिए? ऑब्वियसली तैयार ही होंगे। सो एंजॉय करते हैं हम लोग हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना बबीता के लिए, जूही के लिए और आराध्या के लिए। सो बबीता, जूही, आराध्या के लिए अनुष्का की तरफ से एंजॉय करते हैं फरमाइश तेरे जैसा यार कहाँ। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेंडशिप वाला नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से और मालवी नगर से राजेश सिंह जी एंड सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है। स्टे ट्यून्ड।

तेरे जैसा यार कहाँ और कहाँ ऐसा यार आना। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही बेहतरीन सा फ्रेंडशिप वाला गाना जूही के लिए, आराध्या के लिए और बबीता के लिए अनुष्का की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों बहुत ही रोमांटिक से, बहुत ही खूबसूरत से गाने की। जी हाँ, अगली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना मेरे दिल के जो बहुत ही ज्यादा करीब है। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये लव डब वाला सॉन्ग, हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। और कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। स्टेट ही उन्हें एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश।

0: हमें इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हाँ मैंने भी प्यार किया है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। थैंक यू सो मच। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन इसी गाने को सुनकर हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है अब्दुल मुजीम, उन्होंने कुछ कहा है। इनका कहना है कि अंधेरे में रास्ता बनाना मुश्किल होता है, अंधेरे में रास्ता बनाना मुश्किल होता है, तूफान में दीपक जलाना मुश्किल होता है। दोस्ती करना गुनाह नहीं, दोस्ती करना गुनाह नहीं है, लेकिन इसे आखिरी सांस तक निभाना मुश्किल होता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तानिया गोंडा से, अब्दुल मुजीम इंडिया से, मोहम्मद मुशीर जी बाराबंकी से, शशि सिंह जी गोंडा से, आप सभी का स्वागत है। संदीप पटेल नगर गोंडा से, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है बबीता जी की गोंडा से, और बबीता जी को गोंडा से सुनना है गाना अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। एंजॉय करेंगे ये दर्द भरा नगमा। शायद इस गाने को हर एक दिल फील कर सकता है ना, क्योंकि हर एक दिल, हर एक हार्ट कहीं ना कहीं दिल के किसी ना मतलब किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं तो उदास है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए झूठ मत बोलना।
1: हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती,
0: खुश हो जाओ जिंदगी 4 दिन की।

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही सैड लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी किसकी फरमाइश पर, बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की गोंडा से, और प्रबल मिश्रा जी को गोंडा से सुनना है गाना जा बेवफा। ओ माय गॉड, ये कब किसी को दिल दे देते हैं, इनको कब किसी पे प्यार आने लगता है, कब किसके लिए ये सैड हो जाते हैं, कब ये किसके लिए लोनली हो जाते हैं, और ये कब किसके लिए बेवफा हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता है ना प्रबल जी। शायद आपको खुद भी नहीं पता चलता होगा। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये बेवफा वाला गाना, आई मीन एक दर्द भरा नगमा प्रबल की फरमाइश पर। स्टे ट्यून है अभी।

हाय रामा, कितना दर्द था इस गाने में। मतलब एक हद होती है प्रबल जी, आपको पता है क्या कि मैं वैसे तो पूरे के पूरे गाने सुनती हूँ, चाहे जितने भी दर्द भरे गाने हों, मैं चाहे जितने भी अच्छे मूड में हूँ, मैं तब भी वो सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ। लेकिन आपके इस फरमाइशी सॉन्ग ने तो भाई लिमिट क्रॉस कर दिया। इतना ज़्यादा दर्द कि एक पॉइंट पे मैंने हेडफोन निकाल ही दिया कि नहीं भाई, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, अकेले प्रबल जी ही ये सुन ले गाना। मैं तो इनके दुख में शायद इतने ही देर के लिए शरीक थी। क्यों, सही कहा ना मैंने दोस्तों, बहुत ही दर्द भरा नगमा था। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है। अगली फरमाइश हमारे पास में है खुरासा गोंडा से मनीष शर्मा की, और मनीष शर्मा को सुनना है गाना सच्चाई की राह। जब कोई अपनाता है तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। सो इन्होंने किस दोस्त के लिए या फिर किस दुश्मन के लिए इस गाने को सुनने की गुजारिश की है ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं कुमार सानू की आवाज में साथी मूवी का ये गाना मनीष शर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा, किसी को जले पे नमक छिड़कना हो ना तो वो मुझे बुला लिया करे ना, कितना कायदे से जले पे नमक छिड़कती हूँ मैं। और जहाँ अपने जले पे नमक छिड़कने की बात आती है वहाँ मैं जले पे घी भी ना लगाने दूँ किसी को। नमक तो बहुत दूर की बात है दोस्तों।

गायिका कुमार सानू की आवाज में साथी मूवी का ये गाना हमारे मनीष शर्मा जी की फरमाइश पर जो की है खोरासा गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजू सलमानी जी की, उनको सुनना है विनोद जी की और अलका याग्निक की आवाज में ये दिल को छू जाने वाला, कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला गाना। दर्द भरा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत नगमा है, सो एंजॉय करते हैं। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, राजू सलमानी जी की फरमाइश पर जो कि है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

कहते हैं क्या याद करोगे। हमने एंजॉय किया है ये गाना राजू सलमानी जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है फूल और अंगार का गाना। सो एंजॉय करते हैं मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर फूल ये अंगार बन गए सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वैसे फूल कब अंगार बन जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है। जब तक फूल फूल रहता है तब तक लोग सोचते नहीं है कि वो अंगार बन जाएगा, और जिस दिन उसमें लपट दिखने लगती है वो अंगार बन जाता है, उस दिन वो ये ऐसा भूल जाते हैं शायद कि वो फूल ही था, उसको अंगार जैसा ही समझने लगते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि फूल को अंगार बनाने में उन्हीं का हाथ था। क्यों, सही कहा ना मैंने मालवीय नगर से राजेश सिंह जी। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, किसकी? धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन जी को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना साथिया तू मेरे सपनों का मीत है। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर चुकी है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना छम्मक छलो जरा धीरे चलो। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी से भरपूर नगमा सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी।

हमने एंजॉय किया है कुमार सानू की आवाज में ये वाला नगमा सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे जो की है गौरा चौकी से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना किशोर कुमार जी की आवाज में। सो एंजॉय करेंगे ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। मिलते हैं सीधे 9 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाओ इसी 10-15 मिनट में अपना पेट पूजा करो। पेट पूजा करने के बाद में बिस्तर पे आ जाओ, विश्राम करो और विश्राम करने के साथ में सीधे 9 बजे फरमाइशी की महफिल में भी आ जाओ और बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट बिखेरो हर तरफ। सो एंजॉय करते हैं शशि सिंह जी की फरमाइश, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ, इसका पुनरुद्धार करने

0: के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जमाना अब दुश्मन बन गया है, मेरा दोस्त वो पुराना। एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आज सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। सो दोस्तों, हमने इंजॉय किया है ये गाना जो फरमाइश आई हुई थी हमारे पास में मुमताज अंसारी जी की तरफ से। बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। सो चलिए इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो वंशिका, आपका स्वागत है। आवाज विकास गोंडा से रवि, आपका भी स्वागत है। और इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टेट ही होना। हाँ, सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना सोने के गहने क्यों तूने पहने। सो एंजॉय करते हैं रेशम की डोरी मूवी का ये ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में, मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश।

अब होठो पे लाली लगाई क्यों ये तो पता नहीं है, और इसको पता करने के लिए हमें गाना सुनना पड़ेगा, लेकिन इस गाने को भी यही स्टॉप करना पड़ेगा। हमने इंजॉय किया है मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पे ये वाला गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, किसकी? तान्या की। और तान्या को देखना है, देखना नहीं है, आई मीन तान्या को सुनना है गाना। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, और एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी नव्या की फरमाइश पर, आई मीन हमारी तान्या की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हमने एंजॉय किया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बर जी की, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। निब्बर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है जानी दुश्मन का गाना तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा जानी दुश्मन मूवी का गाना निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हाथों में पहना के चूड़ियां। हमने एंजॉय किया है जानी दुश्मन मूवी का ये गाना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। अब आप सोच रहे होंगे किसकी फरमाइश पर, निब्बर जी की फरमाइश पर, जो कि है रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किसकी, अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा की। और राकेश वर्मा को सुनना है गाना खता तो जब हो कि हम हाली दिल किसी से कहें और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा लवी डवी और मेलोडियस सॉन्ग हम इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, और आवाज विकास गोंडा से रवि को सुनना है गाना रूठ के हमसे। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम। जो जीता वही सिकंदर का ये गाना हमने एंजॉय किया है आवाज विकास कोंडा से रवि की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश है हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों संतोष कुमार जी की गिलौली से और संतोष कुमार जी को गिलौली से सुनना है गाना मुझसे मोहब्बत का इजहार करता और काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा कुमार सानुमलका याग्निक की आवाज़ में संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। सो दोस्तों इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा प्यार दुलार आप सभी के लिए, बाय बाय, मिलते हैं कल, स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बाहर ए गज़ल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी ये रात का वक्त होता है और मैं कहता हूँ हमेशा कि रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस महफिल में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है, स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जी हाँ, और खुश नसीबी हमारे, देखिए भाई बहुत ही प्यारे श्रोता, इट्स कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत शुभ संध्या। पहले मैं सोचा करता था कि अदनान जी की ड्यूटी आप लगाते कि पीछे बैकग्राउंड में वो जूम करें, क्या बात है भाई, ये मतलब इतनी लंबी ड्यूटी वो कहाँ कर पाएंगे बेचारे, सुबह से आए 9 बजे से और रात में 9:30 बजे ऊँ करेंगे, तो कहाँ संभव है। चलिए जोक्स अपार्ट, और बात आज फिर करेंगे निदा अना देहलवी की। अना देहलवी ने लिखा कि हर सितम सह के मुस्कुरा देना, मैंने सीखा है गम भुला देना। कितनी देखिए ज़िंदगी जो है वो हम चाहें तो कॉम्प्लिकेटेड बना लें, जटिल बना लें, और हम ही चाहें तो आसान कर लें। वसीम बरेली साहब का एक शेर है कि किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ कर देखो, ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। 2 पंक्ति में ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, देखिए आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और जितनी आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई चली जाएंगी, आकांक्षाएं बढ़ती हुई चली जाएंगी, आपके जीवन में उतना ही दुख आता जाएगा। तो शायद तो 2 पंक्तियों में बात कहता है वसीम बरेली साहब, 2 पंक्तियों में कहते हैं, किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ कर देखो, ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। यही है हर सितम सह के मुस्कुरा देना, मैंने सीखा है गम भुला देना। उंगलियां जो उठाते हैं सब पर आईना उनको भी दिखा देना। है मोहब्बत की आरज़ू जिनको उनको मेरा पता बता देना। उनको आता है क्या सिवा इसके हाले दिल सुनना मुस्कुरा देना। ऐना यही है मेरा सेवा। सेवा का मतलब होता है, चाहे आप उसको पद्धति कह लीजिए, आचरण कह लीजिए, व्यवहार कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, यही मेरा तरीका है। ऐना, देखिए कितनी प्यारी बात 2 पंक्तियों में, ऐना है यही मेरा सेवा, मतलब मेरे जीवन का यही नियम है, अपने दुश्मन को भी दुआ देना। जी मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपसे किसी की दुश्मनी ना हो, तो उसके पीछे सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 2 कारण हैं जो हो सकते हैं। पहला, आपके जितने शत्रु हैं वो सब मर जाएं, और दूसरा, आपके जितने शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाएं। हर इंसान चाहता है, नहीं दुश्मनी कौन चाहता है साहब, सब चाहते हैं कि दोस्ती करें, प्यार करें लोग। तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ, और मेरे जीवन का यही सिद्धांत है कि मैं अपने दुश्मन को भी दुआ देती हूँ। और
डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि इबादतों की तरह, मतलब पूजा के तरीके से, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफत से मतलब अगर कोई मेरे विरोध में जा रहा है तो मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जी हाँ, लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं और जब 10:30 बजने वाला होता है तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है और वो रोज़ आता है। आज मैं आपको एक नगमे के माध्यम से बताऊंगा कि जब 10:30 होने को होते हैं तो मेरा दिल अपने श्रोताओं को लेकर क्या सोचता है। जी हाँ, यही सोचता है जो अब हम कहने जा रहे हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए, आप सभी की याद में।

जी हाँ, अभी न जाओ छोड़कर और इसके पश्चात न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरजू थी मुलाकात की। अच्छा, ये आरजू पर याद आया कि आरजू को तमन्ना भी कहा जाता है। तो तमन्ना ने जिंदगी की गोद में सर रख कर पूछा कि मैं पूरी कब हो जाऊंगी। जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, पगली, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। तो जो इच्छाएं हैं साहब ना, वो कहा जाता है कि इस दुनिया में आवश्यकता ऊपर वाला हर किसी की पूरी कर देता है, और इच्छाएं जो है वो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अन्ना देहलवी साहिबा की तरफ। उन्होंने लिखा कि जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, मोहब्बत में जीना है मरना नहीं है। लोग कहते हैं प्यार में मर जाएंगे, नहीं ना, नहीं नहीं मरेंगे क्यों, जिएंगे। जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, मोहब्बत में जीना है मरना नहीं है, हमारे मुकद्दर में जब तुम नहीं तो, हमारे मुकद्दर में जब तुम नहीं तो किसी के लिए अब संवरना नहीं है। मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो लेकिन, मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो लेकिन गुनाहों की तह में उतरना नहीं है। मुझे तुम खिलौना समझते हो समझो, मुझे तुम खिलौना समझते हो समझो, मुझे टूट कर अब बिखरना नहीं है। जी हाँ, हमारी भी कोई एक अस्तित्व है। आप जानते हैं, अपने गीत सुना होगा, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। क्यों किसी को आपने इतना हक दे दिया कि वो आपका दिल तोड़ के चला जाए? ये तो हमारी गलती हो गई ना। मुझे तुम खिलौना समझते हो समझो, मुझे टूट कर बिखरना नहीं है, ये तय कर लिया है किसी हाल में भी, ये तय कर लिया है किसी हाल में भी, तमन्नाओं का खून करना नहीं है। मैं जिसकी हूँ उसकी रहूँगी हमेशा। वाह रे अन्ना देहलवी, मैं जिसकी हूँ उसकी रहूँगी हमेशा, किसी और पर मुझको मरना नहीं है। अना, मैं तो बहती हुई एक नदी हूँ, किसी के लिए भी ठहरना नहीं है। कहा जाता है ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है साहब। जिंदगी में स्टैग्नेशन, जिंदगी में ठहराओ बहुत खराब चीज़ है। जिंदगी अगर ठहरी तो समझिए सड़ी, सड़न पैदा होने लगती है। अगर कोई विद्यार्थी हाई स्कूल में फेल हो जाए तो दोबारा उसका पढ़ने में शायद वो मन नहीं लगता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन कभी किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया, नहीं क्रैक हो पाया, दोबारा फिर दिया, तीसरी बार फिर दिया, उसके बाद से जो मनोबल होता है वो थोड़ा सा गिरता है। जिंदगी ठहरती हुई जिंदगी सड़न को जन्म देती है, कभी महसूस करके देखिएगा। और सविता शास्त्री लिखते हैं, शुभ संध्या सर जी, हाँ चरण स्पर्श आपको प्रणाम। जी हाँ, अनिल दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, शुभ संध्या मनोज जी, जी दादा प्रणाम, चरण स्पर्श आपको भी। अर्ष कुमार ने लिखा, इश्क यूं ही अधूरा ना हुआ साहब, यहाँ हम मरकर भी तुम जिंदा रहता है। क्या बात,

यहाँ हम मरकर भी तुम जिंदा रहता है। मुझे पंक्ति याद आई, उन्होंने कहा बेहतरीन संगीत संयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे याद आया कि मिट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मरकर भी मुझे याद आ रहा है कोई। ऐ खुदा मुझे एक पल की जिंदगी और दे दे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है कोई। इंसान का इंतज़ार कहाँ तक होता है, शायर कहाँ तक पहुँचते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना शायद हमें आपको मुश्किल होता होगा। जी हाँ, लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं एक प्यारी सी गज़ल की तरफ। और चंदन दास जी को हमने सुना, इसके पहले हमने रफ़ी जी के साथ आशा भोसले को सुना, और अब चलते हैं आपको सुनाते हैं राहत फ़तेह अली खान की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।

जी हाँ इकबाल, पुनः आप सभी का अभिनंदन। बचपन में खिलौने टूटने पर रोने वाला लड़का आज रिश्तों के टूटने पर पता न क्या सोच कर मौन है। क्या बात है। और बात निकल आई है तो कुछ बात भी हम यूं करेंगे कि कभी सोचा भी है कि खुद से ही हम बेजार हैं कितने। अपने आप से ही इंसान वो खुद से ही नाराज है, मुझसे खफा कम है, कुछ इस प्रकार की पंक्तियां हैं किसी गजल की। कभी सोचा भी है कि खुद से ही हम बेजार हैं कितने, बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने यार हैं कितने। कहने को दुनिया में बहुत सारे लोगों का साथ है आपको, लेकिन करने वालों का साथ शायद कम है। कभी सोचा भी है कि खुद से ही हम बेजार हैं कितने, बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने यार हैं कितने। अरे कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता जो पहले पूछता हो रास्ते दुश्वार हैं कितने। जो आपसे पहले पूछ ले कि रास्ता कितना कठिन है, जान जाइएगा कि वो आपके जंग में आपका साथ देने वाला नहीं है। मोहब्बत को खुली आजादियां कोई नहीं देता, मोहब्बत को खुली आजादियां कोई नहीं देता। अरे नजर तेरी तरफ उठे तो पहरेदार हैं कितने। मतलब लोग करें तो करें, लेकिन अगर आपको करते हुए देख लिया तो अरे उन्होंने तो ऐसा कर दिया। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी का कड़वा सच है, मिलाने को तुम्हारी हाँ में हाँ एक भीड़ है, लेकिन एक हुजूम है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार है। मिलाने को तुम्हारी हाँ में हाँ एक भीड़ है, लेकिन अरे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं कितने। और लगाओगे कहाँ तक दांव पर खुददारियां अपनी, लगाओगे कहाँ पर कहाँ तक दांव पर खुददारियां अपनी, तुम्हारा एक सर है और यहाँ दरबार हैं कितने। जी हाँ, मैंने आंगन को ही मैदान समझ रखा था, आज उस भीड़ में पहचान गुम हो गई मेरी। मैंने जिस भीड़ को पहचान समझ रखा था, तो कभी कभी व्यक्तियों का जो साथ होता है वो हमको लगता है कि हमें वो हमारे साथ हैं। कहने को करने में और कहने में हाँ और जा का डिफरेंस होता है, लेकिन अत लिखने में जिंदगी के मायने में आइए तो समझ में आता है। जी हाँ, सचिन शुक्ला जी लिखते हैं बहुत ज़्यादा स्वीट सॉन्ग मनु जी। जी हाँ, और जी मैंने दुश्मन बना लिया जी। अरे नहीं नहीं, आपसे दुश्मनी कौन कर सकता है। तो और अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने कहीं पढ़ा कि वर्च्यूज आर मैन वर्स्ट एनमी, जो इंसान के गुण होते हैं वो कभी कभी उसके दुश्मन बन जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग आपसे दुश्मनी करते हैं वो आपके किसी हुनर की वजह से करते होंगे। सीधा एग्जाम्पल है, मतलब अगर हम शराब नहीं पीते हो, सामने वाला पीता है, जो पीता है वो कहते अट्टे नहीं है, उस सबके बस के बात है संभालना। मतलब वो दुश्मन इसलिए है क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं है जो गंदगी है। तो इंसान की कभी कभी अच्छाइयाँ उसके गुण, हर एक चीज़ को देखने का परसेप्शन अलग अलग होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया को लोग कहते हैं कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, मैं कहता हूँ समुद्र का सीना फाड़ कर निकली है, 14 रत्नों में एक रत्न है। अरे दर्द ने जन्म दिया है इन मैकदों को, इन मैखानों को।
दर्द ने जन्म दिया है इन महकदों को, इन महखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन छलकते पैमानों को। अरे अरे, अगर दर्द ना होता तो न ये बोतल होती, न होती शराब, न तुम पीते, न हम पीते, न कहलाते खराब। कोई खराब नहीं है साहब, बस आपको जड़ में जाकर देखना है कि उसकी सच्चाई क्या है। और आप जिस चीज़ की सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद इंसान नफरत नहीं कर सकता, ये मैंने महसूस किया। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आवाज़ विकास कॉलोनी से, मुझे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज फ्रेंडशिप के ऊपर मेरे दिल की बात, आप जानकर कोई ऐसा गाना बजाइए कि हमारे दोस्त भी खुश हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल, आज मित्रता दिवस है। मैं आपको पहले एक नगमा वो सुनाता हूँ जिसमें हम ये बताएंगे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं है और दोस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। और इसके बाद गीत वो बजाएंगे जो ये पता करेगा कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। जी हाँ, दोस्ती, आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, तो आप सभी को विश्व मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रता के दोनों पहलुओं को दिखाता हुआ हमारा दोनों नगमा आपके लिए है। एक नगमा सुनिए और बताइए, ये नगमा, ये भी एक फलसफा है ज़िंदगी का। एक पहलू ये है जो मैं आपको इस नगमे के माध्यम से सुनाऊंगा, और एक पहलू वो होगा जो इसके बाद सुनाऊंगा। जरा कमेंट बॉक्स में आइएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा पहलू ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, पहले मित्रता पर तंज है, व्यंग है, दर्द है, और दूसरे नगमे में मित्रता में जान, आपके बदले हमारी जान ले लीजिए लेकिन आपको छोड़ दीजिए, वैसे कुछ एहसास। फिलहाल देखते हैं आप किस नगमे को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, दोस्ती का एक पहलू हमने आपको दिखाया जो नकारात्मक है, और अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ना आदमी का कोई भरोसा, और इसके पश्चात दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। लेकिन सिक्के का एक पहलू और भी है। इस्माइल लिखते हैं कि लाश अपना कफन खुद नाप रही थी और लोग उसकी लंबाई पर बहस कर रहे थे। कोई कहता कम है, कोई कहता ज़्यादा, मरे हुए को भी जीने नहीं दे रहे थे। देखिए, एक दो पंक्तियों की बात आपसे कहता हूँ। अभी सुकुमार ने बोला, अब मेरी पता नहीं क्या बात है कि जब आप लोग बोलते हैं तो मेरे अंदर का जो थोड़ा बहुत है वो बाहर निकलता है। उन्होंने दो पंक्तियाँ बोलता हूँ, एक पिता का दर्द बोलता हूँ। पिता ने कहा कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। अगली पंक्ति को सुनने के पहले दिल को, हाथ को दिल के पास रख लीजिएगा, अगर होगा तो धड़क जाएगा। मैं जिन पे लुटा चुका था जमाने की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिसको मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी, अपना सुख चैन दे दिया, जब मृत्यु हुई तो उन बेटों ने कहा, नाप लो कफन कितने मीटर का आना चाहिए, ज़्यादा आ जाएगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। यश कुमार जी, थैंक यू भाई, आपने बोला तो मेरे जहन में आया, नहीं तो ना आता। प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरज़ू, आंसू ही दे गई मोहब्बत की आरज़ू। जी हाँ, लेकिन सर जी, लगता है आपका पुराना फ्रेंडशिप है, अगले जन्म का आप तो मेरे दिल की बात जान लेते हैं। और क्या दे दिया संगीत ने दिया आपको, धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए, सिक्के का एक पहलू दिखाया है, दूसरा पहलू भी दिखाएंगे। आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष न रहे, प्रेम न रहे, सब मिलकर रहें। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी एक दूसरे का हित सोचें और किसी को कोई कष्ट न हो। मित्रता दिवस का ये पैगाम देता हुआ ये गीत, और इसी गीत के साथ आपसे लेंगे अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहादे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो का नेस्टले 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी मन का मीत। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। मीता भीड़ के बीच खड़ी अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए टीटी का इंतजार कर रही थी। 5 दिन हो गए थे उसे घर छोड़े। आशा दीदी से मिलने के लिए मन बहुत छटपटा रहा था। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल पाई थी। अब वापसी में लग रहा था कि ट्रेन के पंख लग जाएं और वो जल्दी से घर पहुंच जाए। दोनों बेटों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था उसका मन। और सागर सोचकर धीरे से मुस्कुरा उठी। वो ये ट्रेन उसे सागर तक ही तो ले जा रही थी। कितना बेचैन होगा सागर उसके बिना। एक एक पल भारी होगा उस पर। मीता अतीत में विचरण करने लगी। जब उसने सागर को बताया था कि वो दीदी के पास जा रही है तो सागर कुछ अनमना सा हो गया था। बोला, ठीक है पर आप जल्दी आ जाना और अगर जरूरी ना हो तो। मीता ने जवाब दिया था, जरूरी है तभी तो जा रही हूं। इस पर सागर बोला, मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। तो मीता ने हंस के जवाब दिया, नहीं तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है पर बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई है 1 हफ्ते की। फिर अगले महीने बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं, सोचा दीदी से मिलाऊं। सागर, मेरी दीदी बहुत प्यार करती है मुझे, जानते हो ना। मेरी तहस नहस जिंदगी का बहुत बुरा असर पड़ा है उन पर। वो टूट गई हैं भीतर से। मुझे देख लेंगी, 2-4 दिन साथ रह लेंगी तो शांति हो जाएगी उन्हें। सागर इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सका। इतने में नीलेश और यश आ गए अपनी तूफानी चाल से। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की दोनों में होड़ लगी थी। मीता ने दोनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। टेस्ट में दोनों ही फर्स्ट थे। दोनों को गले लगाकर मीता ने आशीर्वाद दिया पर उसकी आंखें नम थीं। कितने अभागे हैं राजन, बच्चों की कामयाबी का ये गौरव उन्हें मिलता। पर दोनों बच्चों ने अपने कार्ड उठाए, वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते इससे पहले ही दोनों ने सागर के पैरों को झुककर छू लिया। और आपका आशीर्वाद, वो तो सदा तुम दोनों के साथ है, कहते हुए सागर ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मन का मीत। अब तक आपने सुना मीता की जिंदगी एक बार बिखर चुकी थी, फिर उसकी जिंदगी में आया सागर। सागर ने सिर्फ उसके मन पर कब्जा नहीं किया बल्कि उसके बच्चों को भी बखूबी अपना लिया। वो अपनी दीदी से मिलके वापस सागर और बच्चों के पास लौट रही थी। अब आगे मीता आश्चर्यचकित थी पहले बच्चों के उस व्यवहार पर जो उन्होंने सागर से आशीर्वाद पाने के लिए किया, फिर सागर के उस व्यवहार पर जो उसने बच्चों के संग दोहराया। सागर की गहराई को अब तक महसूस किया था उसने और आज उसकी ऊंचाई भी देख चुकी थी। सागर और मीता का परिचय भी एक संयोग ही था। कभी कभी किसी डूबते को तिनका बनकर कोई सहारा मिल जाता है और अपने हिस्से का मजबूत किनारा तेज बहाव में कहीं खो जाता है। यही हुआ था मीता के संग। अपने बेमेल विवाह की त्रासदी ढोते ढोते थक गई थी वो। पूरे 11 सालों तक यातना पूर्ण जीवन जिया था उसने। जिंदगी बोझ बनने लगी थी पर हारी नहीं थी वो। मीता का जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। मीता की सारी कोशिशें बेकार हो गई थीं। उसका स्वाभिमान उसे उकसाने लगा था। नतीजा ये हुआ कि शहर छूटा, कड़वा अतीत छूटा और नरक सा घर भी छूटा। धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगी मीता। नई धरती, नए आसमान, नई बुलंदियों ने दिल से स्वागत किया था उसका। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा काम आ गया, सो एक एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। दोनों बच्चों की परवरिश और चैन से जीने के लिए पर्याप्त था इतना कुछ। जिंदगी एक ठर्रे पर आ गई थी। मारने से मन नहीं मरता ना, मीता का भी नहीं मरा था। बेचैन मीता रात भर सो नहीं पाती। नैतिकता की लड़ाई में जीत कर भी औरत के रूप में हार गई थी वो। लेकिन जीवन तो कार्यक्षेत्र है जहां दिल नहीं दिमाग का राज चलता है। मीता फिर अपनी दिनचर्या में जूझने को कमर कस कर खड़ी हो जाती। चेहरे पर झूठा मुखौटा लगाकर दुनियादारी की भीड़ में शामिल हो जाती। सागर दूसरे डिपार्टमेंट में उसी पद पर था। नीलेश अब चौथी और यश दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उस दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाना था मीता को। जाहिर है छुट्टी लेनी पड़ती। सागर दूसरे डिपार्टमेंट में उसी पद पर था। मीता ने जाकर उसे अपनी स्थिति बताई और ना आने का कारण बताकर अपना डिपार्टमेंट संभालने की रिक्वेस्ट भी की। सागर ने मीता को आश्वासन दिया और मीता निश्चिंत होकर मीटिंग में चली गई। पिछले 3 साल से सागर इसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। अंतर्मुखी और गंभीर किस्म का व्यक्तित्व था सागर का। सबसे अलग था, अपने आप में सिमटा सा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मन का मीत। अब तक आपने सुना मीता एक असफल शादी के बाद अकेली हो गई थी। उसके दो बेटे थे और अब उसकी जिंदगी में आया था सागर, जिसने उसके साथ साथ उसके बच्चों का भी दिल जीत लिया था। अब आगे दूसरे दिन मीता सबसे पहले सागर से मिली। पिछले दिन की रिपोर्ट जो लेनी थी और धन्यवाद भी तो देना था। पता चला सागर आया तो जरूर है, लेकिन कल से वायरल फीवर है उसे, तो आप ना आते कल। जब इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो एप्लीकेशन भिजवा देते, मीता ने कहा। तो आपकी दी जिम्मेदारी का क्या होता? अरे जान से बढ़कर थी क्या ये जिम्मेदारी? हाँ शायद मेरे लिए थी, जाने किस रो में सागर के मुंह से निकल गया। फिर मुस्कुरा कर बात बदलते हुए बोला, आप सुनाइए कल पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में क्या हुआ। फिर सागर खुद ही नीलेश और यश की तारीफों के पुल बांधने लगा। आश्चर्यचकित थी मीता, सागर को यह सब कैसे पता? हैरान मत होइए, क्योंकि जब माँ आइडियल होती है तो बच्चे जहीन ही होते हैं। फिर वो बीते दिन की रिपोर्ट देने लगा। थोड़ी देर बाद मीता अपने डिपार्टमेंट में चली गई। सारे दिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होती रही। सागर का अप्रत्याशित व्यवहार उसे आंदोलित किए हुए था। 30-32 साल की उम्र होगी सागर की, लेकिन इस उम्र का सहज सामान्य व्यक्तित्व ना था उसका। जो गंभीरता और सौम्यता 36-37 वर्ष की मीता को खुद में महसूस होती थी, वैसा ही कुछ सागर को देखकर उसे महसूस होता था। वो किसी और की व्यक्तिगत जिंदगी में ना दखल देना पसंद करती थी और ना इसमें रुचि थी, पर सागर की आज की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अपनी जिंदगी में इस गहरे खाली अंतराल के बाद आज अचानक सागर की गहरी आंखों ने दर्द की हदों को हौले से छू दिया था। दूसरे दिन सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी कि कॉल बेल बज उठी। दरवाजा खोला तो सामने सागर खड़ा था। अरे सागर, अंदर आइए ना, बीमार परेशान सागर ने कहा। माफ कीजिए मीता जी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं 3-4 दिन

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मन का मीत। अब तक आपने सुना दर्द भरे रिश्ते के टूटने के बाद खुद को उभार रही थी, तभी उसके ऑफिस में उसकी मुलाकात सागर से हुई। न जाने क्यों वो मीता के मन को छू गया।

आगे। मीता बोली, कहाँ रहते हैं आप? तो उसने जवाब दिया, यही आपके मकान की पिछली लाइन में। अरे, और मुझे पता तक नहीं अब तक, मीता बोली। आप बिजी जो रहती हैं। थोड़ी देर बैठकर सागर चला गया। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए। सागर का कोई पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। छुट्टियां खत्म हुए भी 2 दिन बीत चुके थे। मीता ने फैसला लिया कि आज शाम को वो सागर के बारे में पता करेगी। घर आने से पहले उसने पीछे की रो में जाकर सागर का घर ढूंढने की कोशिश की, तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो सागर तेज बुखार में तप रहा था। मीता ने जल्दी से अपने बड़े बेटे को उसके पास बैठाया, फिर भागकर दवाई लेने गई और उसके लिए कुछ खाने को बनाकर लाई। लौटी तो सागर की हालत पहले से काफी बेहतर थी। मीता का बेटा बोला, माँ, मैंने ठंडे पानी की पट्टियां रखकर देखिए अंकल का बुखार बिल्कुल उतार दिया। मीता को बड़ी तसल्ली हुई। मीता ने उसे जो बनाकर लाई थी वो खाने को दिया। उसके बेटे ने उसे पहले वो खिलाया और फिर दवाई दी। आज पहली बार सागर को अपना घर घर महसूस हो रहा था। सच तो ये था कि आज पहली बार उसे भूख लगी थी। काश हर हफ्ते वो यूं ही बीमार होता रहे। घर ही नहीं, उसे अपने भीतर भी कुछ भरा भरा सा महसूस हो रहा था। खाना खाते खाते मीता से उसकी नजरें मिली तो आंखों में छिपी कृतज्ञता को पहचान लिया मीता ने। इन्हीं आंखों ने तो बहुत बेचैन किया था उसे। धीरे धीरे सागर ठीक होने लगा। नीलेश और यश का साथ और मीता की देखभाल से ये संभव हो सका था। सागर ने किसी रिश्ते से ना सही, लेकिन किसी बेनाम रिश्ते से खुद को जोड़ लिया था मीता से। घर में नीलेश और यश ही सागर के इर्द गिर्द होते। दोनों बच्चों ने भी जैसे उसे अपना लिया था। सागर के रूप में उसे अपना हमदर्द मिला तो जीवन जीना सहज होने लगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मन का मीत। अब तक आपने सुना मीता की पहली शादी असफल हो गई थी। उस दर्द भरे रिश्ते से अलग जाकर मीता ने जिंदगी की नई शुरुआत की थी। जब उसकी जिंदगी में सागर आया, सागर ने उसका जितना मन भाया, बच्चों के भी उतने ही मन में समा गया। दोनों हमेशा एक दूसरे की देखभाल करने को तैयार रहते। अब आगे धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन सागर ने उसे अपना हाथ थामने की गुजारिश की। मीता कुछ ना बोल सकी। उसने जाके सब कुछ अपनी आशा दीदी को बताया। दीदी तहे दिल से चाहती थी कि मीता को एक अच्छी नई शुरुआत मिले और वो एक बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिए। दोनों बच्चों को भी एक साया मिले। मीता की बातों से वो भी सागर से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने मीता को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मीता की ट्रेन गंतव्य पर पहुंच चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसे ना सागर मिला, ना नीलेश और ना ही यश। थोड़ी देर उनका इंतजार किया और फिर अपना सामान उठाकर बाहर निकलकर ऑटो पकड़ा। क्या जिंदगी ने फिर मजाक के लिए चुना है उसे? अपने घर पहुंची तो वहां पर ताला बंद था। उसने सागर के घर की तरफ रुख किया। सागर के घर के आगे बड़ी चहल पहल थी। टेंट लगा था, सजावट वो भी फूलों की झालर और लाइटिंग की। गार्डन के सारे पेड़ों पर बल्बों की झालरें लगी थीं। खाने और मिठाइयों की सुगंध चारों ओर बिखरी थी। ऑटो के रुकते ही लगभग दौड़ती बदहवास मीता भीतर की ओर भागी। भीतर पहुंचने से पहले ही जड़ होकर जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। दरवाजे पर आरती का थाल लिए सागर की माँ और सुहाग जोड़ा, मंगलसूत्र और लाल चूड़ियों से भरा थाल पकड़े सागर की छोटी बहन खड़ी थी। नीचे की सीढ़ी पर हाथ जोड़कर स्वागत करता सागर का छोटा भाई मुस्कुरा रहा था। मीता ने देखा, झकाझक सफेद कुर्ता पजामा पहने, लाल टीका लगाए सागर उसी सोफे पर बैठा यश को तैयार कर रहा था, जहां उस शाम उसने मीता को प्रपोज किया था। मीता ने इशारे में उससे पूछा, ये सब क्यों, कैसे, क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं हाँ कर दूंगी? सागर ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हाँ मुझे पता था। फिर नीलेश ने दोनों बेटों को आवाज लगाई, जाओ ऑटो से मम्मी का सामान उतारो और ऑटो वाले को पैसे भी दे देना। बच्चों ने पलटकर बोला, जी पापा। नीलेश बाहर आने लगा तो सागर ने फिर आवाज दी, और सुनो ऑटो वाले को मिठाई जरूर देना। जी पापा। मीता बुत बनी सागर को एक टक देख रही थी। वो बोला, अब भीतर आओ ना मीता।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी मन का मीत। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स। आज की जो हमारी संगीत जगत के सितारा हैं, उन्होंने अपने निजी जीवन को बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं किया, पर फिर भी बोलते हैं ना, हीरा चाहे कोयले में हो अपनी चमक जरूर बिखेरता है। आज की हमारी प्लेबैक सिंगर ने लता जी के साथ एक ही नहीं बल्कि अनेकों गाने गाए हैं। इसके अलावा हिंदी संगीत जगत में इन्हें कई सारे गायकों के साथ गीत गाने का गौरव प्राप्त है, जैसे महेंद्र कपूर, किशोर दा, रफी साहब, मन्ना डे, पर सबसे ज्यादा इन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए। ये हैं कौन, किस नाम से जानी जाती हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ, जैसे सवालों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत विथ योर आरजे। जी हाँ, रात्रि का समय है, आज फिर से एक सफरनामा हमारे पास है किसका ये बताएंगे, लेकिन पहले ये प्यारा सा सॉन्ग उसी कलाकार की आवाज में जिसकी आज हम बात करेंगे।

0: बहुत पछताओगे, क्योंकि अदाएं तीर है। समझे?
1: समझ गए।

आज हम जिस गायिका की बात कर रही हैं, उनका नाम है मीनू पुरुषोत्तम, जो कि हमारे भारत के पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखती हैं। इनका मानना था कि जो लोग अच्छे गायक नहीं होते तो जरूरी नहीं कि उन्हें संगीत की जानकारी नहीं, वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजिशर या कंपोजर हो सकते हैं। सिख धर्म में गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहब में 36 रागों के द्वारा सारे शब्द गुरुबानी कंपोज किए थे। अब वे देखने को या सुनने को नहीं मिल रहे, ऐसा कहना है हमारी मीनू जी का। हम वेस्टर्न म्यूजिक की ओर झुकाव कर रहे हैं तो ऐसी चिंता जताती हैं हमारी मीनू जी, जो स्वयं बहुमुखी प्रतिभा की धनी गायिका हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं में अपना वर्चस्व कायम किया मीनू ने। हमारे रफी और ओपी नैयर साहब भी पंजाबी मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने संगीत जगत में अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सिंगर्स के साथ इन्होंने डुएट गाए। तो चलिए एक बार पुनः से इन्हीं की आवाज का लुत्फ उठाते हैं आपके अपने शो भूले बिसरे गीत।

जिस प्रकार अपनी भाषा से प्यार होता है हर किसी को, वैसे ही हमारी मीनू जी को भी था। इसीलिए कहीं ना कहीं इनको पंजाबी फिल्म्स में बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए और इन्होंने बहुत ढेर सारे गीत भी गाए। इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि अलग अलग भाषाओं में इन्होंने कई सारे गाने गाए। बॉलीवुड में तो इन्होंने ज़्यादातर ड्यूएट गीत गाए हैं, लेकिन जो भी गाने गाए हैं वो उस वक्त के आला गानों में से एक हुआ करते थे। हिंदी पंजाबी फिल्मों के गीत संगीत के मध्य मीनू पुरुषोत्तम के नाम को जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। मीनू पुरुषोत्तम लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आदि के समकालिक रही हैं। शमशाद बेगम के साथ भी इन्होंने काम किया। बाकी सैकड़ों हिंदी फिल्मों में इनकी आवाज सुनी है आपने। नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले। फिल्म दाग, हुजूर आला। चलिए एक गीत सुन ले इन्हीं की आवाज में।

मीनू जी पंजाब की मिट्टी से बॉम्बे कैसे आईं, पटियाला से शहर लुधियानवी जी के गीत किस तरह गाए, एक संगीतकार से वे कैसे मिले और उनकी संगीत जगत की यात्रा के बारे में आज हम जानेंगे आपके अपने रात के फेवरेट शो भूले बिसरे गीत में। और आज हम जिस सफरनामे पे निकले हैं वो मैं आपको बता दूं, उनकी जानकारी इकट्ठा करने में मुझे बड़ा वक्त लगा। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं, पर हाँ जितनी है उतनी काफी है, क्योंकि इनका मानना भी है कि संगीत अपने आप में काफी है। आइए आनंद लेते हैं इन्हीं के द्वारा गाए हुए।

मेरी पीली पगिया हा, मेरी पीली पगिया हा, मेरी पीली पगिया हा, अलबेहली। ओ देखा सारा नगर मन भाई मगर मतवाली तू।

पगिया मेरी पीली पगिया मेरी पीली पगिया अलबेली देखा सारा नगर मन भाई मगर मतवाली तू एक अकेली।

दोस्तों, मीनू पुरुषोत्तम हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं, जो 1960 से 1970 के दशक में सक्रिय थीं और अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर जैसे कलाकारों के साथ युगल गीत गाए और उनके प्रसिद्ध गानों में हाथ न लगाना फिल्म ताजमहल से, जिसमें इनको सबसे पहले काम करने का मौका मिला था, और एक जंगल है तेरी आंखों में जैसे गीत शामिल हैं। साथ ही वो आर्य समाज में भी जुड़ी रहीं और कई सारे भजन भी गाती रहीं।

मीनू पुरुषोत्तम के जन्म की बात करें तो ये पटियाला पंजाब में 20 नवंबर 1944 को जन्मी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए और अपनी आवाज से श्रोताओं का दिल जीता। उनके लोकप्रिय गीतों में कुछ यूं हैं, नी मैं यार मनाना नी, तेरी गुटदा जो कि इन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाया था, एक जंगल है तेरी आंखों में, अदाएं तीर है आशिक का दिल निशाना है। हाँ जी, अदाएं तीर है और आशिक का दिल निशाना है। तो चलिए आनंद लेते हैं, कहीं और क्यों जाना। एंजॉय करते रहिए आपके अपने फेवरेट शो भूले बिसरे गीत को, इस रात के सफर को और गहरा बनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: लाडू की बरकत धोखा देता है। चल भाग यहाँ से, वाले गोली तो ला दूंगा। ससुर जी कैसे जाऊंगा, ट्रेन चल रही है, मेरी काम छूट जाएगी, आप जेल चले जाएंगे।
1: जेल चले जाऊंगा, कैसे हो जंजीर, कैसे हो?
0: ये ठीक है।

श्रोताओं, कलाकार तो अपनी कलाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन मीनू पुरुषोत्तम अपनी आवाज को बहुत ऊंचा ना रखने और संगीत के प्रवाह के साथ चलने की कला के लिए जानी जाती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी आवाज में उम्र के साथ बदलाव आया है, मतलब जो सभी के साथ आमतौर पर होता ही है, और अब वे भजन व गजल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। तो क्यों ना हम भी सुन लें एक आधा गजल इस अदाकार

0: वेड़िया मैनू ते डर लगता है।
1: क्यों?
0: पमरा ते हरजाई हुंदा है।
1: मैं हरजाई नहीं, चलिए तेरा शहदाई हां।

0: अच्छा जी,
1: स्कूल टाइम पे ही मीनू पंजाब से बॉम्बे आ गई थी। वहाँ शहर लुधियानवी की बहन इनकी फ्रेंड थी, जिन्होंने अपने भाई से इन्हें मिलवाया, और लुधियानवी जी ने रोशन जी से। रोशन जी ने इन्हें पहली बार मूवी ताजमहल में ब्रेक दिया। नेक्स्ट फिल्म ये फिर ना रात आएगी, जिसमें ओपी नैयर जी ने इन्हें दूसरा मौका दिया। फिर क्या था, फिल्मों का ये सिलसिला और मीनू जी के गायन का सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहा।

श्रोताओं, एक बार मीनू जी से पूछा गया, शायरी या गीत में क्या चुनेंगी आप? तो मीनू जी का कहना था कि संगीत तो अपने आप में पूर्ण है, जैसे चोली दामन का साथ वैसे ही शायरी और गीत है। शायरी अपने आप में अलग है और गीत अपने आप में अलग है, पर दोनों ही पूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वही